हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 अगस्त 2026। इस समय सवेरे के 8:54 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा इस मंगल ध्वनि के साथ अब आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी नागौर के चिन्मय चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आज सवेरे 9 बजे आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस। वंदना कार्यक्रम का प्रसारण होगा 9:20 पर, वहीं 9:45 पर आप सुन पाएंगे कस्टमाइज्ड स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस।

श्रोताओं, सवेरे 10 बजे आप सुनेंगे गाने पुराने ज़माने के, और 10:30 पर गाने नए तराने नए।

शाम 5 बजे युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। वहीं नन्हे मुन्नों के लिए बालवाड़ी कार्यक्रम का प्रसारण 5:30 पर किया जाएगा।

साथियों, शाम 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, वहीं माटी के स्वर कार्यक्रम का समय रहेगा 6:20। किसान भाइयों के लिए खेती बाड़ी कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे, वहीं 7:30 पर एक बार फिर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी का ये जयपुर अजमेर केंद्र है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रदेश के दौरे पर, चित्तौड़गढ़ और अलवर में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। राज्य सरकार ने आशा सहयोगिनी के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर रहा है। और प्रदेश में बारिश का दौर धीमा, जयपुर और भरतपुर संभाग में आज हल्की से मध्यम बरसात की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह प्रदेश के दौरे पर हैं। श्री शाह के कल उदयपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। केंद्रीय गृह मंत्री आज चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अष्ट धातु से निर्मित 21 फीट ऊंची प्रतिमा और मिनी अटल स्मारक का अनावरण करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री कई विकास कार्यों का भी शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा श्री शाह का कॉलेज मैदान में जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। इसके बाद वे अलवर पहुंचेंगे, जहां वे सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यहाँ विजयनगर मैदान में बड़ी जनसभा कर में अलवर में सरस डेयरी प्लांट में 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नवीन सरस डेयरी प्लांट का शिलान्यास करेंगे। अलवर के नए मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण होगा। वीआईपी मूवमेंट के साथ शहर की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए 13 जगहों पर पार्किंग व्यवस्था बनाई गई है। अविनाश मल्होत्रा, आकाशवाणी समाचार, अलवर।
2: केंद्रीय गृह मंत्री रोजगार उत्सव के तहत 10,500 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान करेंगे। श्री शाह नए केंद्रीय सहकारी बैंकों के गठन की घोषणा करेंगे और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए राशि भी हस्तांतरित करेंगे। इनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और

0: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में सक्षम नारी स्वस्थ बचपन समृद्ध राजस्थान समारोह में आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के उपहार के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं और साथिन बहनों को 1100-1100 रुपए की राशि डीबीटी की। इस दौरान कुल 14,65,00,000 रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं में 74 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी सीधे खातों में हस्तांतरित की। श्री शर्मा ने नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण के चेक भी सौंपे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की हर बेटी को पोषण शिक्षा और विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत की चौपाल से लेकर स्टार्टअप की बोर्ड मीटिंग तक भारत की नारी शक्ति का नेतृत्व दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए राजनीति प्रतिनिधित्व के अवसरों में बढ़ोतरी के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम की महत्वपूर्ण पहल की गई है।
1: जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के हम आए थे कि हमारी महिला सशक्त है, हमारी महिला मजबूत है, उसको आगे बढ़ना चाहिए, देश का नेतृत्व भी करना चाहिए, प्रदेश का नेतृत्व भी करना चाहिए, इसके लिए लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बहनें सशक्त होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की है। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ कम करना है। उन्होंने कहा कि देश के शीर्ष शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कदम से मध्यम वर्गीय परिवारों के हजारों करोड़ रुपए कोचिंग पर खर्च होने से बचेंगे। उन्होंने कहा कि 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में प्रतिभा की पहचान के लिए गांवों, शहरों और स्कूलों में प्रतिभा खोज अभियान भी शुरू किया जाएगा।
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का 2018 में आज ही के दिन निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। वर्ष 2015 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने सोशल मीडिया संदेश में श्री मोदी ने वाजपेयी को असाधारण दूरदर्शी और उत्कृष्ट राजनेता बताया, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के शब्दों ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और उनके नेतृत्व ने राष्ट्र को सशक्त बनाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के तहत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। ये योजना आज से लागू हो गई है। इसके तहत घोषणा दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 है। इसके बाद कोई घोषणा दाखिल नहीं की जा सकेगी। ये एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 के अध्याय 4 में शामिल है। आयकर विभाग ने योजना को समझने में करदाताओं की मदद के लिए अक्सर

पूछे जाने वाले सवाल भी जारी किए हैं। और अब मौसम। प्रदेश में बारिश का दौर मंद पड़ने लगा है। पिछले 24 घंटों में राजधानी जयपुर में 13 शहरों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। करौली जिले में देर रात रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। बारिश के चलते जिले के नदी नालों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को उमस और गर्मी से

भरत तथा शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में राम वनगमन, महाराज दशरथ का स्वर्गवास आदि जो भी घटनाएं घटी उनके फलस्वरूप भरत का हृदय ग्लानि से भर गया था। शोक और परिताप की ऐसी अवस्था में इस मनस्थिति से उबारने के उद्देश्य से मुनिवर वशिष्ठ ने सांत्वना भरे जो उपदेश दिए, प्रस्तुत प्रकरण में आप उनका वर्णन सुनेंगे। मुनि का उपदेश था, स्वर्गवासी महाराज का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग कर प्रजा का पालन करो। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करते देख श्री राम और जानकी भी सुख पाएंगे। श्री राम के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप कर स्नेह भाव से उनकी सेवा करना। मंत्रीगण ने भी भरत को गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा पालन करने का परामर्श दिया। माता कौशल्या ने अपने हृदय में धीरज धारण कर मुनिवर वशिष्ठ के उपदेशों का आदर करने का अनुनय किया।

श्रोताओं भी आपने सुना हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिचाल से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 9:20 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम में पहली भक्ति रचना हम आपको सुनवा रहे हैं अनूप जलोटा की आवाज़ में।

0: नमस्कार, क्या आप अपने बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सनातन संस्कृति और उत्कृष्ट शिक्षा देना चाहते हैं? तो आइए सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में, राजस्थान में संस्कृत शिक्षा को समर्पित एक प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्र, जहां कक्षा 6 से लेकर आचार्य स्तरीय और शिक्षा शास्त्री यानी BEd की भी श्रेष्ठ व्यवस्था है। प्रवेश प्रारंभ है, आज ही संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: श्रोताओं, वंदना कार्यक्रम में अगली भक्ति रचना प्रस्तुत है लता मंगेशकर की आवाज में।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना मन्ना डे की आवाज़ में ऊपर गगन विशाल। इसके साथ ही आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कस्टमाइज्ड स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस।
1: We bring you a talk on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project, and Sanju Kumari, member One Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: घरेलू हिंसा तक अधिनियम है, टीवी एक्ट है, ये 2005 में आया है। तो पहला सवाल ये बनता है कि क्या औरतों के पास कोई तरीका नहीं था, कोई उपाय नहीं था अगर उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है तो कोई भी रिलीफ मांगने का या पाने का? और ऐसा तो नहीं है। तो क्या हुआ करता था कि हमारे पास क्रिमिनल लॉज हमेशा से थे, लेकिन घरेलू हिंसा का अधिनियम जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे एक क्वासी क्रिमिनल रेमेडी माना जाता है। और इसका ये मतलब है कि इस कानून के अंतर्गत क्रिमिनल लॉज के जो रेमेडीज है, जो रिलीफ है, वो चले नहीं जाते हैं, बट ये उनके साथ साथ उनके उनको और मजबूत बनाने में कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम सोचें कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो 2005 में आया क्यों, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, तो अगर हम एक्ट का थोड़ा मुआवजा करें तो हम देखेंगे कि इसमें पनिशमेंट जो है, सजा देना, इससे फोकस हटा के दूसरी चीजों पे फोकस कई ज्यादा दिया गया है कि हम सुरक्षा कैसे करें, रेसिडेंस का किस तरह से करा जाए, क्या टेम्परेरी कस्टडी की क्या बात हो सकती है, मॉनिटरी रिलीफ यानी कि पैसों के भरण पोषण की जो सुविधाएं हैं वो, इन टाइप के प्रोसेसेस कैसे किए जा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी हम डीवी एक्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम क्यों आंसर करना चाहेंगे एक एक्ट के अंतर्गत, जब हमारे पास सजा देने की, जो जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने गुनाह किया है, उनको सजा देने का मौका है। पहला सवाल ये कि पीड़िता को किस चीज की जरूरत है, और ये जो सोच है इसे हम सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, या पीड़िता को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से कानून बनाए जा सकते हैं, ये एक नजरिया हम इस एक्ट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। और कोई भी पीड़िता को अगर वो घर छोड़ रही है किसी भी कानूनी घरेलू हिंसा की वजह से, तो पहली चीज उनको जरूरत हो सकती है कि उनको सुरक्षा रहे और घरेलू हिंसा उनके साथ ना हो, या फिर उन्हें दिन ब दिन डे टू डे भरण पोषण की जरूरत हो सकती है, बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, ये सवाल आते हैं। सो पीड़िता की जो नीड्स है वो कहीं ना कहीं डीवी एक्ट कई ज्यादा आंसर कर पाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाती है, जिस तरह से क्रिमिनल लॉज कई बार सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए पहला जो एंट्री पॉइंट है किसी भी पीड़िता के लिए वो डीवी एक्ट के अंतर्गत काफी आसान बनाया गया है। इसके अंतर्गत एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि कहीं भी एक्सेस टू जस्टिस की जहां हम बात करते हैं, तो किसी भी पीड़िता के लिए कोर्ट आना अपने घर से निकल के, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। जो भी सोसाइटल प्रेशर्स हो, फैमिली प्रेशर्स हो, खुद के अपने अंतर्गत ये हो कि हमने रिलेशंस खराब नहीं करने हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखना है, ये सारे जो हमारे फैमिली यूनिट के प्रेशर्स होते हैं, ये सारों को निकल के कोर्ट तक पहुंचना, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। और इसके लिए ना कि ये सिर्फ जरूरत है कि हमारे हम पीड़िता को बोले कि आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, बट ओवरऑल जैसे हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में जागरूकता होनी चाहिए ताकि पीड़िता को उस तरह का सपोर्ट भी मिल पाए। तो कम्युनिटी लेवल पे हम किस तरह से ये जागरूकता बढ़ा

0: सके, ये एक्सेप्टेंस ला सके कि कल को जाके अगर कोई पीड़िता आगे आती है तो उन्हें बैकलैश ना फेस करना पड़े, उन्हें जितना कम रेजिस्टेंस हो सके उतना वो फेस करे और आगे आके जुडिशियल सिस्टम जो है, चाहे वो लीगल एड के तौर पे हो, चाहे वो किसी तरह से किसी प्रोबोनो सपोर्ट के थ्रू हो, वो उसको एक्सेस कैसे कर सके, पीड़िता आके रिपोर्ट कर सके, तो उसके लिए उस तरह का माहौल भी बनाना एंटायर सोसाइटल स्ट्रक्चर में, जहाँ वो निकल के सेफ फील कर सके, सुरक्षित फील कर सके रिपोर्ट करने में और कानूनी मदद लेने में, ये एक माहौल बनाने का किस तरह से हम आगे स्टेप्स ले सकते हैं ये सोचना भी जरूरी है। सो सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन में ये हम नहीं सोचेंगे कि सिर्फ आखिरी रिजल्ट क्या होगा, क्या ऑर्डर मिल सकता है, क्या फायदा हो सकता है या आउटकम क्या है, बट क्या हम पीड़िता को कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस समय पे चाहती है रिलीफ उस समय पे उसे वो रिलीफ मिल सके, जिस चॉइस की रिलीफ वो चाहती है, चाहे वो उस घर में रह के ही वो अपना केस चलाना चाहती है तो हो सकता है शेयर्ड हाउसहोल्ड का ऑर्डर हो, या चाहे वो किसी और घर में रह के अपना सुरक्षा रखना चाहती है, या फिर वो किसी तरह से अगर उसके साथ वापस घरेलू हिंसा होता है तो उसका प्रोटेक्शन मांग सकती है। हम संजू मैम से सुनेंगे कि पहले क्योंकि क्या एक्ट के अंतर्गत जैसे मैंने बताया कि कुछ अलग अलग प्रोटेक्शंस है सिर्फ सजा के बिना, तो ये क्या क्या प्रोटेक्शंस है और क्या ये प्रोटेक्शंस जब हम क्रिमिनल लॉज में देख रहे हैं तो हम मेनली मैरिज या मैरिटल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, क्या डीवी का प्रोटेक्शन मैरिज के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, कौन से और रिलेशनशिप्स होते हैं, कौन से और ऐसे नाते रिश्ते नाते होते हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं डीवी के अंतर्गत, और इन प्रोटेक्शंस को लेने में डे टू डे ओएससी का जो इंटरवेंशन है वो किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं या पीड़िता किस तरह की रेमेडीज मांग रही है जिसमें ओएससी का मदद होता है, क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है नेविगेट करने के लिए।
1: यू वर लिसनिंग टू अ टॉक ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एक्सेस टू जस्टिस एंड सखी वन स्टॉप सेंटर स्कीम। वी स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of Department of Justice on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme.
2: Sakhi One Stop Center, Central Ministry की स्कीम है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसकी ओवरऑल इंडिया में 700 से 800 सेंटर्स रन कर रहे हैं। दिल्ली में ही 11 सेंटर्स हैं और ये जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत ही आती है, उनकी देख रेख में चलते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर एक्सेस करता नहीं था उस समय, महिलाओं को अपनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है, कोर्ट जाने में वो बहुत घबराती थी, डरती थी। लेकिन सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत जब वो आई हैं तो इस स्कीम में महिलाओं को एक अवेयरनेस मिली है। हम डे टू डे लोकल अवेयरनेस करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि सखी वन स्टॉप सेंटर के अंदर अगर आप आएंगी तो उनकी जो भी गोपनीयता है उसको बरकरार रखा जाएगा। वो बहुत ज़्यादा घबराती हैं इस बात को लेकर कि अगर परिवार में या सोसाइटी में ये चला जाता है जो एक स्टिग्मा है कि हमारी बात लीक हो जाएगी। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड, अगर वो आती हमसे बात करने के लिए तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि हमारी जो, अभी मैं FIR या लीगल प्रोसीजर में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन जो उनका है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए वहाँ पर साइकोसोशल काउंसलर्स भी अवेलेबल होते हैं। मैं सखी वन स्टॉप सेंटर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता देती हूँ। सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल काउंसलर्स और पैरालीगल वर्कर्स भी होते हैं। साथ में ही विधिक सहायता के लिए वहाँ पर डालसा से ही रोस्टर लगते हैं, ऑल द टाइम लॉयर्स अवेलेबल होते हैं 10 to 5 की शिफ्ट में। और उस दौरान जो भी सर्वाइवर या जो भी महिला हमारे पास आती है, हम उनको जो भी लीगल अवेयरनेस अगर वो चाहती है, लीगल एड चाहती है, तो हम उसको वन रूम फैसिलिटी देते हैं। सखी वन

स्टॉप सेंटर का मोटो ही वन रूम फैसिलिटी देना है। उसको उसी प्रेमिसेस में मेडिकल भी प्रोवाइड होगा, उसको उसी प्रेमिसेस में लीगल काउंसलिंग भी प्रोवाइड होगी, काउंसलिंग भी वही होगी। और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि परिवार से या पति से वो निकाल दी गई है, घर से निकाल दी गई है, रात के 2 बजे भी निकाल दी गई है, तो 181 हेल्पलाइन के द्वारा उनको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में सखी वन स्टॉप सेंटर में लाया जाता है। मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पहले 5 दिन का सेंटर मिलता था, परंतु अभी बढ़ा कर ये सेंटर 20 दिन का कर दिया गया है, ताकि उसे कहीं पर भी बिना आश्रय के ना रहना पड़े। उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वहीं पर मौजूद स्टाफ के द्वारा देखी जाती है। वहां पर पुलिस की मौजूदगी भी रहती है, जिसे PFO बोला जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन ऑफिसर। वो वहां पर उसकी कंप्लेन लोकल थाने में रजिस्टर कराते हैं, साथ ही साथ उसकी DD एंट्री या FIR दर्ज कराने में जो भी मदद चाहती है, वो उसको बहुत इजी प्रोसेस के द्वारा मदद कर देते हैं। साथ ही वहां पर आश्रय में कपड़ा, खाना एवं मेडिकल फैसिलिटी, अगर उसको उस दौरान कोई मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है, तो वो भी उसको प्रोवाइड की जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी होती है। कौन सी महिलाएं एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इजी टू मूव सखी वन स्टॉप सेंटर में, कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई एज बार नहीं है। आप आ सकते हैं किसी भी टाइम पर, 60 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक का बच्चा वो आ सकता है, कोई भी, इवन उससे छोटे बच्चे भी वहां पर आ सकते हैं। और उस दौरान भी हम उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट यानी कि चाइल्ड लाइन से कोलैब करा देते हैं। उसके द्वारा वहां पे काउंसलर्स जो चाइल्ड लाइन के आते हैं वो भी आते हैं। 181 हेल्पलाइन किसी भी प्रकार के लिए महिलाओं के लिए एकदम अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब बात करते हैं सामाजिक परिवेश में, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं हों या फिर घरेलू हिंसा से रिलेटेड कोई भी, चाहे 20 साल हो गए हो शादी को या 25 साल हो गए हो या 2 ही महीने क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की हिंसा जो भी है। कई बार मैंने अवेयरनेस के दौरान या हमारे वन स्टॉप सेंटर में जो महिलाएं आती हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि घरेलू हिंसा के प्रकार क्या हैं, उन्हें इमोशनल हिंसा पता ही नहीं होती है। उनको ये लगता है कि बस गाली गलौज कोई बात नहीं है, पर वो बहुत इजीली मान लेते हैं गाली गलौज कोई बात नहीं है। सिर्फ उनके लिए हिंसा वही होती है जिससे मार दिया गया है, खून निकल गया है, वही उनके लिए एक हिंसा होती है। जब हम उनको बताते हैं कि इकोनॉमिकल हिंसा भी होती है कि आप कमा रहे हैं लेकिन आप अपनी पसंद से खर्चा नहीं कर सकते, वो भी एक हिंसा होती है। जो समय समय पर हम छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, मैंने मैप में NGO के साथ में है या फिर हमारे जो लोकल NGOs वहाँ पे जो भी काम करते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में, अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में है अजय कुमार जी, उनके सुपरविजन में बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए हैं, वहाँ पर से बहुत सारी महिलाएं निकल जाती हैं। मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँगी, यहाँ पर मुख्य वजह होती है कि उनके पास एजुकेशन की प्रॉब्लम है, एजुकेशन बहुत कम है। एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी महिलाएं एजुकेशन तक रीच ही नहीं कर पा रही है, कई बार ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, कई बार अलॉटमेंट्स के हो जाते हैं, कई बार पेरेंट्स के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो फ्री एजुकेशन होने के बावजूद भी अपने बच्चे को वहाँ नहीं भेज पा रहे। तो हम स्कूल के साथ में समय समय पर ऐसे काउंसलिंग सेशंस करते रहते हैं ताकि एजुकेशन का महत्व उन बच्चों को समझाया जा सके। कुछ होता है सामाजिक परिवेश, कि कुछ सामाजिक परिवेश में ये होता है कि हम ज्यादा लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो बिगड़ सकती हैं, जो कि उनकी पेरेंटिंग काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है, तो सखी वन स्टॉप सेंटर पेरेंटिंग काउंसलिंग भी करता है। अब बात आती है कि वो किस किस अधिनियम के तहत जा सकते हैं, तो हम उन महिलाओं को ये समझाते हैं कि अगर आपका शेयर हाउस होल्ड है वहां पर भी आप उनका रेसिडेंशियल राइट ले सकते हैं, आश्रय का आपको अधिकार है, आप मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता कि शादी को कितना समय हो गया, आप अर्न करती हैं या नहीं करती हैं, पहले तो

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, सीता और गीता फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में।

0: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर है 240-168 और नागौर का एसडी कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: श्रोताओं, सावन भादो फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में।

चटके हंस तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला।

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आ जा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा रंग।

0: चटका हो तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला हाय हाय
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू मोबाइल छोड़ो
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए रिफंड ही नहीं आया है मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं
2: तो फिर सही नंबर
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड
2: आपने तो बचा लिया दीदी
1: काम से नहीं
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव
5: श्रोताओं अगला गीत प्रस्तुत है सावन की कथा फिल्म से जिसे गाया है आशा भोसले ने

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही गाने पुराने ज़माने के कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। इस समय सवेरे के ठीक 10 बजे हैं, माफ़ी चाहेंगे, इस समय ठीक सवेरे के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए तराने नए। गाने नए तराने नए में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है एक विलेन, जिसे गाया है मुस्तफ़ा जाहिद ने। प्रस्तुत है ये गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: साथियों, बॉस फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं निखिल डिसूजा की आवाज में।

0: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर है 240 168 और नागौर का एसडी कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: साथियों, अगला गीत आपको सुना रहे हैं, फिल्म का नाम है बद्रीनाथ की दुल्हनिया। इस गीत को गाया है अखिल सचदेवा और मनशील गुजराल ने।

0: यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। इस समय दिन के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।
1: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज का विविधा कार्यक्रम बहुरंगी है। एक तरफ इस कार्यक्रम पर जहां राष्ट्रीयता का रंग चढ़ा है, फिल्मों का रंग चढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ शायरी का और बेहतरीन गीतों का रंग भी है। आज के विविधा कार्यक्रम का आगाज हम करेंगे राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के अगस्त महीने के अंक से, और उसके बाद गुलजार साहब पर विशेष सामग्री, क्योंकि इस हफ्ते 18 अगस्त को आ रहा है गुलजार का जन्मदिन। गुलजार लिखते हैं, नाम सोचा ही न था है कि नहीं, अमा कह के बुला लिया एक ने, एजी कह के बुलाया दूजे ने, अबे ओ यार लोग कहते हैं, तुमने एक मोड़ पर अचानक जब मुझको गुलजार कह के दी आवाज, एक सीप से खुल गया मोती, मुझको एक मानी मिल गए हूं जैसे। गुलजार के गाने हमारे दिलों की धड़कन है, उन पर विशेष सामग्री का इंतजार कीजिए। फिलहाल सुनते हैं राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का अगस्त महीने का अंक। ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साउंड कैमरा एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के अगस्त महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय हिंदी फिल्मों में आजादी की गूंज, लघु रूपक फिल्म दीवार के 51 बरस।
1: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में गीतकार गुलशन बावरा की एक अनमोल रिकॉर्डिंग।
2: लोग मुझे गीतकार समझ ही नहीं रहे थे, कुछ कॉमेडियन टाइप का समझते थे।
0: और स्मृति शेष में नमन गायिका एस जानकी और अभिनेता प्रदीप रावत को। सबसे पहले संपादकीय हिंदी फिल्मों में आजादी की गूंज। सिनेमा अपने समय और समाज की परछाई होता है। जो कुछ दुनिया में घट रहा होता है उसका सिनेमा पर गहरा असर पड़ता है। हिंदी सिनेमा के साथ भी यही स्थिति है। जब भारत की आजादी का आंदोलन चल रहा था तो सिनेमा भी जनता को आजादी की प्रेरणा दे रहा था। कमाल की बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने बहुत साहसी तरीके से अपनी बात कही। चित्र भारती के संपादकीय में आज हम केवल उन फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने आजादी से पहले देश को जागृत किया, अंग्रेजों से देश को आजाद करवाने की प्रेरणा दी। सन 1943 की बात है। बॉम्बे टॉकीज ने एक फिल्म बनाई किस्मत। ज्ञान मुखर्जी के निर्देशन वाली इस फिल्म में अशोक कुमार और मुमताज शांति ने काम किया था। इस फिल्म में कवि प्रदीप ने ये गीत लिखा था।
3: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सरकार पहले ही मुसीबत में थी। मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर दिया था। सारा देश आजादी के लिए कुर्बानी देने को तैयार था। ऐसे में ये गाना हर गली कूचे में गूंजने लगा। नौजवान टॉकीजों में फिल्म रुकवाकर इस गाने को दोबारा प्ले करने को कहते। मजेदार बात यह है कि फिल्म किस्मत किसी भी तरह देशभक्ति पर आधारित फिल्म नहीं थी। इसके बावजूद इस गाने ने लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को छुआ और जनता को प्रेरित किया, इतना कि अंग्रेज सरकार डर गई। पर यह कोई पहली घटना नहीं थी। हिंदी सिनेमा इससे पहले भी समय समय पर आजादी की बात करता रहा है। सन 1921 में कांजीभाई राठौड़ ने एक फिल्म बनाई थी भक्त विदुर। इस फिल्म पर इसलिए प्रतिबंध लगा दिया गया था क्योंकि इसमें विदुर का किरदार महात्मा गांधी की तरह दिखता था। कुछ दृश्यों में उसे महात्मा गांधी जैसी टोपी पहने भी दिखाया गया था। सन 1931 में वी शांताराम की फिल्म आई स्वराज्याचे तोरण। इस फिल्म के पोस्टर पर छत्रपति शिवाजी झंडा फहराते हुए दिखाए गए थे। अंग्रेज सरकार इससे डर गई और इस फिल्म पर बैन का खतरा मंडराने लगा, इसलिए इस फिल्म का नाम बदलकर उदय काल रखना पड़ा। वी शांताराम के साथ ऐसा एक बार फिर हुआ सन 1935 में, जब वो संत एकनाथ के जीवन पर एक फिल्म बना रहे थे महात्मा। लेकिन अंग्रेज सरकार को यह बर्दाश्त न हुआ क्योंकि ये नाम महात्मा गांधी से जुड़ रहा था। दबाव डाला गया कि फिल्म का नाम बदला जाएगा तभी इसे रिलीज करने दिया जाएगा और तब जाकर यह फिल्म धर्मात्मा के नाम से रिलीज हुई। सन 1936 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आई जन्मभूमि, ये भी आजादी की बात करती थी। सन 1938 में महबूब खान ने फिल्म बनाई वतन। इस फिल्म में भी संकेतों में आजादी की बात कही गई थी। सन 1940 में आई फिल्म बंधन। इस फिल्म में ये गाना आजादी की अलख जगा रहा था।
4: चल चल रे नौजवान,
5: चलो संग चले हम।
4: चल चल रे नौजवान,
5: चलो संग चले हम।
0: ये गाना बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था। सन 1941 में सोहराब मोदी ने बनाई फिल्म सिकंदर, जिसमें ये देशभक्ति गीत था।

इसी तरह सन 1944 में आई फिल्म पहले आपने तो नौशाद के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी ने ये गाना गाया था।

यहाँ मोहम्मद रफी पहली बार नौशाद के लिए गा रहे थे। यहाँ आपको बता दें कि सन 1944 में गुलाम हैदर ने फिल्म भाई में ये गाना बनाया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई। इसे नसीम अख्तर और जीनत बेगम ने गाया था। बोल शातिर गजनवी के थे।

सन 1946 में आई फिल्म हमजोली। इस फिल्म में नूरजहां ने गाना गाया ये देश हमारा प्यारा प्यारा। ये गाना अंजुम पीलीभीती ने लिखा था और संगीतकार थे हफीज खान।

ये साफ है कि सिर्फ हिंदी फिल्में ही नहीं बल्कि उनके गाने भी आजादी की बात कर रहे थे, देशभक्ति का जज्बा जगा रहे थे, देश के प्रति गौरव

आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि न्यू थिएटर्स की बिमल रॉय निर्देशित फिल्म हमराही में तो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर लिखित जन गण मन को शामिल किया गया था, जो आगे चलकर भारत का राष्ट्रगान बना। सन 1947 में आई फिल्म एक कदम में तो पोस्टर पर ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिखाया गया था। ऐसी फिल्मों की लंबी सूची है जो 1947 से पहले भारत में आजादी की अलख जगा रही थीं। ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म धरती के लाल सन 1946 में 30 अगस्त को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में संगीत पंडित रविशंकर का था। बंगाल के अकाल पर बनी इस फिल्म में कुछ गाने ऐसे थे जो देशभक्ति की लौ जगा रहे थे, जैसे ये गाना भूखा है बंगाल।

इसी दौर में आई देव आनंद की पहली फिल्म हम एक हैं, जिसके निर्देशक थे पी एल संतोषी। इस फिल्म में एक जोशीला गाना था, हम जाग उठे हैं सोकर। इसे पी एल संतोषी ने खुद लिखा था। संगीत हुस्न लाल भगत राम का था।

1948 में आई रमेश सहगल के निर्देशन वाली फिल्म शहीद। इस फिल्म में गुलाम हैदर का संगीत था। जरा सोचिए कि गुलाम भारत में कितना महत्वपूर्ण और साहस का काम था, आजादी पर फिल्म बनाना। इस गाने के गीतकार थे राजा मेहदी अली खां। याद रहे, ये गाना आजादी से पहले रिलीज हुआ था।

हमने अब तक जिन फिल्मों का ब्यौरा आपको दिया ये तो सिर्फ एक झलक है। आजादी से पहले हिंदी या यूं कहें कि भारतीय सिनेमा विभिन्न भाषाओं में देश को जगाने और आजादी के आंदोलन में सहयोग करने का काम जोर शोर से कर रहा था। कुछ साहसी फिल्मकार ऐसे थे जिन्होंने बिना डरे ऐसी कहानियां पेश की। आजादी के बाद से अब तक तो ऐसी अनगिनत फिल्में बनी हैं जिनमें स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं की कहानियां कही गई हैं, पर संपादकीय में हमारा फोकस उन फिल्मों पर था जिन्होंने 1947 से पहले हिंदी सिनेमा में आजादी की अलख जगाई। ये था संपादकीय और अब एक लघु फीचर फिल्म दीवार के 51 बरस। दीवार हिंदी सिनेमा के इतिहास की एक कल्ट फिल्म मानी जाती है। ये फिल्म 24 जनवरी 1975 को रिलीज हुई थी। इस तरह इसकी यात्रा के 51 बरस पूरे हुए। दीवार के प्रोड्यूसर थे गुलशन राय और इसे निर्देशित किया था यश चोपड़ा ने। ये फिल्म तूफानी लेखक जोड़ी सलीम जावेद की लेखनी का कमाल थी। ये देखना दिलचस्प है कि दीवार से पहले यश चोपड़ा ने सन 1973 में फिल्म दाग के जरिए अपना बैनर शुरू किया था। यश

0: 1973 में ही प्रोड्यूसर गुलशन राय के लिए उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की जोशीला, जिसमें देव आनंद ने काम किया था।
1: किसका रास्ता देखे।
0: गुलशन राय इससे पहले जोशीला और जॉनी मेरा नाम जैसी बेमिसाल फिल्में प्रोड्यूस कर चुके थे।
2: पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले।
0: अमिताभ बच्चन की फिल्म यात्रा में ये फिल्म और भी मजेदार जगह खड़ी है। सन 1973 में आई प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर से अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन कहलाए, पर इसके बाद उनकी कुछ फिल्में आई जैसे अभिमान, सौदागर, नमक हराम वगैरह। जंजीर के बाद दीवार ही वो फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन वाला रूप दोबारा नजर आता है। व्यवस्था के प्रति आक्रोश, एंटी हीरो वाला रास्ता, कड़क आवाज वाले संवाद, फ्लैट चेहरा, किरदार में छिपा गुस्सा, कुछ कर गुजरने की तमन्ना, विजय हिंदी सिनेमा का एक बेमिसाल किरदार बन गया।
3: डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे।
4: हाँ, क्यों?
3: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के छोटे भाई रवि की भूमिका में शशि कपूर थे। कैसे? अरे भाई, शशि कपूर तो अमिताभ बच्चन से बड़े थे और सीनियर भी। ये यश चोपड़ा का कन्विक्शन था कि शशि कपूर छोटे भाई की भूमिका में जमेंगे, और यही हुआ।
4: इसमें लिखा है कि तुम पुलिस को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो, अपने जुर्म, अपने काले पैसे, अपने साथियों के नाम। मुझे इस पर तुम्हारे साइन चाहिए।
0: दीवार में मां की भूमिका में नजर आई निरूपा राय। अमिताभ बच्चन की मां के रूप में उन्होंने आगे कई फिल्में की और फिल्म इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। वैसे फिल्म इतिहास में तो दीवार ने अपना नाम इसलिए भी दर्ज किया क्योंकि इसे एक दो नहीं बल्कि 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर शशि कपूर, बेस्ट स्टोरी सलीम जावेद, बेस्ट स्क्रीन प्ले सलीम जावेद, बेस्ट डायलॉग सलीम जावेद और बेस्ट साउंड रिकॉर्डिस्ट M.A. शेख।
5: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
4: उसके बाद मेरे भाई तुम जिस कागज पे कहोगे मैं उस पर साइन कर दूंगा।
0: इस फिल्म के गाने साहिर लुधियानवी के थे और संगीत राहुल देव बर्मन का था। इस फिल्म का एक अंग्रेजी गाना खुद पंचम यानी R.D. बर्मन ने लिखा था और इसे उर्सुला वाज ने गाया था। दीवार में एक गाना ऐसा भी था जिसे फिल्म से हटा दिया गया था। मन्ना डे की आवाज वाला वो गाना था ये।

0: 51 साल बाद भी दीवार ऐसी फिल्म है जिसे आप कई बार देखने के बावजूद एक बार और देख सकते हैं। कल्ट फिल्में ऐसी ही होती हैं।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है।
0: ये था लघु रूपक फिल्म दीवार के 51 बरस। रुपहला पर्दा, रुपहली बातें, इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार गुलशन बावरा की एक रिकॉर्डिंग। गुलशन बावरा हिंदी सिनेमा के एक गुणी गीतकार, उनका पूरा नाम था गुलशन कुमार मेहता। वो बावरा कैसे बने इसकी भी एक कहानी है जो आज हम आपको सुनवाएंगे। गुलशन बावरा 1955 में मुंबई आए और कल्याण जी वीरजी शाह ने उन्हें सन 1959 में फिल्म चंद्रसेना में पहला मौका दिया। आगे चलकर उनकी सबसे शानदार जोड़ी बनी पंचम यानी आरडी बर्मन के साथ। रुपहला पर्दा, रुपहली बातें, इस श्रृंखला में पेश है गीतकार गुलशन बावरा की एक अनमोल रिकॉर्डिंग।
3: मैं गुलशन बावरा हूं, लेकिन बावरा मैं भी 3-4 फिल्मों के बाद ही बना। ये मेरा दिया हुआ तखल्लुस नहीं है, मैं तो गुलशन के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन जब मैं सट्टा बाजार कर रहा था फिल्म, तो उसके दो गीत थे। एक गीत था चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जाता है, और एक गीत था तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे। तो इन दोनों गीतों में टस्सल चल रही थी। कल्याण जी भाई बोलते थे कि

तुम्हें याद होगा, अच्छा गीत है। और एक डिस्ट्रीब्यूटर थे शांति भाई, वो बोलते थे नहीं चांदी के चंद टुकड़ों के लिए अच्छा गीत है। तो उन दोनों में डिस्कशन चल रही थी, तो इतनी देर में मैं पहुंच गया। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो कल्याण जी बोले, शांति भाई ये इन दोनों का राइटर है और इसी से पूछ लो कौन सा गीत अच्छा है, क्योंकि तीसरा गीत मैं लिखने गया था आंकड़े का धंधा। तो वो बोले क्या झूठ बोल रहे हो कल्याण जी भाई, क्यों तुम मजाक उड़ाते हो, ये गीतकार तुम्हें कहाँ से लगता है, ये तो किसी हालत से गीतकार नहीं, ये तो बावला सा लगता है, ये कहाँ से गीत लिखेगा, और इसने ड्रेस भी कोई ऐसी पहनी हुई है, अभी तो इसकी मूंछें भी नहीं निकली हैं, मैं काफी छोटा था। तो इतनी देर में रविंदर दवे की एंट्री हुई, तो उन्होंने पूछा कि देखो कल्याण जी भाई मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि इस आदमी ने दोनों ये गीत लिखे हैं। तो शांति भाई ने बोला कि अगर ये दोनों गाने इसने लिखे हैं तो फिर मैं बैनर पे सिर्फ इसी का नाम दूंगा, मुझे ये बावरा सा लगता है, तो इसका नाम आज से मैं रखता हूँ गुलशन बावरा, और तब से मेरा नाम गुलशन बावरा पड़ गया। देखिए मैंने हमेशा अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा बिलीव किया है तो क्वालिटी को किया है, आई डोंट बिलीव इन क्वांटिटी। मैंने 44 साल की अपने फिल्म कैरियर में मेरे आज तक 240 गाने रिकॉर्ड हुए हैं, और आप शायद आज के दिनों में गीतकारों को देखिए, एक गीतकार ने एक साल में 300 गाने उसके रिकॉर्ड हो चुके हैं, और मेरा 40 साल के, क्योंकि मैंने क्वालिटी में बिलीव किया है, इसीलिए मुझे उन 240 गानों में उतना रुतबा मिला है, लोगों को शायद 5000 गाने लिखने के बाद भी ना मिला हो। देखिए जब मैं बचपन में ही थोड़े थोड़े भजन लिखने लग गया था, तो मुझे फीलिंग हुई थी कि मैं गीत लिखूंगा, और जब मैं कॉलेज में आया तो इश्क में टक्का होने लगा, तो फिर मैंने इश्किया गीत लिखने स्टार्ट कर दिए, और उसके बाद मुझे फिर पूरा यकीन होने लग गया कि नाउ आई एम फिट फॉर राइटिंग फॉर फिल्म्स। तो अब मैं एक मौका ढूंढ रहा था कि किसी भी तरह मैं बॉम्बे पहुंच जाऊं, और भगवान ने मेरी ये प्रार्थना सुन ली और उसने मुझे बॉम्बे में एक नौकरी दे दी। मुझे देश से सबसे ज्यादा इश्क है, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने ऐसे देश में जन्म लिया है जहां पर लोग सूरज की पहली किरण से नहाकर प्रीत की पूजा करते हैं। ये मेरा देश महान है, ये संगीत का खजाना है देश, मुझे देश, इस देश से बहुत प्रेम है, इसीलिए ये गाना मेरे दिल से निकला हुआ है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती।

شیش. स्मृति शेष में आज सबसे पहले हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका एस जानकी को। 11 जुलाई को वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हिंदी फिल्मों के कद्रदान एस जानकी को कुछ गिने चुने गानों से ही जानते थे। सन 1985 में आई थी अनिल कपूर और अमृता सिंह के अभिनय वाली फिल्म साहेब, जिसमें एस जानकी और बप्पी लहरी ने एक गाना गाया।

बस यही गाना हिंदी जगत में ज्यादातर एस जानकी की पहचान था। हालांकि उन्होंने इसी बरस यानी सन 1985 में फिल्म सुरसंगम में ये भजन गाया था।

0: एस जानकी ने फिल्म मर्द के लिए ये गाना गाया।
1: तू मेरा टांगे भला,
0: एस जानकी को उनके केवल हिंदी गानों से आंकना ठीक नहीं होगा। उन्हें दक्षिण की स्वर कोकिला कहा जाता था। एस जानकी का पूरा नाम था सिस्तला जानकी। उनका जन्म 23 अप्रैल 1938 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के पल्ला पाटला में हुआ था। बचपन से ही जानकी को रेडियो सुनने का शौक लग गया था। वो लता मंगेशकर के गाने बड़े चाव से सुनती थी। लता मंगेशकर उनकी प्रेरणा, उनकी आदर्श और गुरु रहीं। इसके बावजूद एस जानकी के गाने की शैली लता से एकदम अलग थी।

जानकी का बचपन सिरसिला में बीता, जहां उनके एक रिश्तेदार थिएटर किया करते थे। इंटरवल में वो जानकी को लता मंगेशकर के गाने गाकर जनता को जोड़े रखने को कहते थे। ऐसे ही एक शो में तमिल फिल्मकार बी आर पंथलू और संगीतकार टी जी लिंगप्पा ने उन्हें सुना और चेन्नई आने को कहा। इस तरह सन 1957 में तमिल फिल्म विधियन विलायत्तु में उनका पहला गाना आया। पहले ही साल एस जानकी ने 6 भाषाओं में गाने गाए। इलैया राजा की पहली फिल्म अन्ना किली के लिए जानकी ने 3 गाने गाए थे। ये इतने लोकप्रिय हुए कि उन्होंने जानकी को दक्षिण भारत की छोटी की गायिका बना दिया।

एस जानकी ने तकरीबन 6 दशक तक फिल्मों में गाने गाए और संगीतकारों की कई पीढ़ियों के साथ काम किया, जैसे टी चलपति राव, एम डी पार्थसारथी, जी रामानाथन, एम बी श्रीनिवासन, के वी महादेवन और एम एस विश्वनाथन वगैरह। उनकी मातृभाषा भले ही तेलुगु थी, लेकिन उन्होंने तकरीबन 20 भाषाओं में गीत गाए। इनमें कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, कोंकणी, उड़िया, तुड़ु, उर्दू, पंजाबी और बांग्ला गीत शामिल हैं। के विश्वनाथ की फिल्मों में इलैया राजा के संगीत निर्देशन में उनके गाए गाने आज भी दक्षिण भारतीय दर्शकों के दिलों की धड़कन हैं।

हिंदी में एस जानकी के कुछ गाने बड़े ही लोकप्रिय हुए हैं, जैसे सत्यमेव जयते फिल्म का ये गाना। फिल्म आखिरी रास्ता का ये गाना। नक नक गो।

एस जानकी को 4 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। पूरी दुनिया में उनके प्रशंसक मौजूद हैं जो उन्हें जानकी अम्मा के नाम से पुकारते हैं। विनम्र श्रद्धांजलि।

अगस्त को हिंदी और दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने माने अभिनेता प्रदीप रावत का निधन हो गया। वो 74 बरस के थे। प्रदीप रावत ने मुख्य रूप से तेलुगु, हिंदी और तमिल फिल्मों में काम किया और वो खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते थे। प्रदीप रावत ने सबसे पहले सन 1988 में बी.आर. चोपड़ा के मशहूर धारावाहिक महाभारत में काम किया था। यहां उन्होंने अश्वत्थामा का किरदार निभाया था। आपको बता दें कि प्रदीप रावत का जन्म 21 जनवरी 1952 को जबलपुर में हुआ था। उन्होंने सिनेमा की दुनिया में सबसे पहले तेलुगु फिल्म सई के जरिए कदम रखा था। तमिल सिनेमा में उनका सफर फिल्म गजनी से शुरू हुआ और इस फिल्म में उन्होंने एक नेगेटिव रोल किया, वो डबल रोल था। जब गजनी का हिंदी रीमेक बना तो उन्होंने वही भूमिका निभाई, गजनी धर्मात्मा की खूंखार भूमिका। कन्नड़ में उन्होंने पैरोडी फिल्म में काम किया, मलयालम में चाइना टाउन, बांग्ला में हीरो 420 और भोजपुरी में क्रैक फाइटर। प्रदीप रावत की एक और महत्वपूर्ण फिल्म थी आमिर खान अभिनीत सरफरोश, जिसमें वो सुल्तान की भूमिका में थे। इसके अलावा ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म लगान में उन्होंने तेज गेंदबाज देवा सिंह सोधी का शानदार किरदार निभाया था। विनम्र नमन। स्मृति शेष। ये थी राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई केंद्र में किया गया।

0: ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का अगस्त महीने का अंक। आप जानते हैं कि हर महीने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती को हम विविधा के अंतर्गत आपको जरूर सुनाते हैं, और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए लेकर आए हैं गुलजार साहब पर विशेष सामग्री, क्योंकि इस महीने 18 को गुलजार साहब का जन्मदिन होता है। अगस्त की 18वीं गुलजार साहब का जन्मदिन। गुलजार साहब अपने एक्सप्रेशंस की वजह से, अपने प्रतीकों की वजह से बड़े विशिष्ट हैं। एक तरफ उन्हें एक बेहतरीन लेखक के तौर पर जाना जाना जरूरी है, जहां आती हैं उनकी कहानियां। दूसरी तरफ जहां आती हैं उनकी कहानियां, रावी पार जैसी बेमिसाल कहानी को हम भला कैसे भूल सकते हैं। दूसरी तरफ हैं शायर गुलजार, जिन्होंने बेमिसाल नज़में लिखी और कुछ यादगार त्रिवेणियां भी लिखी। आप जानते होंगे कि त्रिवेणियां गुलजार की ऐसी कविताएं हैं जिनमें केवल 3 लाइनें होती हैं। उन्होंने त्रिवेणियों की जो प्रेरणा ली वो जापान के हाइकू से ली है, लेकिन त्रिवेणी की जो आखिरी लाइन होती है वो हमेशा ही हैरत में डालती है। त्रिवेणी के बारे में गुलजार साहब कहते हैं कि शुरू शुरू में तो जब ये फॉर्म बनाई थी तो पता नहीं था कि ये किस संगम तक पहुंचेगी। त्रिवेणी नाम इसलिए दिया था कि पहले 2 मिसरे गंगा जमुना की तरह मिलते हैं और एक ख्याल एक शेर को मुकम्मल करते हैं, लेकिन इन दोनों धाराओं के नीचे एक और नदी है सरस्वती, जो गुप्त है, नजर नहीं आती। त्रिवेणी का काम सरस्वती को दिखाना है। तीसरा मिसरा कहीं पहले 2 मिसरों में गुमा हुआ है, छिपा हुआ है, गुप्त है। तो गुलजार की कुछ त्रिवेणियां, एक त्रिवेणी में गुलजार लिखते हैं, सब पे आती है सबकी बारी से, सब पे आती है सबकी बारी से, मौत मुनसिफ है कमोबेश नहीं, जिंदगी सब पे क्यों नहीं आती। एक और त्रिवेणी, गोले बारूद आग बम नारे, गोले बारूद आग बम नारे, बाजी आतिश की शहर में गर्म है, बंद खोलो कि आज सब बंद है। एक और त्रिवेणी, रात के पेड़ पे कल ही तो उसे देखा था, रात के पेड़ पर कल ही तो उसे देखा था, चांद बस गिरने ही वाला था फलक से पककर, सूरज आया था जरा उसकी तलाशी लेना। गुलजार साहब विविध भारती के स्टूडियो में कई बार आए हैं और उन्होंने अपनी बातें कही हैं। एक बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम उन्होंने पेश किया था बरसों पहले मास्टर राजू के साथ। जरा अपने खजाने की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हमारे हाथ लगती है क्या। ये रही, तो चलिए इसे प्ले करते हैं।
1: फौजी भाइयों नमस्ते, बड़ी खुशी हुई आपसे दोबारा मिलकर। पहली बार अकेले मिला था, इस बार मेरे साथ एक बड़ा खूबसूरत होनहार बच्चा है जिसका नाम है मास्टर राजू। बहुत सी फिल्मों में उसे देखा होगा आपने, बहुत सी फिल्मों में उससे मिले होंगे, लेकिन आज ये फखर मुझे हासिल है कि मैं इस बच्चे का आपसे परिचय करा रहा हूँ।
2: लेकिन अंकल, हमारी पहली फिल्म का भी तो नाम परिचय था।
1: जी हाँ, आपको याद है?
2: हाँ, मुझे उसका एक सीन और एक गाना याद है।
1: अच्छा, सीन कौन सा याद है आपको?
2: वो जब जितेंद्र अंकल नहा रहे होते हैं तो मैं उनके कमरे में लंगड़ा भूत बनकर जाता हूँ और कहता हूँ, अंदर कौन है, मैं लंगड़ा भूत हूँ, मैं तुमको खा जाऊंगा।
1: अच्छा, आपको अभी तक याद है। हाँ। और गाना कौन सा?
2: वो जो हम सब लोग गाते हैं सारे के सारे।
1: हाँ, तो वो गाना आपने पहली बार स्क्रीन पर गाना गाया था ना?
2: जी हाँ।
1: तो वो गाना हम फौजी भाइयों को सुनाएं?
2: जी हाँ,
1: चलिए वो गाना सुनाते हैं।

0: राजू बेटा एक बात बताइए हमें, आप ये जो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं ये आपने सीखी कहाँ से?
1: ये एक्टिंग तो मैंने बड़ों से भी बच्चों से भी सीखी, लेकिन अंकल एक 5 मिनट
0: 5 मिनट
1: मेरा मतलब 2 मिनट
0: 2 मिनट में क्या करेंगे?
1: मैंने गलती हो गई मुझसे,
0: क्या
1: मैंने फौजी भाई को नमस्ते करना भूल गया।
0: अरे रे रे रे, तो आप नमस्ते कर लीजिए। चलिए
1: फौजी भाइयों, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आपको पहले नमस्ते करना भूल गया, इसलिए मैं आपको अभी नमस्ते कहता हूँ।
0: वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा तो आपने कहाँ से सीखी आप बता रहे थे हमें?
1: हाँ, ये एक्टिंग तो मैंने बड़ों से भी सीखी, बच्चों से भी सीखी।
0: बच्चों से कौन से?
1: बच्चों में मुझे एक फिल्म अच्छी लगी, वो आशीर्वाद।
0: अच्छा अच्छा उसमें तो बहुत से बच्चों के गाने भी थे
1: जी हाँ।
0: कोई गाना आपको याद है?
1: हाँ, वो दादा मुनि का जो गाना था।
0: दादा मुनि, फौजी भाई जानते होंगे हम अशोक कुमार जी को फिल्म इंडस्ट्री में दादा मुनि कह के बुलाते हैं। हाँ तो दादा मुनि का कौन सा गाना आपको पसंद था?
1: वो जो तालेगांव मालेगांव वाला जो गाना था।
0: हाँ रेलगाड़ी, रेलगाड़ी।
1: हाँ।
0: तो चलिए रेलगाड़ी पे चले,
1: चलिए
0: आइए।
2: आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से, लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं, सुनो रे बच्चों टिकट कटाओ तुम।

आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम्हारा कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर, सब पैसेंजर रेडी।

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक।

0: बस बस बस बस,
1: अंकल स्टेशन आ गया।
0: चलिए उतरिए।
1: हाँ चलिए।
0: हाँ उतरिए, आइए। चलिए अब कौन से गाने पे उतरेंगे?
1: अब
0: गाना तो सुनाना पड़ेगा आपको। हाँ कौन सा सुनाएंगे आप? अच्छा ऐसी पिक्चर का गाना सुनाइए जिसमें आपने काम किया हो।
1: अच्छा वो गाना मैंने नहीं गाया तो चलेगा?
0: हाँ चलेगा, लेकिन किसने गाया बता दीजिए।
1: वो असरानी अंकल जो गाते बावर्ची में,
0: वो कौन सा गाना है?
1: वो नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी।
0: अच्छा चलिए, अच्छा ये तो आप अपनी नमस्ते के साथ सुनाते तो बहुत अच्छा होता ना। चलिए अब सुनाते हैं।
1: हाँ।

0: नमस्ते है सबको, नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
1: अंकल आपको मैथमेटिक्स आता है?
2: मैथमेटिक्स क्यों? एक मिनट जरा, मैं कुछ कुछ फौजी भाइयों को कुछ बताना, मैं भूल गया।
1: आप भी भूल करने लगे ना,
2: मेरे भूल हो गई, आपके बारे में कुछ बताना भूल गया।
1: हाँ, फिर चलेगा?
2: फौजी भाइयों को मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि राजू वो आर्टिस्ट है जिसे इस साल हिंदुस्तान में नेशनल अवार्ड मिला है, बस ये बात बताना भूल गया था। आप क्या पूछ रहे थे?
1: मैं पूछ रहा था आपको मैथमेटिक्स आता है?
2: मैथमेटिक्स क्यों?
1: मेरे पास एक सवाल है, आप उसे सॉल्व कर सकेंगे?
2: क्या?
1: देखिए, एक बट्टा दो, एक बट्टा दो, दो बट्टे चार, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार।
2: ठीक है, मैं समझता हूँ आपको बहुत पसंद है वो गाना, आप वो गाना सुनाना चाहते हैं हमें, है?
1: जी हाँ,
2: तो चलिए सुनाइए।

0: लगता है मैथमेटिक्स आपका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है ना?
1: नहीं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो हिस्ट्री है। आप तो स्कूल में हिस्ट्री पढ़े होगे।
0: नहीं मेरे, हम स्कूल ही नहीं गए, हिस्ट्री कहाँ से पढ़ते।
1: आपको हिस्ट्री पढ़ना है?
0: हाँ मुझे पढ़नी है। आप पढ़ाएंगे
1: हाँ,
0: कैसे?
1: हम जागृति है ना, जो फिल्म थी उसका हम एक गाने की उंगली पकड़ लेते हैं और बस आप उससे ही हिस्ट्री समझ जाएंगे।
0: अच्छा, उससे आप हमें हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ाएंगे?
1: हाँ
0: चलिए पढ़ाइए, आप शुरू कीजिए।

0: अच्छा राजू, जरा आप अपनी एक्टिंग का नमूना तो दिखाइए फौजी भाइयों को। हाँ
1: लेकिन अंकल ये तो रेडियो है।
0: तो क्या है, रेडियो पे आप अपनी एक्टिंग नहीं दिखा सकते? अरे आवाज तो उससे तो आप अपनी एक्टिंग दिखा सकते हैं, जैसे हमें सेट पे
1: लेकिन
0: दिखाया करते हैं, वो जो जोक
1: अच्छा
0: सुनाया करते हैं आप।
1: कौन सा?
0: आप कोई भी जोक जो आपको पसंद हो।
1: अच्छा मैं आपका फेवरेट जोक कम
0: हाँ, वही
1: है।
0: सुनाइए।
1: देखिए
0: इस जोक में हम पहले बता दें फौजी भाइयों को कि पहला रोल लसरानी, दूसरा अशिता अशित सेन, और तीसरा।
1: किशोर मुखर्जी।
0: हाँ सुनाइए।
1: तो ये तीनों अंकल बैठे रहते हैं, तीनों जन अपना अपना बोलते कि मैं होशियार हूँ मैं होशियार हूँ। तो असरानी अंकल पहले कहते हैं कि मैं जंगल में गया। वो जंगल के अंदर एक ही झाड़ था, सिर्फ हाँ सिर्फ सिर्फ एक ही। उस झाड़ के नीचे दो शेर बैठे हुए थे, हाँ सिर्फ दो शेर। और मेरी बंदूक के अंदर सिर्फ एक ही गोली थी, सिर्फ एक ही गोली। तो
0: फिर मारा कैसे?
1: उसके अंदर से उन्होंने कहा, मैंने एक को बुलेट मारी, एक को गोली मारी और एक को आंख मारी, दोनों मर गए।
0: अच्छा, दूसरे।
1: फिर टर्न आई अशित सेन अंकल की। अंकल ने कहा, अरे अरे अरे तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, मेरा सुनो। मैं जंगल में गया गया तो वो जंगल के अंदर एक ही झाड़ था, वो झाड़ के नीचे एक ही शेर बैठा था। और क्या हुआ कि मैं जब घर से निकला था तो मैं बहुत जल्दी में निकला और मैं अपनी बंदूक लेने भूल गया। अब मेरे सामने शेर खड़ा है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो उन्होंने देखा उनके पीछे की जेब में उनका लाइसेंस था, तो उन्होंने लाइसेंस दिखाया।
0: बंदूक का लाइसेंस।
1: जी हाँ बंदूक का लाइसेंस दिखाया। तो उस शेर को दिखाते ही शेर मर गया।
0: अच्छा, इन्होंने तो लाइसेंस से ही
1: तो
0: मार दिया।
1: जी हाँ अब किस्टो अंकल की टर्न आई। उन्होंने कहा, अरे धीरा तो धीरा, घुस भी नहीं है घुस भी नहीं है, मेरा सुन, मैं जंगल में घेरा, भागा भागा भागा, मैं जंगल के आगे जंगल मेरे पीछे, भागा भागा भागा, मैं जंगल के आगे जंगल मेरे पीछे, सेम
0: हाँ जी,
1: भागा भागा भागा, जंगल मेरे आगे मैं जंगल के पीछे, वो जंगल के अंदर हेगी हेगी हेगी जोरदा, वो झाड़ के नीचे एक शेर शेर शेर बैठा था, शेर। वो शेर को मैंने बोला, हे शेर तू जंगल का रजाई रजाई? तो बोला, हाँ हूँ, तेरी सब लोग सेवा करते हैं, तेरी सब लोग सेवा सेवा करते हैं। तो बोला, हाँ करते हैं। तो तू झड़ी झड़ी काय को नहीं पहनता है, तू शर्म के मारे मर गया मर गया।
0: तीसरे को आपने शर्म से मार
1: जी
0: दिया।
1: हाँ
0: अच्छा सुनिए, आप, मुझे मालूम है कि पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार हैं, उतने ही होशियार हैं जितने आप एक्टिंग में होशियार हैं। और आप सेट पे जो कुछ किया करते हैं, एक तो जोक सुनाते हैं,
1: जी हाँ
0: उसके अलावा आप पहेलियां पूछा करते हैं हमसे।
1: जी हाँ
0: अगर हमसे आप कुछ पहेलियां पूछें तो
1: जी
0: पूछेंगे,
1: पूछो,
0: या मैं पूछूं आपसे?
1: जो भी कहें आप
0: चलिए हम कुछ पहेलियां आपको सुनाते हैं,
1: पूछिए।
0: अगर अच्छे लगे तो उनके जवाब बताइएगा। हाँ
1: चलिए
0: जी चलिए।
2: मैं लाल लाल गुजकू तू हाथ डाले मुझको, मैं काट खाऊं तुझको तू खाए जाए मुझको, बताओ तो मैं

0: नारियल।
1: अच्छा एक बात बताइए राजू बेटा, आपने सबसे पहली फिल्म कौन सी देखी थी?
2: मैं जब छोटा था तो बहुत सारी फिल्में देखता था।
1: मतलब अब आप बड़े हो गए?
2: नहीं, मैं उस उम्र की बात करता हूँ, इस उम्र से भी छोटा था जब।
1: अच्छा।
2: तो मैं जब छोटा था तो बहुत सी फिल्म देखता था, लेकिन उसमें से मुझे एक फिल्म बहुत ही अच्छी लगी, वो ब्रह्मचारी।
1: ठीक है, मुझे याद है।
2: उसके अंदर से मुझे एक गाना बहुत ही अच्छा लगा। अगर वो गाना कभी रेडियो पर आता था ना, भले मैं खेलता था, लेसन करता, कुछ भी करता था ना, और अगर वो गाना रेडियो पर आया, बस मैं नाचने लग जाता था।
1: अच्छा, शमी अंकल की तरह। अच्छा, अगर वो गाना मैं अब भी लगाऊं तो आप नाचेंगे?
2: हाँ नाचूंगा तो सही, लेकिन फायदा नहीं है,
1: क्यों?
2: कोई देखने वाला तो नहीं।
1: अरे फौजी भाई भी देखना, खुशी से नाचने लगेंगे। मैं लगाता हूँ गाना, चलिए।

0: दाढ़ी।
1: राजू बेटा एक बात जो हम भूल गए।
2: देखिए अंकल, आप फिर से भूल करने लगे।
1: नहीं नहीं, भूले मतलब उस तरह की भूल नहीं है, भूल ना जाए इसलिए जो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस पिक्चर में आपको नेशनल अवार्ड मिला है उस पिक्चर का कोई गाना तो सुनाइए।
2: अरे हाँ,
1: आपको याद है कोई गाना उस पिक्चर का?
2: हाँ, उसमें से एक गाना मुझे अच्छा लगा, वो आज से पहले आज से ज्यादा।
1: आपको याद है गाना? याद है?
2: हाँ,
1: तर्ज भी याद है?
2: हाँ, और वैसे मैं आज खुश भी हूँ।
1: अच्छा तो चलिए सुनाइए मैं कैसे गाना।
2: आज से पहले आज से ज्यादा, आज से पहले आज से

0: राजवीर अब आगे चले यहाँ से।
1: लेकिन अंकल
0: जी
1: आपने एक भूल की।
0: फिर मैंने की आपने की
1: नहीं की आपने, कह मैं रहा हूँ कि जिस फिल्म में मुझे नेशनल अवार्ड मिला है उस फिल्म का नाम तो आपने बताना ही भूल गया।
0: आई एम सॉरी यार।
1: खैर मैं बता देता हूँ, उस फिल्म का नाम है चितचोर।
0: अच्छा उसके बाद एक और भूल से आप बच के रहिए कि वक्त हो रहा है हमें चलना है और फौजी भाइयों को नमस्ते कह के उनसे इजाजत लेनी।
1: नहीं अंकल एक गाना।
0: और गाना कौन सा?
1: वो मैं बताऊंगा नहीं, आप सुनिए।
0: नहीं पर बता तो दीजिए।
1: नहीं सस्पेंस।
0: अच्छा गाने में सस्पेंस वाले।
1: हाँ चलिए
0: चलिए सुनाइए।

0: ये थी मास्टर राजू और गुलजार साहब की एक संयुक्त प्रस्तुति जो बरसों पहले विविध भारती पर हुई और अपने संग्रहालय से हमने निकाल कर इसे आपके लिए पेश किया। विविधा कार्यक्रम में आज हमने दो विशेष प्रस्तुतियां आपकी नजर की, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का अगस्त महीने का अंक और इसके साथ ही गुलजार साहब पर विशेष सामग्री, क्योंकि अगस्त की 18वीं गुलजार साहब का जन्मदिन होता है। आज का विविधा कार्यक्रम इतना ही। इस कार्यक्रम के लिए संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। अब यूनुस खान को दें इजाजत। नमस्कार, अगले हफ्ते फिर सुनिए विविधा।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत

0: शिकायत दर्ज करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, दवा नल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 योजना के अध्याय 4 में शामिल है। ये योजना करदाता को तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। 15 सितंबर तक ये खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
3: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, झारखंड, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये

रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में इसे गाया हेमलता ने। गीत रचना रविंद्र जैन की थी और ये गीत था फिल्म सुनैना से।

0: नदिया के पार फिल्म में आपने सुना ये आवाजें जसपाल सिंह और हेमलता और साथियों की थी। गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के।
1: बैठ जा, खड़ी हो जा।
2: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: अब कहां जाए हम?
3: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
2: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
3: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
2: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सेहत नामा।
5: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
6: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
5: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
6: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
5: पर रेरा तो शहरों में।
6: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
5: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
7: मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
8: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
9: सखी सहेली।
0: सिने जगत की जानी मानी गायिका हेमलता के गीत आज हैं श्रोताओं यादों की महफिल कार्यक्रम में।

0: जख्मों के निशान इस फिल्म का गीत था, हेमलता की आवाज में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।
1: सुन, कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, तोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
2: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन पर।

0: ये चौपाइयाँ आप सुन रहे थे, फिल्म थी दुल्हन वही, जो पिया मन भाई, हेमलता और साथियों की आवाजें थी, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आंखियों के झरोके से। इस फिल्म का गीत आपने सुना हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
3: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
2: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
4: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
6: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
7: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
6: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदार राजाध्यक्ष आ रही हैं।
7: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
6: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।
0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा सुरीला सफर।
8: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिचाल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
9: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। उन्होंने चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पूर्व

0: प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अष्ट धातु से निर्मित 21 फीट ऊंची प्रतिमा और मिनी अटल स्मारक का अनावरण किया। इसके बाद श्री शाह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज मैदान में पहुंचे, जहां वे इस समय अटल गौरव स्मृति समारोह को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले गृह मंत्री ने 15 जिलों के लिए 5,659 करोड़ रुपए के 944 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद श्री शाह का आज ही अलवर जाने का कार्यक्रम है, जहां से राज्य के 17 जिलों के लिए 6,453 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इस दौरान गृह मंत्री सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। श्री शाह विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। वे विजयनगर ग्राउंड में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री रोजगार उत्सव के तहत 10,500 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। श्री शाह नए केंद्रीय सहकारी बैंकों के गठन की घोषणा करेंगे और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए राशि भी हस्तांतरित करेंगे। इनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी शामिल हैं। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। अपने सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने वाजपेयी जी को असाधारण दूरदर्शी और उत्कृष्ट राजनेता बताया, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के शब्दों ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और उनके नेतृत्व ने राष्ट्र को सशक्त बनाया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने आज जोधपुर के जिला न्यायालय परिसर में 60 कोर्ट क्षमता वाले नए 7 मंजिला भवन का उद्घाटन किया और नए हाईकोर्ट गेस्ट हाउस की आधारशिला रखी। सीजेआई का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 25वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने और समारोह को संबोधित करने का कार्यक्रम है। साथ ही लीगल टेक्नोलॉजी एंड इट्स रोड मैप विषय पर आयोजित वाइस चांसलर्स कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं सीजेआई का प्रमुख अधिवक्ता संगठनों द्वारा आयोजित संयुक्त सम्मान समारोह में भी शिरकत करने का कार्यक्रम है। राजधानी जयपुर में आज बूढ़ी तीज की सवारी निकाली जाएगी। बैंड बाजों और शाही लवाजमे के साथ जनानी ड्योढ़ी से ये सवारी निकलेगी। इसके लिए प्रशासन ने यातायात के विशेष प्रबंध किए हैं। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी है। हालांकि मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 10 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटों में भरतपुर, धौलपुर सहित कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हुई और कुछ स्थानों पर तेज बरसात रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली, कोटा में दिन भर रुक रुक कर तेज बरसात का दौर चला। वहीं टोंक, बूंदी, अलवर और चित्तौड़गढ़ के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। इधर राज्य के पश्चिमी भागों में बारिश का दौर थमने के बाद अब फिर से धूप निकलने से गर्मी और उमस बढ़ने लगी है। प्रदेश में सबसे अधिक 38.6 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल और परसों प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि 19 अगस्त से एक बार फिर पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई गई है। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं समय दिन के 1:00

0: फिल्म अनजाना के ये कौन से दो कलाकार हैं श्रोताओ जो भीगना तो चाहते हैं लेकिन भीगने से बच रहे हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। और ऐसी बारिशों में क्या कोई कभी ऐसा दिखा आपको जो बिना छतरी के भीग रहा था और आपने अपनी छतरी के सहारे उसे थोड़ी दूर तक छोड़ दिया था।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: रिमझिम बारिश और सुहाना मौसम प्रेम भाव को जगाने वाला मुख्य उद्दीपन है। एक और श्रोता ने लिखा है कि अनजान अजनबी संग अनजाने में अनकही बातें और अनबूझी आशाओं आकांक्षाओं का आकलन करती इबारत है और आशिकों के आका बनी सावन की बरसती जो बूंदे हैं आकाश में से मानो बौछार कर रही हैं बूंदे और अपने आश्रित आशिकों को अनुरागी आशीर्वाद दे रही हैं। और कुछ एक शब्द हमारे कुछ श्रोताओं ने सुझाए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि रात समा पर्दा प्यार तमन्ना देखो कयामत इकरार दामन, ये सारे शब्द हैं इसमें। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि चाहे जमाना लाख करे सितम हाय कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे। और कुछ गीत इन्होंने भी सुझाए हैं।

याद हमने आपसे पूछी है श्रोताओं कि क्या कोई कभी ऐसा मिला जो बारिश में बिना छतरी के भीग रहा था और आपने उसे अपनी छतरी के सहारे थोड़ी दूर तक छोड़ दिया। ये कौन से कलाकार हैं?

ये गीत क्या आपके दिल के करीब है श्रोताओ? ये दिल क्या आपको इस गीत को सुनने के लिए बार बार मजबूर करता है? जी हाँ, ये गीत अपने जमाने का बड़ा ही खूबसूरत नगमा बन पड़ा था श्रोताओ, जो मुझे ऐसा लगता है कि सबकी जुबान पर था। आपने इस फिल्म को क्या देखा है और क्या आप ये कलाकार जो गा रहे थे उन्हें पहचानते हैं तो आप हमें लिख भेजें। और ये फिल्म क्या आपने देखी है? घर घर की कहानी फिल्म का ये गीत था, आवाज सदाबहार गायक किशोर कुमार की थी। हमारी श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बरसात में तुमसे मिले हम हमसे मिले तुम की तरफ इशारा कर रही है। बरसात सिर्फ तन ही नहीं भिगोती बल्कि मन को भी भिगोती है। बारिश अपने पूरे शबाब पर हो और किसी शेड के नीचे दो अजनबियों का बारिश रुकने तक धीरे धीरे संकोच छोड़कर बातों का सिलसिला शुरू करना, या किसी से मिले लिफ्ट के बाद पता चलना कि दोनों की मंजिल एक ही है। दोनों ही स्थितियों में ये महसूस होता है कि हम दोनों अब अजनबी नहीं बल्कि कई जन्मों के साथी हैं, तब दिल इस बरसात को शुक्रिया स्वरूप कह उठता है। जुग जुग से गीत मिलन के गाते रहेंगे। कई बार ऐसा भी होता है श्रोताओ कि वाकई हम किसी शेड के नीचे खड़े रहते हैं और सोचते हैं कि ये बारिश अब थम जाएगी, तब थम जाएगी, लेकिन बारिश ऐसी होती है कि बस रुकने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे में कोई आपका साथी बना क्या जो आज तक आपको याद है? तो बारिश की ये रातें जिनके यादों को आज

आप इस कार्यक्रम में ताज़ा कर सकते हैं। और हमारे तमाम श्रोताओं में से एक श्रोता ने और लिखा है कि वो बारिशों की रात थी और सावन खिड़कियों पर कोई धीमा सा खत लिख रहा था। हम दो अजनबी थे एक ही राह पर, मगर जाने क्यों हवा बार बार तुम्हारा रुख मेरी तरफ मोड़ देती थी। बादलों के काजल में आधी रात डूबी थी और तुम्हारे चेहरे से जब हवा ने पर्दा हटाया, लगा जैसे नरगिस के फूलों के बीच कोई भूली हुई कविता जाग गई हो। छतरी हाथ में थी और इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। वैसे जो सावन की रात होती है उसमें तमाम फूल भी होते हैं। नरगिस के फूल का हमने जिक्र किया है और आपको यादें तो ताज़ा करनी ही हैं, साथ ही नरगिस का जो फूल होता है क्या आपने उसे देखा है, कितने रंग का होता है श्रोताओं, यह आपको बताना है। और नरगिस के फूल को और क्या कहते हैं, यानी और क्या नाम है।

बरसात की रात फिल्म का ये गीत था और ये दो अनजाने कौन थे जिनकी मुलाकात बरसात की रात में हुई। और ये गीत जो एक्ट्रेस हैं या जो अभिनेत्री हैं वो कहाँ सुन रही हैं जब ये सिर्फ हीरो गाते हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ थी। बाकी डिटेल आपको बतानी है। घर घर की कहानी फिल्म में जलाल आगा पर फिल्माया गया गीत था और अनजाना में बबीता और राजेंद्र कुमार थे। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, हमने तो कई बार छोड़ा है एक बड़ी उम्र की महिला को मंदिर तक उसी की छतरी में, बस पकड़ा हमने खुद थोड़ा भीग गए पर उन्हें भीगने से बचाया और कई बार अपने फूलों के ऊपर भी छतरी को रखा ताकि उनमें ज्यादा पानी ना आ जाए। जी हाँ, एक और श्रोता लिखती हैं कि नरगिस का फूल मुख्य रूप से पीले और सफेद रंग का होता है लेकिन इसकी किस्मों में नारंगी

क्रीम गुलाबी और हल्के लाल रंग भी पाए जाते हैं। इसे अंग्रेजी में डेफोडिल कहा जाता है। एक और श्रोता लिखते हैं, एक सुहानी शाम और बाहर जिम जिम सावन बरस रहा था। वो ठीक वैसी ही एक बारिश की रात थी जब जिंदगी की अनजान राह पर चलते हुए दो अजनबी अचानक एक दूसरे के करीब आ गए। और उसके बाद की बात इन्होंने लिखी है अपने शब्दों में। एक और श्रोता लिखती हैं कि मैं छत पर आई कपड़े सुखाने, फिर कुमुदनी खिली देखी, फिर मोबाइल ले आई, उसकी तस्वीर खींची, बाद में बाकी बेलें हमें भूल गई तो वीडियो करने लगी, बाद में कमल रूठा उसको सहलाते समझाने लगी, उसके भी फोटो निकाले। चलो अब नीचे जाती हूँ और रेडियो शुरू करती हूँ। बप्पा, इन्होंने बप्पा को भी याद किया है, यानी गणपति बप्पा। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि जी हाँ, मुझे तो याद है वो बरसात की रात, देशभक्ति गीतों की एक शाम का प्रोग्राम चल रहा था। बाहर बारिश तेज थी, थोड़ा इंतजार करने के बाद भी बारिश नहीं रुकी। मैंने रेनकोट पहना और स्कूटर से घर आने के लिए, रास्ते में इतना बड़ा पानी से भरा गड्ढा था कि मेरा स्कूटर उसमें फंस गया और मेरा स्कूटर बंद हो गया। मुझे पैदल ही स्कूटर को घसीट कर घर आना पड़ा। मुझे याद है कल की बरसात की रात शायद जिंदगी भर नहीं भूलेगी। तो ऐसा हमारे और भी साथियों ने लिखा है। और एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम का अंदाज जो है वो लाजवाब होता है इस कार्यक्रम का। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी दुनिया के सारे खूबसूरत गाने सिर्फ और सिर्फ विविध भारती के खजाने में ही रिकॉर्ड करके महफूज किए गए हैं। आपके पास हर मूड के हर दौर के बेहतरीन संगीत मौजूद हैं। जी हाँ, विविध भारती की लाइब्रेरी तो ऐसी ही है। और कई बार आपने फेसबुक पर इसे देखा भी होगा। ये खूबसूरत हसीना कौन है?

वैसे बारिश अगर तेज हो तो छतरियों पर कितना भरोसा किया जा सकता है श्रोताओ, ये आपको बताना है। और बारिश में आप कहाँ जाना पसंद करते हैं, या किसी जगह आप गए जहाँ की रात जो थी वो आपको याद रह गई, और वो सफर आपका कैसा रहा, ये आपको बताना है। वैसे बारिश के मौसम में साइकिलें भी खूब चलाई जाती हैं, और सोचा ये जाता है छोड़ो छतरी कौन ले, ऐसा कभी आपके साथ हुआ तो ये आप हमसे बता सकते हैं। और एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि इनके कमेंट्स जो हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये लिखती हैं कि बारिश में प्रकृति अपने खुमार से जो है वो खुमार होता है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, धरती भी झूमती है, गाती है बरखा रानी जरा जम के बरसो। और एक कार्यक्रम में हमने आपको ये गीत सुनवाया भी था। एक और श्रोता ने लिखा है कि छतरी की बात पर याद आया, एक बार मेरी एक कलीग जिसे ऑफिस में काम को लेकर थोड़ा मतभेद था, लेकिन शाम को जब हम नरीमन पॉइंट से बाहर निकले तो मैं बरसात बहुत थी और मेरे पास छतरी नहीं थी, वो पीछे से आई और झटपट मेरे सिर पर छतरी उड़ा दी और हम दोनों साथ साथ चलते हुए चर्च गेट तक आ गए। जी हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभी नाराजगी भी होती है, पर कुछ ऐसे मौके आते हैं जब फिर से हम साथ साथ हो जाते हैं और छतरी उनमें जो है कह सकते हैं कि अहम रोल निभाती है। तो ऐसी ही बातें आज आपको साझा करनी है। वैसे जो सावन की रातें होती हैं उनमें न सिर्फ लोग या हम सफर साथ होते हैं, बल्कि कोई कोई गीत ऐसा होता है, कोई गजल ऐसी होती है जो आपको अच्छा एहसास दिलाती है। तो ऐसी अगर कोई बात है तो आप लिखें। एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन और किशोरावस्था में हम झूला देखने सावन की बरसात के बीच जाते थे, खूब जलेबी खाते और गुब्बारे लेते थे, मंदिरों में झूला उत्सव में गायन और नृत्य भी बहुत भाता था। बरसात की रात तो बहुत रोमांटिक होती है। वैसे इस साल अलनीनो ने बरसात को बहुत प्रभावित किया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज बारिश का मौसम सब जगह छाया है, सब जगह बारिश है, पर हमारे शहर में बादल हैं। पर बारिश के नहीं, आज के गीतों का आनंद ले रहे हैं, यानी बारिश नहीं है, धूप भी नहीं आती और बारिश भी नहीं। तो आप इंतजार करें, बारिश तो आएगी।

अभिनेत्री साधना और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार आपको बताने हैं इश्क पर जोर नहीं, ये फिल्म का नाम था। श्रोताओ, न सिर्फ हम सफर यानी कि जो साथ चले कुछ समय और याद रहे या फिर जीवन भर के लिए साथ हो गए, ऐसी यादें आप हमसे ताज़ा कर सकते हैं। और कभी कभी किताबें भी हमारी हम सफर होती हैं इस रात की। कभी कोई गीत, कभी कोई गजल आपको ऐसी रातों में, शांत रातों में, बारिश की रातों में सुनना पसंद हो तो आप बता सकते हैं। और कौन हम सफर है, वो कौन सा हम सफर है श्रोताओ, जिसकी याद बीती रात आपको सोने से, जिसकी याद ने बीती रात आपको नींद से जगाया, तो ये अगर आप बताना चाहें तो जरूर बताएं। बीती रात यानी कल जो गई, उस रात की हम बात कर रहे हैं। एक हमारे श्रोता ने बड़ी मजेदार बात लिखी है, और वैसे हमारे श्रोताओं से ये आग्रह है कि जल्दी जल्दी कमेंट्स भेजें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो स्क्रोल होते हैं तो वो एक साथ आ जाते हैं। हाँ, एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश के मौसम में जब छतरी लेकर गाड़ी के पीछे बैठो, छतरिया उड़ने का डर लगता है और सामने गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति, उसके मुंह पर पानी भी टपक जाता है कभी कभी, तो कभी अच्छा भी लगता है। भाई ये तो एक शरारत वाली बात हो गई। एक हमारे श्रोता और लिखते हैं कि सावन का महीना आते ही प्रकृति एक अलग बदलाव ले लेती है, चारों तरफ हरियाली होती है और छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो बरसती, ये कहती हैं कि इन बूंदों की तरह हमेशा खुश रहना चाहिए। जी हाँ, जब बूंदों को वैसे भी हम देखते हैं तो एक अजीब सी खुशी जो होती है मन में होती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि हम एक किसान जोड़ी हैं जो खेत में काम करते करते आपका रेडियो सुनते रहते हैं। आज हमें सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, ये गाना सुनना है, कृपया करके सुना दें तो बहुत उपकार होंगे। हमारे

नाम उन्होंने अपने नाम भी लिखे हैं और अपनी अर्धांगिनी का नाम भी लिखा है। तो हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और इंतजार तो करना पड़ेगा, गीत तो एक से एक आते ही रहते हैं। एक और हमारी श्रोता का कमेंट है, वो इस गीत को सुनवाने के बाद बताते हैं। लिफ्ट में जब आप जाते हैं, कोई ऐसी रात जो आपको याद रह गई हो?

श्रोता ने लिखा है कि हम एक बार बारिश में छाते से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक लड़की डॉक्टर को दिखाकर लौट रही थी। रास्ते में बारिश हो गई, बोली आंटी मुझे गली तक छोड़ देंगी। उसके घर तक छोड़ती हुई तब मैं अपने घर आई। वो भीग रही थी और बुखार में भी थी। यह हमारे एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत बरसती मौसम में हुई मुलाकात की बातों से जुड़े गीतों से बुनी जाने वाली है। तब हम यही कहेंगे रिमझिम की तराने लेकर आई बरसात। और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन के महीने में रिमझिम फुहारों के बीच किसी अजनबी से मिलना अक्सर पहली नजर में ही दिल में उतर जाता है। पहले कई बार खामोश उसकी यादें ताजा करती हैं और भीगे हुए। और एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश और सावन सौंदर्य से परिपूर्ण कर देता है। उड़ते बादल, बरसता पानी, फुहार, सुहाना मौसम जीवन में कई उमंग जो है जागती है और ये खूबसूरत एहसास होता है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि लिखते हैं, इन्होंने कुछ एक पैरोडी टाइप की लिखी है, तो ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये गीत आप बताइए कि कलाकार के हाथ में कौन सा वाद्य है और ये कौन सी फिल्म है। और इस गीत के पहले श्रोताओं हमने आपसे पूछा था, वो इश्क पर जोर नहीं फिल्म थी और संगीतकार थे।

अरुण गोविल और ज़ीना वहाव पर ये फिल्माया गया गीत था, आप सुन रहे थे सावन को आने दो फिल्म से, ये सुदास की आवाज थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की जो इबारत है, क्लासिक हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर और रोमानी नॉस्टैल्जिया का एक बेहद खूबसूरत और काव्यात्मक ताना बना है। बारिश की एक रात में दो अजनबियों के रूहानी जुड़ाव को यहाँ बेहद नफासत से पिरोया गया है। इस रचना की सबसे बड़ी खूबी इसमें शामिल क्लासिक गीतों के संदर्भ में है और अंत में हाथ में छतरी फिर क्यों भीगते रहे पंक्ति उस खूबसूरत विरोधाभास को दर्शाती है जहां इंसान दुनिया की बारिश से बचने का दिखावा तो करता है पर मोहब्बत की बारिश में पूरी तरह भीग जाना चाहता है। कलाकार बताएं श्रोताओं आप।

और देवानंद पर फिल्माया गया तीन देवियां फिल्म का ये गीत था। ये तीन देवियां कौन थे इस फिल्म में श्रोता? अगर आपने फिल्म देखी है तो आप हमें जरूर बताएं। सचिन देव बर्मन की तर्ज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पहले बरसात की रात ऐसी भी होती थी जब रात भर बारिश होती थी और लाइट बंद कर दी जाती थी, चारों तरफ सन्नाटा, काली घटा, कड़कड़ाती बिजली के बीच चौकन्ना रहना पड़ता था और रोशनी के लिए उन दिनों लालटेन के माध्यम रोशनी से पढ़ाई लिखाई और रसोई घर में खाना बनता था और उसी माध्यम रोशनी में बैठकर एक साथ खाना खाया जाता था। कितना सुकून था उन दिनों में भी। एक और श्रोता ने लिखा है कि सुंदर नायाब गीतों का नजराना यानी सुरमई यादों, तरानों का नया कारवां और नगमों की अनकही राहें जिन पर चलने का आनंद हर कोई चाहे।

एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि यदि घनघोर हो रही हो बारिश तो छाता भी काम नहीं करता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैं आजकल बर्लिन में हूँ और वहाँ से प्रोग्राम सुन रही हूँ। एक और श्रोता ने लिखा है कि बारिश के मौसम में जब छतरी लेकर गाड़ी पर पीछे बैठो तो भाई

दो कलाकार आपको पहचानने हैं श्रोताओ, और जो अभिनेता हैं वो कौन सा वाद्य बजा रहे हैं? वैसे अरुण गोविल के हाथ में रावण हत्था था।

आपको वादे बताने हैं और जरूर बताने हैं, जरूर बताइए श्रोताओं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि लिफ्ट पूछो मत, लिफ्ट के बारे में जगह वृंदावन गए, वहां किसी होटल में रुके और लिफ्ट में जा रहे थे, ऊपर अचानक से लाइट गोल, ओके लिफ्ट रुक गई है, बहुत डर गए सब, लेकिन शुक्र है लिफ्ट में नंबर लिखा था तो हमने उसे नंबर पर कॉल करके पूछा तो बोला लाइट गोल है, थोड़ी देर में आ जाएगी, तब टेंशन न करें। श्री 420 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, नरगिस और राज कपूर पर फिल्माया शंकर जयकिशन की तर्ज थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि बारिश की रिमझिम बरसती रात में प्रेम का सुंदर वितान छुपा है, किसी रहस्य की तरह जहां दो अजनबी मिले थे और फिर पूरा समा रंगीन हो उठा था। बारिश में छन छन कराती फुहारें मन पर नेह का जो पुल बनाती हैं उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। नेह का पुल पर दोनों ओर जमजमाते बादलों से जो रस की वर्षा होती है उसको निहारने से मन में प्रेम के फूल खिलते हैं और दिन सुरीला हो जाता है। प्रेम कोई एक दिन की बात नहीं, ये तो हमेशा हमेशा के लिए हर बार मुट्ठी से फिसल

मिलती ये बारिश प्रेम भरी और मन में अटक जाती है। कलाकार आपको बताने हैं और फिल्म

सावन की भीगी रात की तरह सुंदर होता है। श्रोताओं, ये कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुन रहे थे। नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, इस फिल्म का गीत नंदा और शशि कपूर पर फिल्माया गया। आपके सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

आपका स्वागत है। भाई ये जमाना प्यार से ज्यादा पीआर का है। पीआर यानी पब्लिक रिलेशन, जिसका सीधा सा अर्थ है लोगों से संपर्क करना। इन दिनों लोगों से संपर्क बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी समझा जाता है। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि लोगों से संपर्क रखने का अर्थ किसी भी व्यक्ति से बातचीत करना नहीं है, बल्कि संपर्क उन्हीं लोगों से बढ़ाया जाता है जो आगे

काम आ सकें। ऐसे लोगों से न सिर्फ बातचीत करना और उनके आसपास बने रहने के मौके देखे जाते हैं, बल्कि कई बार ऐसे लोगों से दोस्ती भी गांठी जाती है, क्योंकि सफलता की सीढ़ी के लिए ये बड़े काम के जो होते हैं। हमें पता होता है कि ये साथ होंगे तो बहुत से काम बन सकते हैं।

0: जो पब्लिक रिलेशन यानी जनसंपर्क में रह पाते हैं वो अलग लोग होते हैं। इसके लिए कई बार वो निश्चित रकम भी चुकाते हैं या दोस्ती में ही उनकी बात बन जाती है। ऐसे में उनकी तारीफ वही लोग करते हैं और इससे आगे बढ़ने के रास्ते भी अपने आप खुलते जाते हैं। लेकिन इन दिनों एक नए किस्म का पीआर भी शुरू हुआ है, जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही करने लगे हैं। वो अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों या कामों का ढिंढोरा खुद ही पीटते हैं, पर इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, भाई जमाना ही कुछ ऐसा है। इन दिनों जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बने, पूछ भी उसी की होती है। और अगर आप अपने कामों के बारे में न बताएं, तो कोई मानता ही नहीं कि आपने कुछ किया होगा। इसलिए जैसा देश वैसा भेष, इसकी तर्ज पर अपना गुणगान करना भी इन दिनों फैशन में है।
1: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम या

कभी देखा नहीं देखा है, तो जाना नहीं जाना है, तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किसने है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी, हारे नहीं हम।

मतलब के लिए जनसंपर्क बढ़ाया जाए या अपनी प्रसिद्धि के लिए अपने ही मुंह से अपना गुणगान किया जाए, ये सब केवल पहली बार के लिए आपको कहीं पहुंचाने में काम आ सकते हैं। लेकिन सच तो यही है कि किसी की योग्यता उसके व्यवहार और उसकी काबिलियत से ही साबित होती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब दिखावे का पर्दा हटता है तो सामने आती है वास्तविकता। लोग उसी वास्तविकता को देखकर आपसे जुड़ते हैं। यहाँ ना कोई तारीफ काम आती है और ना ही कोई पीआर। काम आता है तो केवल आपका आचार विचार और व्यवहार। जब होता है अच्छा व्यवहार तो लोग आपकी पीठ पीछे भी करते हैं तारीफ। और यहाँ कोई पीआर काम नहीं करता, ये होता है उनका खालिस प्यार।

0: तो जहाँ जरूरी हो वहाँ तो जरूर करें प्यार, लेकिन सभी से कीजिए दिल से प्यार। इस संदेश के साथ अब दीजिए आज के त्रिवेणी से अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत, ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। एक रिपोर्ट।
1: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अन्य

0: के माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है। एनटीए ने बताया कि शेष तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है, और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
3: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सबके बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
1: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
4: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का

0: आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
1: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
0: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथ पुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जुड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अथा चमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृहमंत्री ए नमस्सिवयम ने किझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
4: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने

0: बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंवझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुँचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
1: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री राम कृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में JPSC JSSC परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

किशोर कुमार, लता मंगेशकर के युगल स्वरों में गाइड फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। शैलेंद्र के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: आरजू फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी की आवाज में, शंकर जयकिशन की तर्ज, हसरत जयपुरी के बोल थे।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
3: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदार राजाध्यक्ष आ रही हैं।
3: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
2: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नव में।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में आनंद बख्शी की गीत रचना थी, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे

रोशन का संगीत था साहिर लुधियानवी की रचना, आपने सुनी सुधा मल्होत्रा की आवाज में फिल्म बाबर से। सदाबहार नगमे कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

कहीं दिखती थी, ताजगी गीतों की आप भी महसूस करेंगे। बस सुनते रहिए मन चाहे गीत। तो सुनिए जरा ये गीत, इसमें आपके प्यारे प्यारे खतों की खुशबू है। मन चाहे गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

गोलाबाजार बक्सर से सदानंद, अभयानंद और परमानंद आर्या ने हमें पत्र लिखे। पुलगाम जिला वर्धा से अब्दुल कलाम का पत्र आया। गंगा शहर बीकानेर के हमारे श्रोता हैं कैलाश सोनी, गोविंदा सोनी, उत्तम सोनी और मिलवदास, जयदास, देवेश दास की फरमाइश आई है। धनवंतन बाई, मोतिन बाई मानिकपुरी का भी नाम इसमें है। गणेश धाम परसूली बालोद के हमारे श्रोता हैं और ये पत्र आया है शीशगढ़ बरेली का इलियास नईम और नदीम इदरीसी इसी गीत को सुनना चाहते थे।

इस गीत को सुनना चाहा, और ये हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ के शिखा, प्रीति, संध्या, शालू ठाकुर। और ये पत्र आया है जुनताज अकोले से, राजेश प्रिया और रोहन नेहा वाघमारे का ये पत्र है। और महेंद्र जैन, नागेश जैन, पारस, जयेश, ऋषभ और संयम के साथ सिद्धांत जैन का भी नाम है। ये पेठ अकोला के हमारे श्रोता हैं।

पॉपी नैयर के संगीत निर्देशन में इसे गाया महेंद्र कपूर ने। एसएच बिहारी के बोल थे। आप सुन रहे थे किस्मत फिल्म का गीत। पोहरा अहिवारा जिला छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता पत्र लिखते हैं, पोषण बंदौर और चंद्रकरण प्रीति और छाया बंदौर की ये फरमाइश है। और मीना तलरेजा जी का भी पत्र मेरे हाथ में है श्रोताओं। इन्होंने कहाँ से लिखा है, जगह का नाम नहीं लिखा। हमारे यहाँ का तो पता ठीक है। दत्तारेंगी भाड़ा पारा के हमारे श्रोता हैं हीरामन वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा ने इस गीत की फरमाइश भेजी। गिंदलाल श्रीवास्तव।

0: और गेंदू भाई का पत्र आया है दुर्गा चौक रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। देवली कांशिवनी तालुका जिला अकोले से हमारे श्रोता हैं सचिन, नीलखन, आयुष, पीयूष, आराध्या, सारिका, मधुकर राउत, ये हमारे रंगनाथ देउल गांव के श्रोता हैं मधुकर, जया राउत, ओम कीर्ति राउत और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: अब अगर हमसे

ये खूबसूरत तर्ज थी मदन मोहन की, साहिल धनवी की रचना आपने सुनी। लैला मजनू फिल्म का ये दो गाना था, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया। आप सभी की फरमाइश, शीतल पार्क राजकोट से कासिम संगवाणी, इकबाल अनवर संगवाणी ने पत्र लिखा और बलियापुर धनबाद के हमारे श्रोता हैं गिरधारी लाल अग्रवाल, कंवर कॉलोनी बाड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली ने हमें पत्र लिखे, हुसैन चौक रामनाथ परा जंक्शन प्लॉट राजकोट के हमारे श्रोता हैं मोइन अहमद अजमेरी, लियाकत अहमद इरफान, प्रभुदास कोटेचा, हंसाबेन कोटेचा और आशीष कोटेचा ने पत्र लिखे और इसी गीत को सुनना चाहा सरोज चौक अमरावती के हमारे श्रोताओं ने, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम, आयशा, हदिया आसमा और मुश्तबा खान, सादिक भाई और शाहिद ने।

0: नहीं भाई, ये तो बहुत महंगा रुपया है।
1: महंगा?
0: मेरा तो दिवाली निकल जाएगा। उदाचन भाई उदाचन, कोई सस्ती तरकीब सोचो।
1: तुम रहे कृपण के कृपण ही। अरे भाई, तुम अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते?
0: नहीं भाई, जिसने भी अपनी गाड़ी कमाई, सारी जेवर पर कमाई, समझो उसकी आफत आई।
2: तो फिर खोजो जमाई और कर दो सगाई।
0: क्या मतलब?
1: अरे भाई, जमाई का मतलब भी नहीं समझते? तुम्हारी बेटी सयानी हो गई,
0: हाँ, तो
1: उसकी शादी कर दो और छुट्टी पा जाओ।
0: शादी? नहीं नहीं नहीं, शादी के बाद बेटी खुश रहेगी, इसकी क्या गारंटी है? है बोलो, है तो गारंटी नहीं। अरे भाई, तुम जानते नहीं हो, अक्सर शादी लाती है बर्बादी।
1: अच्छा जी, अब जरा ये भी बता दो कि फिर तुमने क्यों की थी शादी?
0: एक ही बार तो की थी।
1: हाँ, एक ही बार की थी। अरे, तुम्हारी बहानेबाजी मैं समझता हूँ, तुम पक्के कंजूस हो। कंजूस? बेटी की शादी में खर्च हो जाएगा ना, इसीलिए बातें बना रहे हो।
0: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, क्या तुम भी बात करते हो। उदाहरण?
1: हाँ,
0: कोई आजमूस कर सकते?
1: नहीं नहीं भाई, मैं कुछ नहीं जानता। बेटी तुम्हारी है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं चला, दुकान खोलने का वक्त हो रहा है।
0: मैंने कहा कि अपनी दुलारी बेटी को भेजते जाना है।
1: अच्छा?
0: वो रूपा की सहेली है, शायद कोई रास्ता निकाल ले।
1: ठीक है, मैं दुलारी को भिजवा देता
0: हूँ। देखो, भेजना जरूर।
1: हाँ, भेज दूंगा।
0: चला गया, लगता है उधार चंद की बुद्धि भी उधार की है, तभी तो दिमाग नहीं चलता। साड़ी, जेवर, शादी, आया आया आया आया, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता, न जाने क्या हो गया मेरी बेटी को। आया
3: चाचा जी।
0: हाँ दादी, तुम आ गई।
3: क्या बात है, मुझे बताइए। चाचा जी, मुझे मालूम हो गया है, रूपा का मर्ज है प्यार और उसका इलाज है शादी।
0: अरे वाह वाह, शादी नहीं बर्बादी। मैं कहता हूँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता।
3: मैंने चाचा जी,
0: उसने इसलिए बड़ा दिया।
3: चाचा जी, रूपा किसी को चाहती
0: है? किसी का नाम है जी?
3: उसे पति चाहिए।
0: मैं कुछ नहीं जानता।
3: पति चाहिए चाचा जी, रूपा को पति चाहिए, उसकी शादी कर दीजिए।
0: मैं कुछ नहीं सुनूंगा।
3: रूपा, देखा दुलारी, चिंता की कोई बात नहीं। रूपा, तुम तो कहती थी कि कहने भर की देर है, पिताजी हंसते हंसते प्रेम के साथ शादी कर दे। मैं चाचा जी को ऐसा नहीं समझती थी। अब क्या होगा दुलारी, पिताजी शादी करेंगे नहीं और मैं प्रेम के बगैर जिंदा रह नहीं सकती। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारी शादी प्रेम बाबू से ही होगी, विश्वास रखो। लेकिन पिताजी की जिद के आगे तू क्या कर पाएगी? कहा ना, तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। अरे चाचा जी आ रहे हैं, चलो अंदर चले।
0: प्यार हो गया है, शादी करेंगी। दिन रात एक एक करके मैंने धन कमाया है, क्या इसीलिए कि लड़की की दहेज में स्वागत तू? कृपण चंद ऐसा मूर्ख नहीं है। मैं अपनी संपत्ति घर में ही रखूंगा और बेटी को भी घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा।
3: चाचा जी, चाचा जी, गजब हो गया। रूपा,
0: क्या हुआ मेरी बेटी को?
3: बदकिस्मती।
0: अरे तुम्हारी बोलो तो कुछ।
3: दुर्भाग्य।
0: अरे बताती नहीं, क्या हुआ?
3: रूपा बहन।
0: हाँ, क्या हुआ उसे?
3: आपकी बातों से हताश होकर रूपा अपने कमरे में गई।
0: अच्छा, तो
3: पीछे वाली खिड़की खोली और आसमान की तरफ आंखें उठाकर कहा, पिता का स्नेह खोकर मैं जीवित नहीं रह सकती।
0: अरे,
3: मेरे लिए अब एक ही रास्ता है।
0: क्या, क्या?
3: मौत।
0: और वो नीचे कूद गई?
3: नहीं चाचा जी, मैंने पकड़ लिया।
0: क्यों, क्यों?
3: चाचा जी, अब वो बिस्तर पर पड़ी है। पहले रोती रही, फिर अचानक चेहरा पीला पड़ गया और वो मूर्छित हो
0: गई। मूर्छित हो गई। मैं अभी डॉक्टर बुलाता हूँ।
3: जल्दी जाइए,
0: रूपा को देखो। मैं अभी डॉक्टर।
3: रूपा, लाइन क्लियर है, आ जा। क्या कहा पिताजी ने? घबरा कर डॉक्टर बुलाने गए हैं।
4: डॉक्टर?
3: हाँ हाँ,
4: अब क्या होगा? डॉक्टर के सामने पोल खुल जाएगी।
3: चिंता न करो, चाचा जी हैं पक्के कंजूस, अच्छे डॉक्टर को लाने से रहे, फटीचर डॉक्टर आएगा, उसे धोखे में रखना मुश्किल नहीं होगा। अरे चाचा जी तो तीन तीन डॉक्टर ला रहे हैं। चाचा,

0: अंदर जाकर मूर्छित हो जाए। आइए आइए
1: आइए बड़ी
0: चाचा जी।
1: हाँ बेटी।
0: आप तीन तीन डॉक्टर ले आए?
1: हाँ बेटी, एक डॉक्टर, दूसरा वैद्य और तीसरा हकीम। बेटी क्या बात है
0: चाचा जी? रूपा पर ये तीनों मिलकर भी शायद बेचारी रूपा को ठीक कर पाए।
1: नहीं ऐसी बात नहीं है।
2: मैं डॉक्टर बोगसचंद।
1: हाँ हाँ बोगसचंद, बिल्कुल बोगस।
2: मैं मर्ज के साथ मरीज को भी साफ कर देता हूँ।
3: और मैं हूँ कविराज मूढ़ानंद। मूढ़ानंद नाड़ी देखकर पूर्व जन्म तक का रोग बता सकता हूँ। मेरा चेहरा देखकर ही रोग पलायन कर जाता है।
4: मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। हकीम अहमद सोठवी का नाम बच्चा बच्चा जानता है। चाहूँ तो मुर्दे में जान डाल लूँ और चाहूँ तो जिंदा को
1: अरे भाई मैंने कहा आपने मुमिया मिट्टू बाद में बनिएगा, आप लोग पहले मेरी बेटी को देख लें।
2: क्या तकलीफ है आपको?
3: मुझे अपनी नाड़ी दिखाइए।
4: अरे मैं तो चेहरा देखकर नहीं बता सकता हूँ कि इसे कम सहाई।
1: सावधान के मेरी बेटी नहीं उसकी सहेली है।
2: आपने पहले क्यों नहीं बताया?
3: हमें धोखे में रखा। खैर कोई बात नहीं, हम सहेली की नाड़ी देखकर ही आपके बेटी का रोग बता।
4: तो मरीजा मरीजा आखिर है कहाँ भाई? मरीजा कहाँ है?
1: आप मरीजा पूछ रहे हैं जी? वो अंदर कमरे में है। दिला दी बेटी, इन लोगों को अंदर ले
0: जाइए।
1: वो आ गया है। क्या हाल है मेरी बेटी का?
2: हमने अच्छी तरह एग्जामिन कर लिया।
1: गुड गुड।
2: बॉडी में काफी फॉरेन मैटर है।
1: क्या मतलब हो जी? पापा पापा मेरी बेटी एकदम देसी है। देसी
3: वायु के साथ साथ पित्त प्रकोप भी।
4: इससे पहले कि हम कोई दवा तजवीज करें, हम आपस में कुछ मशविरा करना चाहते हैं। क्यों डॉक्टर बोगसचंद?
2: आपने सेंट पर्सन सही बात कही है हकीम सोठवी साहब।
3: मैं भी आप दोनों से शत प्रतिशत सहमत हूँ।
1: अच्छा,
3: परामर्श के पश्चात ही निदान और उपचार हो सके।
1: ठीक है, ऐसा करिए आप लोग सलाह कर लें। तब तक मैं बेटी को देख लूं।
2: आजकल मौसम बहुत खराब है कविराज मूढ़ानंद जी।
3: ऐसे ही मौसम में पित्त प्रकोप और वायु विकार होता है।
4: यार फिर भी तो मरीज नहीं आते।
2: अरे आपके यहाँ नहीं आते होंगे, मेरी डिस्पेंसरी तो खचाखच भरी रहती है।
3: अरे क्यों मिथ्या खत्म करते हो, जैसे मुझे ज्ञात ही नहीं। हमारा औषधालय भी तो वही है, दिन रात बैठे बैठे मक्खियाँ मारा करते हैं।
2: और आप कौन सा तीर मारा करते हैं? छठे छमाए कोई दवा लेने आ जाता है।
3: देखिए डॉक्टर साहब, मेरा मुंह मत खुलवाइए।
4: अरे भाई,
3: हमारे यहाँ तो छठे छमाए कोई आ भी जाता है, आपके यहाँ तो कोई फटकता भी नहीं।
4: आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है भाईजान। हाथ में शफा होनी चाहिए शफा, मरीजों की कमी नहीं रहती। हाँ एक बार का जिक्र है कि एक धोबी को बुखार आ गया, मैं देखने गया। आप यकीन मानिए साहिबान, मैंने गलती से दवा उसके गधे को खिला दी।
3: अच्छा,
4: अब धोबी चंगा हो गया।
2: तो ये क्यों नहीं कहते अहमद साहब कि आप जानवरों के हकीम हैं?
4: जानवरों डॉक्टर होंगे आप? मैं तो जनाब खानदानी
2: गधों का इलाज करता हूँ।
3: दीजिए, आप लोग फिर लड़ने लगे।
1: बेटी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, आप लोगों ने क्या किया?
3: देखिए रक्त दोष के साथ साथ वायु विकार और पित्त प्रकोप है, किंतु चिंता की कोई बात नहीं। असाध से असाध रोग भी कविराज मूढ़ानंद के चंगुल से बचकर नहीं जा सकता।
1: तो जल्दी कोई इलाज बताइए।
3: आप निश्चिंत रहें, मैं रोगिणी का कायाकल्प कर दूंगा।
2: और आपकी जेब का भी कायाकल्प हो जाएगा सेठ जी। कविराज मूढ़ानंद ठगानंद के नाम से मशहूर है।
3: और अपनी भी तो कहो सेठ जी, डॉक्टर बोगसचंद के चक्कर में फंसकर आज तक कोई रोगी जीवित नहीं बचा।
4: हम डॉक्टर साहब और कविराज दोनों वजह फरमाते हैं। दोनों ही जहीर और ठग हैं।
3: हाँ बिल्कुल ठीक।
4: अरे खानदानी हकीम का जनाब सिर

0: हूँ खानदानी हकीम जहाँ। ये देखिए, ये लीजिए एक पुड़िया सोंठ की, फौरन गर्म पानी के साथ खा लीजिए, पलक झपकते ही मर्द काफूर हो जाएगा।
1: मगर हकीम साहब, हाँ जी मरी मैं नहीं, मेरी बेटी है।
2: तो क्या हुआ, एक बार हकीम साहब ने गधे को दवा खिलाकर धोबी का मर्ज दूर कर दिया,
3: और धोबी ने प्रसन्न होकर वो गधा इन्हें पुरस्कार में दे दिया।
2: और उसी पर सवार होकर आजकल हकीम साहब दूर दूर तक मरीजों को
3: देखने जाते
1: हैं। सुनिए तो मेरी बात, आप लोगों की नोक झोंक मेरे लिए बहुत महंगी साबित हो रही है। अब मेहरबानी करके ये लीजिए अपनी फीस, और आप भी लीजिए अपनी फीस,
2: और
1: तशरीफ ले जाइए
2: के लिए दवा।
1: अल्लाह हम मिला जाइए, उन्होंने खुद भी जाइए, खत्म आ जाइए। अजीब नामाकूलों से पाला पड़ा।
4: चाचा जी क्या बताया उन लोगों ने?
1: अरे वे लोग गधे थे दुलारी।
4: मैं तो पहले कह रही थी
1: लगता है मेरी रूपा का मन कोई दूर कर नहीं पाएगा।
4: चाचा जी आप कहें तो मैं एक डॉक्टर को ले आऊं।
1: बेटी तू की चलाएगी,
4: एक नया डॉक्टर आया है, उसके हाथ में बहुत यश है, भगवान ने चाहा तो उसका हाथ लगते ही रूपा ठीक हो जाएगी।
1: अरे तो जाना, जब मेरा मुंह क्या पास रही है, जाकर जल्दी से बुलाना। और देख बेटी, फीस पहले से तय कर लेना, नहीं तो बाद में।
4: मैं सब पक्का कर
1: रही हूँ,
4: अभी गई और अभी आई।
1: अच्छा जल्दी जल्दी जल्दी लाना। रूपा को भी इसी वक्त बीमार होना था। अरे भगवान, सैकड़ों रुपया पर पानी फिर जाएगा। न जाने कौन से जन्म का बैर निकाल रही है ये।
5: अरे भाई डॉक्टर बोगस सर ने बताया कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है।
1: हाँ भाई बेहोश पड़ी है।
5: अरे भाई डॉक्टरों के चक्कर में पड़कर क्यों रुपए बर्बाद कर रहे हो? मेरी बात मानो, पल भर में रूपा को होश आ जाएगा।
1: क्या करूं बताओ, बताओ तुम्हें बताओ ना।
5: उसके कान में धीरे से कहो, बेटी देख तेरे लिए सुंदर सुंदर साड़ियां और जेवर लाया हूँ, बस वो आंखें खोल देगी, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है।
1: अपनी बकवास बंद करो उदास चंदा, मैं जानता हूँ तुम क्यों बार बार साड़ियों और जेवरों का जिक्र कर रहे हो।
5: अरे भाई मेरा भला क्या स्वार्थ हो सकता है इसमें? मैं तो
1: तुम साड़ियों और जेवरों का धंधा करते हो नहीं? बोलो करते हो नहीं? बोलो।
5: हाँ, तो हूँ।
1: तो अपनी दुकान का रहतिया माल मुझे बनाना चाहते हो? मगर कान खोल कर सुन लो उधार चंद।
5: हाँ, बोलो।
1: मेरा नाम भी कृपण चंद है। मैं तुम्हारी बात में फंसने वाला नहीं हूँ।
5: लेकिन मेरी बात तो सुनो।
1: मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो, तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बेटी है जो बिना स्वार्थ के दौड़ धूप कर रही है। चले जाओ यहाँ, जाओ।
5: ठीक है, अब मुझे क्या?
1: हाँ हाँ जाओ जाओ, दूर कहीं का। मुझे उल्लू बनाने आया था। अरे बाप रे, आया आया आया आया, अभी तक दुलारी नहीं आई। देखो देखो देखो रूपा का क्या हाल है।
4: चले आइए प्रेम बाबू, चाचा जी अंदर हैं।
2: मैं एकदम डॉक्टर लग रहा हूँ ना?
4: मगर जरा सोच समझ कर बात करिएगा, चाचा जी बड़े काइयां हैं, कहीं पोल खुल गई तो आपका पत्ता तो गोल होगा ही, मेरी भी खैर नहीं रहेगी।
2: मेरी एक्टिंग देखकर तुम दंग रह जाओगी, लेकिन अगर रूपा ने गड़बड़ी कर दी तो।
4: रूपा को मैंने सब कुछ समझा दिया है, बस आप चाचा जी को किसी तरह की शक न होने दें।
2: फिक्र ना करो तुम, मैं बेटी के साथ साथ बाप का भी इलाज करूंगा।
1: अरे अरे बेटी दुलारी दुलारी रूपा की हालत
4: अब ठीक हो जाएगी चाचा जी, डॉक्टर साहब आ गए हैं।
1: अरे ये डॉक्टर है
4: क्यों?
1: एकदम छोकरा
2: श्रीमान जी।
1: ये क्या इलाज करेगा?
2: आप मुझे मामूली डॉक्टर न समझें।
1: अच्छा?
2: मैं मनोचिकित्सक हूँ।
1: ये क्या बला है जी?
2: ना मैं सुई लगाता हूँ और ना मिक्सचर देता हूँ, ना नब्ज देखता हूँ और ना आला लगाता
1: हूँ। कैसे इलाज करते हो जी तुम?
2: जी चेहरा देखकर। श्रीमान जी, मैं आपका चेहरा देखकर आपकी बेटी का मर्ज बता सक्ता हूँ।
1: अच्छा
2: जी हाँ।
4: हाँ चाचा जी, इन्होंने मेरी मौसी की ननद की सास की छोटी लड़की का इलाज इसी तरह किया था। अरे चाचा जी, इनके हाथ में जादू है, जादू।
1: तब तो मेरी बेटी जरूर ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब चल कर उसे देख लीजिए।
2: मैं मरीज के पास नहीं जाता श्रीमान जी।
4: मगर वो तो बेहोश है।
2: जी हाँ, है नहीं थी। मैं पिता का चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि पुत्री को होश आ गया है।

0: जाकर मरीजा को ले आओ।
1: अभी लाई, अभी लाई।
2: तो कमाल है, वाह वाह वाह, आप तो डॉक्टर नहीं जादूगर है।
0: जी नहीं, भगवान का दास हूँ, उसी की कृपा से कुछ सिद्धियाँ मिल गई हैं। देखिए आपकी बेटी आ रही है।
2: मगर डॉक्टर साहब
0: जी,
2: चेहरा अभी भी पीला है। आया आया आया, कितनी दुर्बल हो गई है, देखिए ऐसे बिल्कुल देख से चल नहीं पाती।
0: सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप मुझ पर विश्वास रखिए।
1: लीजिए, मरीज आ गई।
0: ठीक है, मुझे इनसे बातें करने दीजिए। अब आप लोग
2: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, मेरे सामने ही बातें करो।
1: मगर चाचा जी, ये ठीक नहीं है, आपके सामने रूपा खुलकर बातें नहीं कर पाएगी।
2: लेकिन मैं अपनी बेटी को जवान डॉक्टर के पास अकेले नहीं छोड़ सकता।
0: डॉक्टर पर अविश्वास नहीं करना चाहिए श्रीमान जी।
2: श्रीमान जी, विश्वास तो मैंने कभी अपने बाप पर भी नहीं किया।
1: अच्छा चाचा जी, आइए हम लोग उस कोने में चले, रूपा आपकी आंखों के सामने रहेगी।
2: ये ठीक है, जाओ डॉक्टर जाओ। देखो
0: मैं आ गया।
1: मेरी प्राण
2: दुलारी,
1: मेरी आंखें,
2: डॉक्टर क्या बोल रहा है?
1: अरे चाचा जी, रूपा से मर्ज की बातें पूछ रहे हैं।
2: अरे मगर वो तो एकदम सच कर खड़ा है।
1: तो क्या हुआ चाचा जी, रूपा की आंखें देख रहे हैं, जुबान देख रहे हैं, डॉक्टर को सब कुछ देखना पड़ता है ना?
2: डॉक्टर साहब
0: जी,
2: डॉक्टर साहब कुछ पता चला?
0: मैंने इलाज शुरू कर दिया है।
2: अच्छा अच्छा,
0: आपको फर्क नहीं नजर आ रहा?
2: जी आप पहले से तो ठीक लग रही है, चेहरे पर मुस्कान और ताजगी भी आ गई है। दुलारी बेटी, रूपा को अंदर ले जाओ।
0: देखिए, दिमाग का असर जिस्म पर पड़ता है।
2: अच्छा
0: जी हाँ
2: जी,
0: अगर मन प्रसन्न है तो तन चंगा है।
2: अच्छा,
0: और मन में चिंता हुई कि शरीर को घुन लग जाता है। इसलिए मैं शरीर के रोग का निदान मानसिक स्थिति के आधार पर करता हूँ।
2: तो क्या मेरी बेटी का दिमाग खराब है?
0: जी हाँ
2: जी,
0: मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इनके दिमाग में शादी करने का भूत
2: है। शादी?
0: मैं गलत कह रहा हूँ?
1: जी प्रेम बाबू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर चाचा जी शादी के खिलाफ हैं।
2: बिल्कुल
0: होना ही चाहिए, शादी बर्बादी का मूल है।
2: क्या बात है, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी।
0: देखिए ना, मैं इसीलिए अब तक कुआ रहा हूँ।
1: तब फिर इसका इलाज क्या है? क्या रूपा ठीक नहीं होगी?
2: डॉक्टर, क्या मेरी बेटी हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी?
0: जी नहीं, इसका भी अचूक इलाज है।
2: जल्दी बताइए, जल्दी बताइए।
0: इनके दिमाग में जो गांठ लग गई है उसे खोलना पड़ेगा।
2: अच्छा,
0: रोगी को प्रसन्न करने के लिए ये जरूरी है कि उसकी इच्छा पूरी कर दे।
2: क्या मतलब कि इसकी हम शादी कर दे?
0: जी नहीं, जी नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, शादी करने की जरूरत नहीं है।
2: फिर क्या करें, बताइए।
0: देखिए, शादी करने का नाटक तो करना ही पड़ेगा।
2: नाटक?
0: जी हाँ, मेरा मतलब है रोग को जड़ से उखाड़ने के लिए ये जरूरी है कि मरीजा को ये यकीन हो जाए कि उसकी शादी की जा रही है।
2: आपका मतलब है कि?
0: हाँ हाँ, नकली शादी कीजिए, शादी का ढोंग रचाइए।
2: मगर डॉक्टर, ये कैसे मुमकिन है?
1: इसमें कठिनाई क्या है चाचा जी, नाटक ही तो करना है।
2: अरे बेटी, मगर नाटक के लिए नायक भी तो चाहिए। दूल्हा कौन बनेगा? बोलो, दूल्हा कौन बनेगा?
0: हाँ, ये समस्या।
2: वही वही ना बात।
1: चाचा साहब जी, आप चाहें तो समस्या हल हो सकती है।
0: वो कैसे?
1: आप ही दूल्हा बन जाइए। बोलिए चाचा जी, क्या राय है आपकी?
2: हो तो सकता है, लेकिन
1: अरे नहीं। लेकिन बेकिन छोड़िए चाचा जी, जो करना है जल्दी कीजिए, रूपा अंदर पहुँच कर फिर शिथिल पड़ गई है।
0: देखिए, इलाज फौरन होना चाहिए, नहीं तो मरीजा हमेशा के लिए पागल हो जाएगी, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे ठीक नहीं कर सकती।
1: डॉक्टर साहब, आप कृपा करके हमारी विनती मानिए, दूल्हा बनकर शादी का नाटक रचा दे, मैं भी रूपा को लाती
2: हूँ। बताइए डॉक्टर, मेरी बेटी को बताइए डॉक्टर, जैसे भी हो बता लीजिए। डॉक्टर, आप चाहेंगे तो दूल्हा बनने की फीस अलग से दे दूंगा।
0: ठीक है, इंसानियत के नाते मैं अपना कर्तव्य पूरा
2: करूंगा।
0: रोगी का उपचार करना डॉक्टर का परम पुनीत कर्तव्य।
2: सही, सही, सही।
0: नाटक सुखांत हो, मैं यही कोशिश करूंगा।
1: रूपा आ गई चाचा जी।
2: बहुत अच्छा बेटी, तो नौजवान पसंद है, मैंने तुम्हारी शादी इसके साथ करने को

0: क्या ये सच है पिताजी?
1: हाँ हाँ पसंद है।
0: तो आप शादी के लिए सहमति दे रहे हैं?
1: सच्चे दिल से बेटी, बेटी की खुशी में तो बाप की खुशी है।
0: मैं भी पंडित जी को बुलाकर लाती हूँ।
1: अरे सुन तो दुलारी, अरे पंडित जी की क्या जरूरत है, ये तो नाटक है नाटक।
0: मगर नाटक भी सही ढंग से होना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब के कंपाउंडर को पंडित बनाकर ले आती हूँ।
1: अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। बेटी अब तो तुम अपने पिता से नाराज नहीं हो ना?
0: नहीं, लेकिन
1: बेटी ला तो अपना हाथ। ऐसे हाँ, और भाई तुम भी हाथ।
2: लेकिन वो
1: नाटक अच्छा जा रहा है, चलवाती क्यों? ला बेटी हाथ दो। हाँ जीनू, अपने हाथ से मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया।
0: हाथ छोड़ना मत, इसी तरह पकड़े रहो, पंडित जी भी आ गए हैं।
3: वाह जजमान वाह, अरे बिना पंडित लठानंद के ब्याह कैसे हो सकता है?
1: ये तो ठीक है।
3: जजमान मैं कराऊंगा ब्याह।
1: लेकिन पंडित जी अरे ये तो नाटक है।
3: अरे नाटक तो सारी सृष्टि में हो रहा है जो है सो जजमान है। कहाँ है ये संसार जो है, ये रंगशाला है जिसमें हम आप सब अभिनेता हैं। तो जजमान, वर वधु का हाथ आपने ही मिलवाया था ना?
1: जी हाँ बिल्कुल।
3: तब ठीक है, तब ठीक है। तो बच्चा लोग अब तुम जरा इसके आसपास फेरे लगा लो जो है तो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजम, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनो हरी। समझ लो यजमान, हमारे भी पल गई है। सदा शिव भाग्यवती रहो। हाँ यजमान, अब सुनिए यजमान, अब आप कन्या और वर को आशीर्वाद दे दें जो है, और कहें कि ये जोड़ी जुग जुग बनी रहे।
1: पंडित जी, मेरी बात तो।
0: चाचा जी, आशीर्वाद में कंजूसी कैसी, दीजिए ना। नाटक पक्का होना चाहिए।
1: पक्का होना चाहिए बिल्कुल, मैं आशीर्वाद देता हूँ। बोली ये जोड़ी
4: चल भाई वाह, यानी कि चट मंगनी और पट ब्याह भी कर दिया तुमने। अरे और हमें खबर भी नहीं भेजी, मैं अभी जाकर साड़ियां और जेवर।
1: अरे उसकी जरूरत नहीं है भैया।
3: अच्छा जजमान, बोले तो अब हमारी रक्षणा तुमने जाए जो है जो।
1: कैसी रक्षणा, शादी तो
0: दे दीजिए दक्षिणा चाचा जी, पंडित जी ने कैसे ढंग से ब्याह कराया है।
1: और यहाँ तो खिदारी
3: जजमान की आए, ये क्या केवल भीषण है पैसे जो जो। अरे राम राम, जब जजमान एकदम पक्की शादी कराई है, कम से कम सवा 5 रुपए तो दीजिए।
1: मैं अब एक कानी कौड़ी नहीं दूंगा, ये समझ लीजिए, और लेना हो तो लो, नहीं तो उसे भी लौटा।
3: अरे अरे तुम नाराज क्या होते हैं जजमान, मैं जाता हूँ।
1: श्री कृष्ण गोविंद।
2: अब हमें भी आज्ञा दीजिए, चलो रुपा।
0: शादी के बाद लड़की ससुराल जाती है पिताजी, वहीं जा रहे हैं।
1: ये क्या मजाक है, वायुदासन देखा तुमने? देखा कल की झोपड़ी हमें बना रही है।
4: अरे इसमें बनाने की क्या बात है? अरे भाई जब शादी तुमने कर ही दिया है किरमन चंद, तो उसे विदा भी कर दो।
1: कैसी शादी, कैसी विदा? अरे उदासन तुम नहीं समझते भाई, तुम नहीं सोचते। अरे ये शादी तो सिर्फ मेरा मतलब है कि वो इलाज के लिए शादी का नाटक किया गया था। देखते नहीं, देखो देखो मेरी बेटी की तबीयत एकदम ठीक हो गई।
4: इलाज नाटक भाई, ये सब क्या चक्कर है यानी कि?
2: अब हमें क्या मालूम, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम दोनों वर्षों से एक दूसरे को प्यार करते हैं। आज पहली बार मैं इनसे मिला और मैंने रूपा से शादी करने की इच्छा व्यक्त की। इन्होंने कृपा करके अपनी सहमति दे दी और हमारा ब्याह हो गया। चलो रूपा।
1: अरे अरे अरे लोगो, अरे लोगो,

0: कर पड़ चंद गए
1: जाने भी
0: तो जाने तो क्या हुआ
2: उदाजन के बकवास ये बिल्कुल बकवास है उदाजन ये डॉक्टर था डॉक्टर मेरी लड़की को ले भागा मेरी लड़की को ले भागा उदाजन मुझसे कहने लगा कि नए ढंग से इलाज करूंगा तुम्हारी से पूछ
0: लो तुम्हारी क्या बात है
1: कुछ नहीं पिताजी रूपा प्रेम बाबू को चाहती है
0: ठीक है
1: मगर चाचा जी शादी करने को तैयार नहीं
2: बिल्कुल
1: इसीलिए हमें बीमारी और इलाज का नाटक करना
0: नाटक
3: भाई कृपाण चंद आज बच्चा तुम अपने ही जाल में फंस गए
0: भगवान ये क्या हो गया मैं तो समझता था शादी का ढोंग पुराने मर्ज का नया इलाज है मेरी बेटी के साथ साथ मेरी दौलत पर भी प्रेम का अधिकार होगा अरे अरे भाई उधार चल
3: हाँ कृपाण चल
0: अरे तुम आ लो
3: हो गया
0: अरे चक्कर
3: चक्कर
0: अरे
4: पुराना मर्ज नया इलाज ये नाटक अभी आप सुन रहे थे मूल लेखक मोलियर रूपांतरण एवं निर्देशन विनोद रस्तोगी ये आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है
5: अरे भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा सिर्फ एड और ब्रोशर अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा समझे कि नहीं समझे भैया

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तकरीबन 50 दशक तक रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और इस समय हमारे साथ हैं जाने माने रंग निर्देशक थिएटर की दुनिया में जिनका बहुत अमूल्य योगदान है पद्मश्री वामन केंद्रे साहब। बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: बहुत लंबे इंतजार के बाद आपका विविध भारती आना हुआ है
2: जी।
1: इन स्टूडियोज में आके कैसा महसूस होता है सर?
2: मैं बहुत अच्छा लगता है क्योंकि क्या है कि आकाशवाणी से जो पुराना रिश्ता है, मुझे लगता है कि मनोरंजन के जब साधन सीमित थे
1: जी,
2: उस समय की सारी यादें जो हैं, चाहे वो बीड आकाशवाणी केंद्र था, पहले तो नहीं था पर बाद में हुआ, तब का औरंगाबाद और अभी का छत्रपति संभाजी नगर में जो आकाशवाणी केंद्र था उससे काफी जुड़ा हुआ था मैं, फिर मुंबई आकाशवाणी केंद्र, फिर दिल्ली आकाशवाणी केंद्र। और एक ऐसा याद आता है कि नाटक के अलावा कभी कभी बीच में सिनेमा एक माध्यम था, नाटक एक था, और दूरदर्शन की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब से आकाशवाणी में आना जाना रहा है और वह

0: एक जो संस्कार है, चाहे वो छोटे छोटे जो भी कार्यक्रम हुआ करते थे, सुबह की धुन से उठना होता था और वो अभी भी कान में गूंजती हैं। तो आकाशवाणी का जो रिश्ता है वो मुझे लगता है कि बड़ा नॉस्टैल्जिक रिश्ता है। तो यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद कुछ बिना कैमरा
1: जी जी जी
0: कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे, कुछ बातचीत होगी, इसलिए बड़ा आनंद आ रहा है।
1: जी, आप एक ऐसे गांव से आते हैं, वहां आपके बचपन में तब क्या रेडियो था?
0: रेडियो था, मैं जब छोटा था तब रेडियो था, पर ऐसा था कि गांव में सिग्नल्स नहीं आते थे। पर जैसे चौथी क्लास के बाद में, पांचवी क्लास में, थोड़ा सा गांव छोड़ के, बिल्कुल छोटा सा जो देहात है उसको छोड़ के एक जिला परिषद के स्कूल में आया। उस गांव का नाम था नेकनूर।
1: जी, सुंदर नाम है।
0: हाँ, तो तब वो कहीं ना कहीं एक रेडियो भी बजता है पानपट्टी पे खासकर।
1: अच्छा, हाँ, क्या बात है, क्या बात है।
0: और बहुत मशहूर प्रोग्राम तो था बीना का गीतमाला, तो वो तो बिल्कुल दिल हाथ में पकड़ कर सुनते थे।
1: वाह।
0: और वो एक रेडियो होता था और उसके इर्द गिर्द 200-300 लोग बैठ के सुनते थे। तो ये सारी जो स्मृतियां हैं अभी भी आकाशवाणी की। और ऐसा लगा था कि ये माध्यम खत्म होगा टेलीविजन के आने की वजह से, इतने चैनल खुलने की वजह से, पर क्योंकि ये भी एक माध्यम है, एक शक्ति है, व्यक्त होने की शैली है, तो ये तो मालूम था कि ये खत्म नहीं होगा। फिर वो सारे रेडियो मिर्ची और सारे जितने भी चैनल वापस आ गए। और जब आप कैमरे के सामने नहीं होते हो, आप जर्नी में हो, कहीं टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हो, कार में जा रहे हो, घर में हो, तो वो फिर दोबारा उसकी शक्ति जो है लोगों को पता चली, जिसको हम वाचिक अभिनय की शक्ति कहते हैं।
1: वाह।
0: तो मूल गांव में जहां मैं रहता हूं या मेरी फैमिली रहती है, वो वैसा ही है। पतरे के घर है, मिट्टी की दीवारें हैं, पहले तो झोपड़ियां होती थी, उसी में रहता था, मेरा बचपन तो उसी में गया।
1: तो पिता काश्तकार थे?
0: पिता मेरे, हाँ, किसान थे, तो इसीलिए वो जो संस्कार है वो किसानी के या खेती के हैं या उस माहौल के हैं। तो ऐसा ही गांव है अभी भी। मुझे लगता है कि एक 8-10 साल पहले एक सड़क जैसे तैसे गांव तक पहुंची है।
1: जी जी।
0: तो इसीलिए वो अभी भी घर तक बहुत सीधे तरीके से हम पहुंच नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो काली मिट्टी वाला एरिया है।
1: जी जी।
0: मतलब आप खोदते जाओ जमीन में तो 8-10 फीट कोई पत्थर नहीं दिखता, मिट्टी ही मिट्टी है।
1: जी जी।
0: तो इसलिए बरसात में बहुत ज्यादा तकलीफ वाला है कि पैर फंसते रहते, आप एक पैर फंसाओ और दूसरा निकाल के आगे डालो, फिर पहला निकालो फिर दूसरा, इस तरीके से। वो जब हम स्कूल में भी जाते थे बगल वाले गांव में, मेरे गांव में एक शिक्षक की स्कूल था।
1: जी।
0: उस स्कूल को कोई बिल्डिंग भी नहीं थी।
1: मैंने सुना है पेड़ के नीचे पढ़ते थे।
0: यस। तो जो हनुमान का एक मंदिर था और वो बहुत पुराना पत्थर वाला, वो पत्थर भी, वो क्या कहते हैं, बहुत तराशे हुए पत्थर नहीं होते थे, ऐसे ही हनुमान मंदिर के दीवार को लगाए और उसके सामने एक चबूतरा बनाया था ताकि लोग आके बैठे, और बहुत बड़ा इमली के पेड़ था उसके ऊपर, मतलब कई सैकड़ों साल पुराना। तो उसके नीचे उस चबूतरे पे हमारी स्कूल शुरू होती थी। और जब बारिश आती थी तो बगल में एक चावड़ी बोलते हैं मराठी में,
1: जी जी,
0: एक धर्मशाला टाइप थोड़ा सा एक पाइस पत्रे की शेड था।
1: हाँ।
0: तो उसको दरवाजे नहीं होते थे, तो जो गांव की गायें हैं, भैंसे हैं, बकरियां हैं, वो घुस जाते थे रात भर वहां। और फिर हमको सबको उसको हकाल के बाहर निकालते, सुबह 8-9 बजे स्कूल जब जाते थे तो सारा गोबर ये सब
1: साफ कर,
0: साफ करके उसके बाद बरसात पत्रे के नीचे भरती थी। तो ऐसा था हमारा स्कूलिंग।
1: जी।
0: जिसको
1: तो यहाँ शिक्षा की असली ताकत समझ में
0: आती है। मेरे समझ में आता है कि हम अब आज की तारीख में इतना स्कूल के बारे में सजग है, अवेयर है, पर पढ़ना हो तो आदमी कहीं भी पढ़ सकता है। मैं अपने अनुभव से तो कह ही सकता हूँ कि जिला परिषद का स्कूल है, एक शिक्षक आता था, वो बीच में एक नदी थी, बाढ़ आ गई तो शिक्षक उधर है, हम नदी के इस किनारे, शिक्षक उस किनारे, तो कुछ कम्युनिकेशन नहीं होता था तो स्कूल नहीं होता था। पर बहुत अच्छे शिक्षक, एक जो शिक्षक आके गांव में रहे, उन्होंने शिक्षण का वातावरण बनाया। अब उनका मुझे नाम भी और सरनेम भी याद नहीं है, इतना पुरानी बातें, पर एक शिक्षक जब आपके जीवन में आता है तो इंस्पायर करता है। कहीं भी पढ़िए, मुझे लगता है बिल्डिंग से शिक्षण नहीं होता है, पढ़ाने वाले से शिक्षण होता है और पढ़ने वाले से शिक्षण होता है। इसलिए ऐसे छोटे से गांव में जहां कोई खेल का माहौल नहीं है, जहां कुछ नहीं है, पर एक बहुत अच्छी चीज थी कि किसान के घर में पैदा होने की वजह, एक तो खेती की वजह से, एग्रीकल्चरल बेस है मेरे जीवन का,

0: इसीलिए कौन से पौधे को क्या कहते हैं, कौन से पौधे को क्या फल आते हैं, ये सारा का सारा जो ज्ञान है उस समय हुआ। फिर जानवर पंछी ये सारा का सारा माहौल हो मेरे संस्कार का एक्सपोजर का हिस्सा है। दूसरी सबसे बढ़िया बात ये हुई कि जो हमारा फोक कल्चर है, लोक कलाएं जो हैं, वो किसान के घर के सामने जाए बिना, आंगन में जाए बिना उनकी रोजी रोटी नहीं चलती है
1: जी।
0: वो सुबह 4 बजे आने वाला जो कुड़मुड़िया बोलते हैं, 4 बजे आता है, 6 बजे वासुदेव आता है, फिर गोसावी आते हैं, डवरी आते हैं, गोंधली आते हैं, ये आता है, वो आता है। तो ऐसे सारे जितने भी कल्चर को कैरी करने वाले मुसाफिर है या थे, वो किसान के आंगन में आके वो नाच गाना जो भी है उसका भिक्षा मांग कर वो अपना चरितार्थ चलाते हैं। तो हमारा सारा कल्चर जो है भारतीय वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है,
1: बिल्कुल
0: वर्तूर से चलता है। किस समय दिवाली आएगी, किस समय पंचमी आएगी, कब होली आएगी, कब फलाना आएगा, ये एग्रीकल्चर में जब किसान को कब फुर्सत होती है उससे वो कैलेंडर बंधा हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: तो उसका फायदा ये हुआ कि वहाँ कीर्तन है, भजन है, भारूड है। एक मेरे घर में ही था
1: जी,
0: मेरे एक चाचा तो कीर्तनकार थे और पिताजी को भजन और भारूड बहुत अच्छा लगता था। उनका मेन व्यवसाय तो ये था,
1: खेती
0: था, पर वो अपने आनंद के लिए ये सारा करते थे। कभी भजन गाते थे एकादशी के दिन, कभी कहीं बगल के गांव में भंडारा लगा तो वहां बुलाते थे इन गांव वालों को, वहां जाके वो भारूड इनेक्ट करते थे संतों की कविताएं। तो गाते भी थे, नाचते भी थे और इनेक्टमेंट भी था। तो ये टोटल मुझे लगा कि मेरे गांव में पैदा होने का जो बड़ा मेरे जीवन में है, मेरे सोच में है, वो इसीलिए कि ये सारा मुझे मुफ्त में मिला। ये संस्कार, लोक कलाएं, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, चाहे तमाशा है, चाहे कीर्तन, जो भी है, मतलब एक मनोरंजन से प्रबोधन तक की जितनी भी लोक कलाएं हैं वो मुझे घर में बैठे बैठे देखने को मिली, उसकी अनुभूति मिली, उनका संस्कार मिला। तो ये छोटा गांव जो है वो मेरे जीवन का अहम हिस्सा है और इसीलिए मुझे मालूम है उस गांव का योगदान मेरे अपब्रिंगिंग में, मेरे करियर में क्या है। इसलिए मैं अभी भी गांव से जुड़ा हुआ हूं। मेरी माताजी गांव में रहती हैं, मेरे भाई, मेरे चाचा जी सारे गांव में रहते हैं। यहां कुछ लोग हैं, कहीं और जगह पे बिखरी हुई फैमिली है, लेकिन उस गांव से मेरा रिश्ता अभी भी कायम है।
1: क्या बात है, गांव और पढ़ाई लिखाई और ये सारी बातें हो रही है तो यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। मुझे लगता है यहाँ ये गाना ठीक रहेगा, लिखोगे पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। ये गाना सुनते हैं।
0: यस।

बोलो क्या होता है?

0: बामन केंद्र जी, सुंदर बात आपने कही कि एक पूरी लोक कलाएं किसान के घर उसके द्वार तक आती हैं और जो खेती का एक पूरा चक्र है उसके आधार पर हमारे त्योहार बंधे हुए हैं, कैलेंडर बंधा हुआ है और उस तरह से जीवन चलता है, उस तरह से पर्व और उत्सव चलते हैं और वो हमारे जीवन का हिस्सा है और कलाएं उसमें अंतर्निहित है। भारूड़ आपके बचपन और आपके संस्कारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आपने बताया पिताजी को भी बहुत ज्यादा वो लुभाता था, उससे जुड़ी यादें बांटिए।
1: नहीं, मुझे लग रहा है कि भारूड़ एक ऐसी कला है जो संतों ने जो कविताएं लिखी है, जो कविताएं ऐसी कविताएं जिनका इनैक्टमेंट भी हो सकता है, ऐसी कविताओं को भारूड़ कहते हैं। बहुरूढ़
0: जी,
1: जो लोगों में रूढ़ है, प्रसिद्ध है, ऐसी कविताओं का उसमें गाना भी है
0: जी,
1: नृत्य भी है और उसके बाद इनएक्टमेंट भी है। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि उसको एक आधे आधे घंटे का एक भारूढ़ के ऊपर इनएक्टमेंट, आधा घंटा पौना घंटा जितनी कैपेसिटी है, क्योंकि होता तो सारा इम्प्रोवाइजेशन है वहां। हाँ, कोई स्क्रिप्ट तो लिखा होता नहीं है। स्क्रिप्ट तो जो है वो संत एकनाथ ने लिखे भारूढ़ है, जनाबाई ने लिखे भारूढ़ है, तुकाराम जी ने लिखे भारूढ़ है, ज्ञानेश्वर ने लिखे कुछ भारूढ़ है। तो ऐसे जितने भी ये संत परंपरा है महाराष्ट्र की, मुझे लगता है उनकी कविताओं का एक तरीके से स अभिनय सादरीकरण है ये
0: जी।
1: तो वो और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होता है, उसमें ह्यूमर भी है, उसमें मस्ती भी है, नाचने नचवाने वाला रिदम भी है, ताल भी है, लय भी है, सामाजिक जागृति भी है और प्रबोधन भी है। तो इसीलिए वो फॉर्म बहुत, और वो कंटेम्प्रेरी है, उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूढ़ में रिफ्लेक्ट होता है। मतलब इतना लचीला भी है वो, क्योंकि वो जो किसान है या मजदूर है या जो भी इनैक्ट कर रहा है वही, और उसमें इनफॉर्मेलिटी बहुत है, मतलब कोई औपचारिकता नहीं है। मतलब एक बड़ी बड़ी मूंछ वाला आदमी औरत का काम कर रहा है,
0: okay.
1: मान लीजिए, और चारों तरफ ऑडियंस बैठी हुई है, हस्बैंड और वाइफ के बीच का झगड़ा हो रहा है यहाँ पर, जो गीत से भी हो रहा है और गीत के बाद एक्चुअल संवाद में भी आ रहा है। तो औरत बनने के लिए क्या आवश्यक है, तो एक पल्लू चाहिए, तो किसी के किसी ने ओढ़ी हुई शॉल है उसको खींच लिया, कमर में जो धोती पहना हुआ है उसने अपने कमर में एक उसका सिरा जो है खोच लिया और ऊपर से पल्लू, सर के ऊपर से पल्लू लगा लिया और एक बिंदी लगा ली या कुमकुम लगाते थे, हो गया वो औरत।
0: वाह,
1: बड़ी बड़ी मूछ है, इतनी लंबी दाढ़ी है, फिर भी उसको औरत मानते थे लोग।
0: यस,
1: और जो दूल्हा है वो गांव का है तो वो कोई लकड़ी ले ली है, लाठी ले ली है और कोई एक पगड़ी बांध ली कि हो गया वो दूल्हा। तो और वो दोनों के बीच में कभी गाते हैं, कभी संवाद प्रस्थापित हो रहा है, ह्यूमर हो रहा है, हजारों की तादाद में लोग आ गए, वो लोटपोट हो रहा है और उसमें से प्रबोधन तक पहुंच रही है बातें।
0: क्या बात,
1: मनोरंजन के द्वारा प्रबोधन तक पहुंचाना, जीवन के किसी एक वृत्ति प्रवृत्ति के सामने उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना और हंसाते गुदगुदाते हुए ये सब करने वाला फॉर्म है, इसलिए कोई भी आदमी उसकी तरफ आकर्षित होगा। मेरे पिताजी को कई सैकड़ों भारूढ़ याद थे और वो परफॉर्म भी करते थे, वो कोई उनका व्यवसाय नहीं, अपने आनंद के लिए परफॉर्म करते थे। जो मेरा गांव है दरडवाड़ी, वहां की भारूढ़ मंडली बहुत फेमस थी, तो वो पंचक्रोशी जो है वहां 150 गांवों में कहीं भी ये भंडारा होता था तो भारूढ़ मंडलियों को हर गांव के बुलाया जाता था, न्योता दिया जाता था। तो वो न्योते में ये जब जाते थे तो पूरा हंगामा करके आते थे।
0: वाह,
1: वहां एक तरीके का आपने एक भारूढ़ गाया, सवाल जवाब जैसे होते हैं कुछ। हाँ, मनोरंजन की लोक कलाओं में ऐसे भारूढ़ के द्वारा एक दूसरे को तू हारेगा क्या मैं जीतूंगा या मैं आज जीतूंगा कि आप हारोगे,
0: जैसे
1: कवालियों के मुकाबले में भी होता है। तो ये सुबह जब सूरज उदय होता था तब तक चलता था।
0: ओहो, पूरी रात?
1: पूरी रात, और पूरा एक उस गांव की जो भंडारे में 4-5 हजार तो लोग आते ही आते थे। तो ये मुझे लग रहा कि इस फॉर्म ने मुझे बहुत आकर्षित किया और वो आज भी मेरे आकर्षण का केंद्र वैसे ही है।
0: बचपन में याद हो गए थे भारूढ़?
1: बहुत सारी भारूढ़ मैंने प्रस्तुतियां कभी नहीं की, आई वॉज साइलेंट एडमायरर और साइलेंट ऑडियंस।
0: अरे वाह,
1: तब मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस क्षेत्र में आऊंगा और कुछ हो जाएगा। ये तो मेरे ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि अब

0: उधर जाना चाहिए, जो मेरे अंदर का संस्कारित कलाकार है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, वो कहीं ना कहीं उछल मार रहा था या वो कुछ उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था। तो वो बारूद वाले तो बहुत सारी चीजें हैं।
1: बिल्कुल, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं

0: लेकिन कठिन थी पढ़ाई, आपने जैसा कि बताया अपने गांव से दूर जाके।
1: माहौल नहीं था पढ़ने का, माहौल नहीं था जो मेरे साथी थे। जैसे अब नेकनूर से सातवीं तक पढ़ लिया मैंने
0: जी,
1: और फिर आठवीं से आगे मेरे चाचा के साथ मैं रहता था एक रूम किराया करके नेकनूर गांव में। एक रूम में तीन चार बच्चे अपना उसको किराए से लेते थे, उसी में चूल्हा, उसी में ईंधन लाना, लकड़ियां लाना, उसी में चूल्हा जला के खाना बनाना, अपने कपड़े खुद धोना। तो इसलिए स्वावलंबन भी उस सारी जीवन शैली का एक हिस्सा हो गया। पानी भी लाना, सब कुछ आपको अपना अपना करना पड़ता था। तो खाना भी जब बनाते तो इकट्ठा, कोई सब्जी काट रहा है तो कोई रोटियां बेल रहा है, तो कोई तवे पे सेक रहा है, तो कोई सब्जी बगल वाले चूल्हे पे चढ़ा रहा है। तो इस तरीके का वो माहौल था। तो मेरे चाचा जी मेरे साथ थे, तो उनका वहां एसएससी खत्म हो गया। अब उनको आगे कॉलेज में

0: जाना था, तो बीड जो जिला है हमारा वहां पर उनको जाना पड़ा, क्योंकि उनके पास यहां पढ़ने के खत्म हो गई कक्षा। तो फिर ऑब्वियसली मैं उनके साथ चला गया, क्योंकि चाचा साथ में है तो थोड़ा सा ये भी सुकून भी था घर वालों को भी। तो आठवीं से फिर मैं बीड जिले पे आ गया, और जिले पे आने का मतलब यह है कि थोड़ा सा माहौल भी बड़ा बन गया, जिले का स्तर है तो एजुकेशन भी थोड़ा अलग किस्म का था, थोड़ा बड़प्पन या एक दृष्टि का विस्तार होने की जो संभावनाएं बनती है, छोटे गांव से थोड़ा अर्बन एक टाउन में जाओ, टाउन से थोड़े बड़े टाउन में जाओ। तो फिर बीड में मैंने आठवीं से लेके ग्रेजुएशन तक मैं बीड में ही पढ़ता रहा।
1: जी, एक नई दुनिया खुली,
0: एक नई दुनिया खुली। एक क्या होता था कि यहाँ साइकिल ही बहुत ज्यादा एक ग्लैमरस चीज होती, किसी के पास साइकिल है तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो साइकिल से अब रिक्शा तक आ गए हम लोग। अरे रिक्शा भी होती है, कार भी होती है, पूरे जिले के गांव में तीन चार कार होती थी, वो बड़े अमीर लोगों के पास होती थी। पर दूर दराज की गाड़ियों का आना जाना, लोगों से मिलना मिलाना, फिर एक क्या कहते हैं एक्टिविटी में हिस्सा लेना, तो जहां पर आप 200-400-500 बच्चों के साथ पढ़ते थे, अब अचानक मेरे कॉलेज में उस समय 4,500-5,000 स्टूडेंट थे।
1: ओहो,
0: दूसरा कॉलेज था एक हमारे ही बीड शहर में, बलबीम कॉलेज, मैं पढ़ा हूँ नवगण महाविद्यालय में, वहाँ एक 4-5 हजार थे। तीसरा एक बंकट स्वामी महाविद्यालय था, उसमें 2-3 हजार गांव-गांव से आए और शहर के लोग पढ़ते थे, विद्यार्थी पढ़ते थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है जिला स्तर पर आप जब आते हैं। तो मेरा हमेशा विजन जो बढ़ता रहा, छोटे 30-35 मकान के गांव से फिर 2-3 हजार वाले मकान के शहर में, छोटे से तालुका प्लेस भी नहीं था, अभी भी वो तालुका नहीं हुआ है, पर उस वाले शहर पे, वहां से फिर डिस्ट्रिक्ट। तो आपका जितना शहर का आकार बढ़ता है उतनी आपकी सोच का भी आकार बढ़ता है।
1: बहुत सही बात है।
0: उसके बाद फिर औरंगाबाद संभाजीनगर चला गया यूनिवर्सिटी के लिए, फिर वो और भी बड़ा है, पांचों जिलों का जो 5 जिले थे मराठवाड़ा में, तो वो कमिश्नर ऑफिस था वो
1: जी,
0: तो वो और भी बढ़ गया, वहाँ यूनिवर्सिटी भी थी, तो यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी बात होती है। 300-400 एकड़ में आप इतनी सारी बिल्डिंगें, इतने सारे डिपार्टमेंट, और पढ़ने पढ़ाने का बहुत बड़ा माहौल बन जाता है
1: जी।
0: कई सारे कॉलेजेस थे वहाँ। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जो आपके पढ़ने का भी विस्तार होता है, सोचने का भी विस्तार होता है, और जीवन को आप जो सामना कर रहे हैं उस सामना का भी विस्तार होता है, तो जीवन अनुभव का भी तो विस्तार होता है
1: एकदम।
0: तो ये ऐसा वो माहौल था
1: जी। यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: जब आप बीड शहर में आ गए अपने चाचा के साथ, चाचा की अपनी पढ़ाई, आपकी अपनी पढ़ाई, वहाँ सिनेमा और रंगमंच की दुनिया से किस तरह का संपर्क बना देखने सुनने और समझने का?
1: नहीं, क्योंकि बीड नेकनूर में तो ये सारा कुछ नहीं था जो गया।

0: प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।
1: तो ये मतलब ऐसा होता था कि साल में 5-6 सिनेमा तो देख ही लेते थे।
2: कितना रोमांचक था ये।
1: बहुत रोमांचक। वो सिनेमा का टिकट निकालना अपने आप में एक जो कल्पना से परे शर्त होती थी, वो टिकट पाना।
2: वाह वाह।
1: वो झुंड जो पड़ता था उस छोटी सी खिड़की में।
2: हाँ, हाँ।
1: अरे बाप रे बाप, कोई किसी के ऊपर कंधे चढ़ रहा है, कोई जूते से सर पे खड़ा है, कोई उल्टा खड़ा होके, कोई बहुत स्किलफुल लोग होते थे वो टिकट निकलने वाले। तो ये सारा जो माहौल है वो देखा है। उसके बाद जो गैदरिंग में नाटक होते थे, खासकर कॉलेज में, मेरे स्कूल में कोई नाटक नहीं होता था
2: जी,
1: तो वो एक बहुत ज्यादा गंभीर पढ़ाई वाला था, पर वहां पर दूसरा माहौल था। वो एक जो माहौल में एक किस्म की जो मूवमेंट चली थी उस समय, विद्यार्थियों की समस्याओं के आंदोलन हुए, किसानों की समस्याओं के आंदोलन हो गए, वो मुझे लगा कि वो सारे आंदोलन का हिस्सा मुझे बनाया गया।
2: जी जी।
1: क्योंकि मेरी तरफ देखने के बाद चुलबुला था, थोड़ा भाषण वाषण करता था, जो नेकनूर में ही स्कूल में पढ़ता था तभी से वो शुरुआत हुआ था।
2: तब तो आपने एक्टिंग भी की थी।
1: तब भी एक बार एक एक्टिंग की थी मैंने, जहां एक ही बार नाटक हुआ था तो उसमें एक्टिंग भी की थी।
2: लड़की बने थे।
1: लड़की बना था मैं, और अब वो नाटक का नाम तो याद नहीं, एक छोटा एकांकी नाटक था, पर उसमें लड़की बना था और मेरे से मोटी लड़की का फ्रॉक मैंने लाया था और सेफ्टी पिन लगाया था, तो सेफ्टी पिन डायलॉग बोलते बोलते खिसक गया।
2: ओ,
1: तो पूरा नाटक जो है वो कहीं और चला गया
2: जी।
1: तो ऐसा भी एक वो अनुभव था। बीड़ में आने के बाद मुझे लगा कि वो जो माहौल मुझे दूसरा मिला, सोशल जागरूकता का माहौल मिला,
2: बड़ी आसानी से आप राजनीति में जा सकते थे।
1: हाँ, जा सकता था मैं, और वो भी एक ऑप्शन मेरे सामने था राजनीति में जाने का। पर वो कॉलेज में आते आते ऐसा लगा कि जो राजनीति हमारी मोड ले रही है उस समय की, जो अंगड़ाई ले रही है, वो मूल्याधिष्ठित राजनीति नहीं रहेगी। बहुत अनुभव किया उसका और ऐसा लगा कि ये कुछ सही नहीं है। वो मैंने इसलिए जानबूझ के छोड़ा कि अब यहां जाना सही इंसान का काम नहीं है, पर जाना जरूर चाहिए वहां की राजनीति में। ऐसा लगा कि सही इंसानों का होना बहुत जरूरी है, सेंसिटिव लोगों का होना जरूरी है। वहां नहीं है, ऐसा नहीं है, जो जाते हैं उसके बावजूद वो बदलना पड़ता है, वो दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति का। तो इसीलिए मैंने चुना कि कहां पर जाके हम अपना करियर बना सकते हैं। जो मैं ये आंदोलन से काम कर रहा हूं, गरीबों के लिए लड़ रहा हूं, झगड़ रहा हूं, ये मुझे निरंतर

0: आगे चलाना था। तो मुझे लगा कि नाटक का जो इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट हजारों भाषणों से ज्यादा होता है
1: जी।
0: सिनेमा का इम्पैक्ट है वो कई कई गुना ज्यादा होता है, नाटक से भी कई गुना ज्यादा होता है। पर नाटक जो बहुत अच्छा नाटक अगर आप करते हो तो उसका परिणाम इतना प्रभावी होता है कि देखने वाला अंतर्मुख हुए बिना घर नहीं जा सकता। तो इसीलिए मैंने चुना कि नहीं, जो करियर करना है। जब कॉलेज में आया 2-3 साल गैदरिंग में काम किया और सेकंड ईयर में आया तो मैंने फुल लेंथ प्ले में लीड रोल किया, मुझे दिया गया। तो मैं तो इतना छोटा सा था और 2.5 अखर प्रेम का वो नाटक हो रहा था गैदरिंग के लिए और उसमें मेन रोल था प्रोफेसर बल्लाड़ का। अब वो रोल निभाने के बाद ऐसा लगा कि यार ये कुछ जादू है इस सारी प्रोसेस में। तो तय किया कि नहीं, नाटक में जाऊंगा तो मैं एक तो सेंसिटिव रह पाऊंगा, मैं अपनी हिसाब से जिंदगी जी पाऊंगा, अपनी सोच के नाटक करूंगा, जिनकी मैं आवाज बनना चाहता हूं, चाहे वो वंचित है, चाहे वो गरीब है, जो समाज के सीढ़ी के आखिरी सीढ़ी पे भी जिनको जगह नहीं है, ऐसे लोगों की आवाज बनने की संभावना इसमें ज्यादा है। तो इसलिए मैंने ये जानबूझकर ये चुनाव जो किया मैंने माध्यम का, वो सोच समझ के किया। और इसीलिए फिर वहां जाना ही है नाटक में तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे
1: जी जी।
0: तो इसीलिए फिर औरंगाबाद शिफ्ट हो गया और वहां 1 साल ड्रामा डिपार्टमेंट में दाखिला लिया। वो इसीलिए कि मुझे अंतिम में जाना तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही था, तैयारी करके जाना है मुझे। कोई इंटरव्यू में जाऊंगा तो वापसी का टिकट के पैसे लेके नहीं जाऊंगा,
1: वाह,
0: ये मन में तय किया था। और वाकई जब पहली बार इंटरव्यू दिया तो उसी इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया और वो भी टॉप 4 में सेलेक्ट हो गया। वो टॉप 4 में इसलिए मुझे पता चला कि मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली
1: जी।
0: अगर वो नेशनल स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो सेलेक्ट होने के बाद भी मैं एनएसडी नहीं जा पाता, क्योंकि मेरी जो आर्थिक परिस्थिति तब भी थी वो इतनी ही क्या कहती थी कि बहुत गरीब किसान का बेटा था, तो इसीलिए वो संभव नहीं था वहां जाकर वो सारा खर्चा करना। पर वो स्कॉलरशिप मिली इसीलिए आज मैं आपके सामने बैठ के बातें कर रहा हूं।
1: क्या बात है, बहुत लंबी यात्रा हमने आपकी देखी यहां तक कि यहां एक गाने की जगह बनाते हैं। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब आप सिनेमा से परिचित हो रहे
0: जी,
1: थे
0: जी, जी,
1: आपने
0: जी,
1: बताया कि इतने तरह की फिल्में देखी।
0: मुगले आजम देखी,
1: वाह, मुगले आजम का गाना,
0: मुगले आजम का गाना सुनते हैं।
1: जब प्यार किया तो डरना
0: डरना क्या, क्या बात है।

0: मुगले आजम का ये गाना प्यार की बात करता है और कॉलेज के जमाने में लड़कों को किसी ना किसी तरह से प्रेम तो हो ही जाता है। आपके साथ क्या मामला था?
1: बहुत हुआ, उसमें क्या है, शर्माने की क्या बात है। पर मैं फोकस्ड बहुत था
0: जी,
1: क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी जिम्मेदारियां क्या है और मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि मैं तो लीडर था
0: जी,
1: तो हमेशा 10-20 लोगों के बीच में रहने की आदत थी। तो इसीलिए वो वाला जो सिलसिला था, बहुत सारी लड़कियों से बातें होती थी, पर एक पर्टिकुलर फोकस होके किसी के प्यार में पड़ो वो वाला माहौल लगा कि ये ठीक नहीं है। इसके लिए और बहुत सारी जिंदगी पड़ी है वो करने के लिए। तो मुझे जाना तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था। आकर्षण का केंद्र तो आप वैसे भी होते हो, अच्छा बोलते हो, मंचों से अच्छा बोलते हो, आपको मॉब मैनेज करने आता है, आपको ह्यूमन मैनेजमेंट पता है, तो आप लीड में हो तो अपने आप में लोगों के आकर्षण का केंद्र तो आप बन जाते हो। पर आपके आकर्षण का केंद्र कोई इंडिविजुअल बनने की वो क्या कहते हैं वो समय नहीं था, इसलिए मैं वो सारा पार करके फिर सीधा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंच गया।
0: क्या बात है। लेकिन इस दौरान आपने जो बुनियादी नाटकों की दिशा में जो काम किया, जो बीड़ में या औरंगाबाद में जाके किया, उसके बारे में बताइए।
1: नहीं, बीड़ में क्या था कि हम ये नाटक करते थे, कौन सा, गैदरिंग के नाटक
0: जी जी जी, गैदरिंग का मामला।
1: उसके बाद हमारे एक मित्र श्रीराम बड़े ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सेलेक्ट हो गए
0: जी।
1: तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, शायद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, तो वो सेलेक्ट हो गए वहां। तो उनका जो छुट्टियों में आना जाना होता था, तो हम उनसे सीखने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते थे। मैं लीडर था तो कॉलेज में समर वेकेशन में 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की कार्यशालाएं आयोजित करते थे। फिर उसका कोई एक नाटक होता था, वो फिर अभी जुलूस मुझे याद आ रहा है, नाटक हमने किया बादल सरकार का
0: जी,
1: वो जुलूस के शहर भर में शो किए।
0: वाह,
1: अब ऐसा लगता है कि वो कितने लोगों को समझ में आ गया, रास्ते के आदमी को तो ठेठ बात होनी चाहिए। तो पथनाट्य भी बहुत सारे किए। तो इस तरीके के वो छुट्टियों के माहौल में एक दो नाटक तो करते ही थे। तो गंभीर नाटक क्या होता है, उसकी तरफ जो खिंचाव या आपका आकर्षण का केंद्र बना, गैदरिंग के नाटक से एंटरटेनिंग नाटक क्या होते हैं उसका संस्कार अपने आप मिलता रहा
0: जी।
1: जो शिक्षक थे उस समय के, पढ़ाने वाले नाटक या डायरेक्ट करने वाले, उन सबसे जो भी उनका आकलन था, वो बगल वाले जो कॉलेज होते थे उनके नाटक देखने जाते थे, तो वो क्या हमसे बेहतर करते हैं, ये तुलनात्मक अध्ययन भी होता रहा। तो पथनाट्य से लेके मनोरंजन का नाटक मैं बीड़ में ही समझ गया।
0: वाह वाह।
1: फिर वहां से मैं औरंगाबाद जब गया तो मुझे किसी ग्रुप के साथ ज्वाइन होना था, जहां पर राज्य नाट्य स्पर्धा के लिए नाटक होता था। पर मेरा टेम्परामेंट वो राज्य नाट्य स्पर्धा वाला भी नहीं था, और उनका अपना अपना ग्रुप में लोग होते थे तो उनके साथ वो अपना काम करते थे। तो अचानक वहां एक दिन पता चल गया कि यहाँ दलित थिएटर मूवमेंट की शुरुआत हो रही है।
0: ओ ओ ओ।
1: तो उनके कुछ मित्रों से मेरी जान पहचान हुई थी, मूवमेंट में था मैं, स्टूडेंट एक्टिविटी में था, तो जान पहचान तो हुई थी। तो एक हमारे साहेबराव गायकवाड़, ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे वहां के अंबेडकर कॉलेज में या मिलिंद कॉलेज में, उनसे राबता था, आना जाना रहता था उनके घर में। तो एक दिन पता चला कि वो एक नाटक कर रहे हैं वहां, दलित साहित्य सम्मेलन पहली बार हो रहा है और जो मिलिंद कॉलेज के परिसर में हो रहा है, और उसमें दत्ता भगत लिखित आवर्त नाम का नाटक करना है और वो हीरो की तलाश में है। तो मुझे बुलाया गया और मुझे देखते ही अविनाश डोड़स प्रोफेसर थे वो भी, और मेरे ही गुरु त्र्यंबक महाजन
0: जी,
1: वो पढ़ाने आते थे, तो वो

0: मुझे जानते थे कि ये बच्चा रॉ है पर बहुत अच्छा है, तो उन्होंने मुझे बुलाया और वो रोल दे दिया और मैं वो रोल निभाया और उसके 10-15 शो हमने किए।
1: वाह,
0: तो दलित थिएटर मूवमेंट की शुरुआत जो हुई उस मूवमेंट में एक काइंड ऑफ फाउंडर मेंबर के हैसियत से या एक एक्टर के हैसियत से मुझे मौका मिला। उसके बाद दलित थिएटर ने ही दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट नाटक खेला, थांबा राम राज्य येतय,
1: ओहो
0: रुकिए राम राज आ रहा है।
1: हाँ,
0: ये प्रकाश त्रिभुवन ने लिखा हुआ नाटक है, मेरे मित्र थे तो उन्होंने लिखा हुआ नाटक है, उसमें फिर बड़ा नाटक था ये लगभग, तो उसमें फिर लीड रोल करने का मौका मिला। तो ये दो जो फाउंडेशन प्ले हैं दलित थिएटर मूवमेंट के, महाराष्ट्र के और खासकर औरंगाबाद के, तो उस मूवमेंट का मैं हिस्सा बन गया और उस थांबा राम राज्य थे बहुत पॉपुलर हो गया वो
1: जी
0: नाटक। वो दिल्ली के श्रीराम सेंटर तक जो फेस्टिवल होता था, नेशनल फेस्टिवल, वहां तक पहुंचा। वो पीटर ब्रुक ने देखा,
1: गजब गजब।
0: हाँ, और पीटर ब्रुक ने उस नाटक की इतनी तारीफ की, दूसरे दिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आकर उनका व्याख्यान रखा था। तो उसके पहले दिन वाले शो में मैं लीड रोल कर रहा था, वो भी स्पेशल परमिशन लेके एनएसडी में, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था।
1: अरे
0: हाँ, तो अचानक पीटर ब्रुक उस नाटक की तारीफ कर रहे, तो लोगों को लगा, अरे बापरे, हमारा ही क्लासमेट उसमें तो कल लीड रोल कर रहा था, उन्होंने भी नाटक देखा था। तो इस तरीके से उस नाटक की तारीफें हुई। फिर यहां मुंबई में भी छबीलदास थिएटर में भी उसके शो हुए, क्योंकि हमें लगा कि ये केवल मराठवाड़ा तक रहना नहीं चाहिए, अलग अलग जाके उसको परफॉर्म, तो ये परफॉर्मेंस करते रहे। पर जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद फिर मुझे उस नाटक को दुर्भाग्य से छोड़ना पड़ा
1: जी।
0: फिर और वो नाटक चलता रहा, किसी और ने रोल कर लिया, पर उस नाटक में उस संवेदना ने मुझे एक और एक मौका दिया कि जो वंचित है, जो दलित है, वो उस आदमी की आवाज बनना पड़ेगा थिएटर को या कहीं भी, या गरीब किसान है, गरीब मजदूर है। तो ये मोमेंट में जो जो मैं कर रहा था, सौभाग्य से मुझे उसी मंच पे एक कदम रखने का मौका मिला जहां और किसी की आवाज बनकर आप उस माध्यम के द्वारा लोगों के मन में और क्या मस्तिष्क पे या ये नाटक का अनुभव ले जा रहे हो और उनको अंतर्मुख करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये औरंगाबाद का दौर रहा। फिर जो छुटपुट छोटे मोटे नाटक एकांक किया, क्लास में किया, यहां किया, वहां किया, ये सारा अनुभव लेकर मैं दिल्ली पहुंच गया
1: जी। यहां एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: क्या बात है।

0: एनएसडी की एडमिशन की जो प्रोसेस थी, क्योंकि आप बहुत छोटे बैकग्राउंड से आ रहे
1: जी
0: थे और
1: जी जी
0: एनएसडी राष्ट्रीय मुकाबला होता है,
1: जी
0: तो वहां आपने अपनी एक बहुत जोरदार उपस्थिति उस परीक्षा में दर्ज की,
1: जी
0: वो कैसे हुआ?
1: एक तो हमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में मालूम हुआ था, एक
0: जी
1: तो हमारा ही सीनियर श्रीराम बड़े वहाँ सेलेक्ट हुआ था, उसके दूसरे साल शिवदास घोड़के
0: जी
1: वो सेलेक्ट हो गए, तो दोनों मेरे मित्र थे, और तीसरे साल मैं सेलेक्ट हो गया। तो मैंने एक साल
0: जी
1: नाट्य शास्त्र से लेके जितना भी नाटक के ऊपर लिखा गया वो सब पढ़ा, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के, तब की मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी और अब की डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है।
0: जी
1: मैं
0: जी
1: हर दिन शाम को क्लास होता था क्योंकि इवनिंग डिपार्टमेंट था, तो दिन भर क्या करें, तो दिन भर लाइब्रेरी में जाके बैठता था और हर दिन एक नाटक पढ़ता था। ये
0: अरे
1: कसम खाई
0: बाप
1: थी
0: रे,
1: मैं, जब तक यहां रहूंगा मैं हर दिन एक स्क्रिप्ट पढ़ूंगा।
0: तो सैकड़ों नाटक पढ़ लिए
1: तो
0: होंगे।
1: मैंने तो, मुझे लगता है उस पूरे 8-9 महीने के दरमियान 200-250 नाटक तो पढ़ लिए।
0: बाप
1: मान
0: रे,
1: लो किसी वजह से आज कोई मित्र आ गए, कहीं सिनेमा देखने गए, कोई नाटक देखने गए, कुछ हुआ और आज नाटक नहीं पढ़ पाया, तो दूसरे दिन दो पढ़ना।
0: वाह वाह वाह,
1: और उसके साथ साथ फिर जितना भी सैद्धांतिक पक्ष था नाटक का, चाहे वो मराठी की किताबें, मराठी में जो आए आर्टिकल्स, हिंदी में जो आए, अंग्रेजी में जितना समझ में आता था, वो सारे आर्टिकल स्टैनिस्लावस्की से लेके जितनी भी थियरीज है वो सब पढ़ ली।
0: जी
1: समझ में कितनी आई वो बाद में पता चला, पर पढ़ तो लिया। और दुनिया भर किस किस्म का थिएटर होता है, नाटक होता है, क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में बहुत सारे जो मैगजीन आते थे, इंटरनेशनल भी आते थे, हमारे यहाँ भी नाट्य दर्पण निकलता था, कोई भरत शास्त्र निकलता था मराठी के भी, ये सारा पढ़ने का मौका मिला
0: तो एक
1: उस
0: सॉलिड
1: यूनिवर्सिटी
0: बैकग्राउंड
1: का,
0: लेके
1: एक
0: गए।
1: सॉलिड बैकग्राउंड। और प्रैक्टिकली भी आप फोक से तो थे ही, फोक का था आपके ऊपर, और कॉलेज में 2-3 साल जो आइटम्स हमने किए, जैसे अंबेसा गोंधड़ एक आइटम किया था मैं और श्रीराम बड़े, वो इतना पॉपुलर हो गया कि साल भर का जो हमारा शिक्षण का खर्चा उस एक आइटम से निकलता था, लोग एक्चुअली
0: पैसे
1: स्टेज पे
0: फेंकते थे।
1: इतने पैसे फेंकते थे।
0: वाह,
1: एक बार तो जो बड़ा कॉइन फेंका किसी ने, बड़ा रुपये का कॉइन होता था उस समय, वो ढोलकी के, हाँ,
0: पेट में लगा।
1: पेट में लगा और वो ढोलकी फट गई,
0: अरे बाप
1: उसके
0: रे।
1: बाद भी वो रुका नहीं है। तो ऐसी सारी, कोई 10 रुपया दे रहा है, मुझे याद है कि वहां तब हमारी जो कॉलेज की और खासदार रही है, एमपी रही है, थी वो केशर बाई, केशर काकू, हम उनको
0: जी
1: काकू बोलते थे, तो उन्होंने 100 रुपये का जो नोट दिया हमको, इतना बड़ा लंबा नोट था, अब
0: हाँ
1: वो 100 रुपया तो बहुत हो गए हमारे लिए, एक आदमी के लिए, एक साल के लिए,
0: जी,
1: उससे ज्यादा खर्चा होता नहीं था। तो ये सारा का सारा, तो वो भी एक अनुभव था, और ये सारा अनुभव लेके आप, और फिर मैंने आषाढ़ का एक दिन का मैं सेट डिजाइन किया था, उसका मॉडल भी लेके गया,
0: मॉडल भी लिखे गए।
1: मॉडल भी साथ में लेके गया, फिर कॉस्ट्यूम प्लेट्स कुछ की थी वो भी लेके गया, ताकि आप दिखाएं कि मुझे बाबा बहुत सारा है
0: अनुभव
1: और
0: है।
1: सीखने की इच्छा है और आगे बढ़ाइए। तो वो सब देखने के बाद मुझे लगा कि कारण जी जो डायरेक्टर थे, बीवी कारण जी जो आगे भी मेरे गुरु रहे, तो वो थे, और मेरा इंटरव्यू बड़ौदा सेंटर में हुआ, तब मुंबई सेंटर हुआ करता था, पर वो उस समय पता नहीं किसी और कारण वो बड़ौदा में शिफ्ट हो गया, तो बड़ौदा में मेरा इंटरव्यू हो गया, और उसके एक 15-20 दिन के बाद चिट्ठी आ गई कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, आप फलाना तारीख को आके ज्वाइन हो जाइए, क्लासेस शुरू हो रहे हैं।
0: वाह क्या बात है। मैं इस पूरी यात्रा से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प बात पूछने वाला हूं, पर यहां एक गाना सुनना है।
1: यार रहमान का लगाइए
0: ठीक है, दिल से गाना सुनते हैं,
1: या
0: दिल से।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: उजाले उनकी यादों के।
2: अभी आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चरण से बोल रहे हैं, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 5 बजे हैं और समय है कार्यक्रम युववाणी का। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

ज़िंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा। हर हाल में आगे बढ़ना है, हर मुश्किल से टकराना होगा। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। जी हाँ दोस्तों, कुछ इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैं हाजिर हूँ आपके रेडियो दोस्त और होस्ट डिम्पल सिखवाल। स्वागत करती हूँ आप सभी का ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवा दिलों की धड़कन युववाणी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। दोस्तों, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने जाने के बाद भी हमारे बीच अपने विचारधारा, अपने शब्दों और अपने कर्मों के माध्यम से हमेशा जीवित रहते हैं। और एक ऐसा ही विराट व्यक्तित्व थे पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न और कवि हृदय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज 16 अगस्त को हम उनके पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहे हैं। उनका निधन दोस्तों आज ही के दिन 16 अगस्त 2018 को हुआ था। उन्हें याद करना केवल एक राजनेता को याद करना ही नहीं है, उन्हें याद करना है एक ऐसे वक्ता को जिसकी आवाज़ में ओज था, एक ऐसे कवि को जिसके शब्दों में संवेदना थी, एक ऐसे नेता को जिसके सोच में राष्ट्र सर्वोपरि था, और एक ऐसे व्यक्तित्व को जिसने लोकतंत्र में संवाद और विचारों की शक्ति को महत्व दिया। फ्रेंड्स, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। विद्यार्थी जीवन से ही उनका जुड़ाव सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र से जुड़े आंदोलनों से भी रहा। आगे चलकर वे पत्रकार बने, फिर राजनीति में सक्रिय हुए और भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख नेताओं में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। वे 1996 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने और बाद में 1998 से 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व उन्होंने किया। और वे एक अनुभवी सांसद भी रहे और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लंबे समय तक सक्रिय रहे। लेकिन अटल जी की पहचान केवल राजनीति तक सीमित नहीं थी दोस्तों, उनके व्यक्तित्व का एक बेहद खूबसूरत पक्ष था उनका कवि हृदय। उनकी कविताओं में जीवन के संघर्ष हैं, उम्मीद है, राष्ट्र के प्रति समर्पण है और सबसे बढ़कर मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने का संदेश है। उनकी प्रसिद्ध कविता हार नहीं मानूंगा की ये छोटी सी पंक्ति युवाओं के लिए आज भी बेहद

प्रेरणादायक है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, कितने छोटे शब्द लेकिन कितना बड़ा संदेश। युवाओं के लिए इसका अर्थ है कि मुश्किलें आए तो रुकना नहीं है और असफलता मिले तो टूटना नहीं है। रास्ता कठिन हो तो अपनी कोशिश बिल्कुल छोड़ना ही नहीं, क्योंकि जिंदगी में सफलता हमेशा पहली कोशिश में नहीं मिलती। कई बार हमें गिरकर संभलना पड़ता है और अपनी गलतियों से सीखना भी पड़ता है और फिर नए उत्साह के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। दोस्तों, अटल जी की एक और प्रसिद्ध कविता है, कदम मिलाकर चलना होगा। ये शीर्षक ही अपने आप में युवाओं के लिए एक संदेश है। आज के समय में जब समाज को सकारात्मक बदलाव की जरूरत है, तब हमें एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ के साथ साथ एक दूसरे का साथ देने की भावना भी रखनी होगी। अटल जी का जीवन हमें बताता है कि विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में संवाद की जगह हमेशा बनी रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, युवाओं के लिए अटल जी की सबसे बड़ी सीखों में से एक यही है कि अपने विचार रखिए, लेकिन दूसरे के विचार सुनने की क्षमता भी रखिए। जरा सोचिए, आज हमारे पास तकनीक है, इंटरनेट है, शिक्षा के अनेक साधन भी हैं और अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए कई सारे मंच भी हैं, लेकिन इन सब के बीच हमें ये तय करना है कि हम इन साधनों का इस्तेमाल किस दिशा में करेंगे। क्या हम सिर्फ मनोरंजन तक सीमित रहेंगे, या फिर अपने ज्ञान और अपनी प्रतिभा और अपनी सकारात्मक सोच का इस्तेमाल समाज और देश के लिए भी करेंगे। फ्रेंड्स, अटल जी का जीवन हमें इसी दिशा में सोचने की प्रेरणा देता है। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में लंबा सफर तय किया और देश की राजनीति में अपनी अलग ही पहचान बनाई। भारत सरकार के अनुसार वे एक प्रखर वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्हें 94 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का भी सम्मान मिला और भारत के प्रति उनकी दीर्घकालीन सेवा के लिए पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 2015 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया, जो आज उनकी पुण्यतिथि पर हमें उन्हें याद करते हुए केवल श्रद्धांजलि ही नहीं बल्कि उनके विचारों से कुछ सीखने का प्रयास भी करना चाहिए। एक युवा के रूप में हम उनसे क्या सीख सकते हैं? सीख सकते हैं कि सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सीख सकते हैं कि सफलता के रास्ते में आने वाली चुनौतियों से घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये सीख सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण केवल बड़े पर्दों पर बैठकर नहीं होता, और एक विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़कर, एक शिक्षक अच्छे संस्कार देकर, एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से और एक युवा अपनी प्रतिभा और मेहनत से भी देश के निर्माण में योगदान दे सकता है। फ्रेंड्स, अटल बिहारी वाजपेयी जी आज हमारे बीच भले ही शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनके शब्द, उनकी कविताएं, उनके विचार और उनका सार्वजनिक जीवन हमें आज भी प्रेरणा देता है। तो उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि से संकल्प लें कि हम मुश्किलों से हार नहीं मानेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहेंगे, अपने विचारों के साथ दूसरों के विचारों का भी सम्मान करेंगे और अपने ज्ञान, हुनर और मेहनत से देश के विकास में योगदान देने का प्रयास करेंगे। अब लीजिए, आपको ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये प्यारा गीत।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
5: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
4: हाँ।
5: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
4: हाँ।
5: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
4: हाँ? पता नहीं।
5: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
6: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है और बात करते हैं हमारी अगली चर्चा की। फ्रेंड्स, भारत सिर्फ विविधताओं का देश नहीं है, बल्कि ये विविध लोक कलाओं, लोक गीतों, लोक नृत्यों, हस्तशिल्प और परंपराओं की भी धरती है। हमारे देश के हर राज्य, हर क्षेत्र और लगभग हर समुदाय की अपनी कोई ना कोई खास लोक कला है। कहीं राजस्थान की घूमर और कालबेलिया की धड़कन है, तो कहीं गुजरात का गरबा, पंजाब का भंगड़ा और असम का बिहू, महाराष्ट्र के लावणी अपनी अलग पहचान रखते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम अपने इन लोक कलाओं को याद रखना ही छोड़ दें, उन्हें सीखना और आगे बढ़ाना बंद कर दें, तो आने वाली पीढ़ियां इनके बारे में सिर्फ किताबों में ही पढ़ेगी। इसलिए आज की हमारी चर्चा का विषय यही है, भारतीय लोक कलाओं को जीवित रखने में युवाओं का हाथ। फ्रेंड्स, लोक कला केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, ये हमारी संस्कृति, इतिहास, परंपराओं और सामाजिक जीवन की कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। हमारे लोकगीतों में खेत खलिहान की खुशियां हैं, लोक नृत्यों में उत्सवों की उमंग है और हस्तशिल्प में पीढ़ियों से चले आ रहे हुनर की पहचान है। लेकिन बदलते समय के साथ कई पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे लोगों की जिंदगी से दूर होती जा रही है। नई पीढ़ी का ध्यान आधुनिक मनोरंजन और डिजिटल माध्यमों की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन लोक कलाओं को नई पीढ़ी से कैसे जोड़ा जाए, और इसका सबसे मजबूत जवाब है युवा। बिल्कुल दोस्तों, आप ही इसका जवाब है। भारत की युवा शक्ति अगर चाहे तो हमारी लोक कलाओं को सिर्फ म्यूजियम तक सीमित रहने से बचा सकती है और उन्हें आधुनिक मंच भी दे सकती है। आज सोशल मीडिया युवाओं की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने के माध्यम भी बन सकते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई युवा अपने गांव की पारंपरिक लोक कला का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करता है, और अगर उस वीडियो को हजारों लोग देखते हैं तो उस कला की पहचान केवल गांव या जिले तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो देश और दुनिया तक भी पहुंच सकती है। युवा कलाकार पारंपरिक लोकगीतों को नए संगीत के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, लोक नृत्यों को आधुनिक मंचों पर लेकर जा सकते हैं और पारंपरिक हस्तशिल्प के बारे में डिजिटल माध्यम से लोगों को जानकारी भी दे सकते हैं। इससे कला भी जीवित रहेगी और कला

क्षेत्र के लोक कलाकार का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर सकता है, कोई युवा स्थानीय लोक गीतों का डिजिटल संग्रह तैयार कर सकता है और कोई पारंपरिक कला सीखकर उसे नए मंचों पर प्रस्तुत कर सकता है। और कोई युवा स्थानीय हस्तशिल्प को ऑनलाइन मार्केट से जोड़कर कलाकारों के लिए रोजगार का रास्ता भी खोल सकता है। यानी संस्कृति को बचाने के लिए हमेशा बहुत बड़ा काम करना जरूरी नहीं है दोस्तों, कभी कभी एक छोटा सा प्रयास भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। हमें यह समझना होगा कि संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार, कलाकार या फिर सांस्कृतिक संस्थाओं की नहीं है, इसमें समाज और विशेषकर युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। युवा अगर अपने बुजुर्गों से पारंपरिक गीत सीखें, स्थानीय कलाकारों से कला सीखें और अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं को समझें तो ज्ञान की वो कड़ी टूटने से बच सकती है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। स्कूल और कॉलेजेस में लोक कला से जुड़े कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और कार्यशालाएं आयोजित की जा सकती है। युवा क्लब और स्वयंसेवी संगठन स्थानीय कलाकारों को मंच भी दे सकते हैं। युवा कलाकार अपनी कला को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नई पहचान दे सकते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमें अपनी लोक कला को पिछड़ेपन की निशानी नहीं बल्कि अपनी पहचान और गौरव के रूप में देखना होगा, क्योंकि आधुनिक होना और अपनी संस्कृति से जुड़े रहना दोनों एक साथ अब संभव है। तो दोस्तों, आज जब दुनिया तेजी से चल रही है तब हमारी जिम्मेदारी है कि विकास की इस दौड़ में हम अपनी जड़ों को पीछे नहीं छोड़ें। और हमेशा याद रखिए कि जिस समाज को अपनी संस्कृति पर गर्व होता है उसकी पहचान कभी भी मिटती नहीं है। अब आपको फिर से ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये बेहतरीन गीत।

0: नमस्कार, क्या आप अपने बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सनातन संस्कृति और उत्कृष्ट शिक्षा देना चाहते हैं? तो आइए सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में, राजस्थान में संस्कृत शिक्षा को समर्पित एक प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्र। यहाँ कक्षा 6 से लेकर आचार्य स्तरीय और शिक्षा शास्त्री यानी BEd की भी श्रेष्ठ व्यवस्था है। प्रवेश प्रारंभ है, आज ही संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: तो दोस्तों, अब सावन का महीना आ चुका है, बारिश जैसा कुछ मौसम होता है, तो ऐसे मौसम में आपका भी घूमने का मन करता होगा कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पर ट्रैवल करने जाएं, कहीं पर घूमें फिरें, है ना। लेकिन दोस्तों, घूमने का नाम सुनते ही हमारे मन में पहले क्या आता है? नई जगह, नई तस्वीरें, नए अनुभव, ढेर सारी यादें, है ना। लेकिन जैसे ही खर्चे का हिसाब लगाते हैं तो कई बार घूमने का प्लान वहीं रुक जाता है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ उपयोगी टिप्स, जिसमें हम बात करेंगे कि कम बजट में आप अपनी यात्रा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आप भी कम खर्चे में ज़्यादा घूमना चाहते हैं तो सुनिए ये टिप्स। दोस्तों, सबसे पहले तो यात्रा की पहले से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आप अचानक यात्रा का फैसला करते हैं तो टिकट, होटल और स्थानीय परिवहन पर ज़्यादा खर्च हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आपकी जो यात्रा की तारीख है, आने जाने का साधन, ठहरने की जगह पहले से आपको तय कर लेना चाहिए। अगर संभव हो तो ऑफ सीजन में ही यात्रा करें, उस समय कई जगहों पर होटल और दूसरी सेवाएँ अपेक्षाकृत कम कीमत में मिल सकती है। और हाँ, यात्रा से पहले अपना एक छोटा सा बजट ज़रूर बनाइए, जैसे ट्रैवल का, रहने का, खाने का, घूमने के लिए कितना खर्च करना है। दूसरी बात यह है कि आपको परिवहन का समझदारी से चुनाव करना चाहिए। अगर दूरी ज़्यादा है तो हर बार फ्लाइट ही सबसे अच्छा विकल्प हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। जहाँ पर संभव हो आप ट्रेन या बस जैसे विकल्पों की कीमत और सुविधा की तुलना करें। कई बार थोड़ा समय ज़्यादा लगाकर भी यात्रा का खर्च काफ़ी कम किया जा सकता है। और साथ ही एक जगह पहुंचने के बाद हर छोटी दूरी के लिए टैक्सी लेने के बजाय आप सार्वजनिक परिवहन या फिर पैदल घूमने जैसे विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं, बशर्ते कि वो सुरक्षित और सुविधाजनक हो। दोस्तों, यात्रा के बजट का बड़ा हिस्सा अक्सर होटल में चला जाता है, इसलिए केवल होटल की सुंदरता देखकर आप बुकिंग नहीं करें। देखें कि वो जगह आपके प्रमुख पर्यटन स्थलों से कितनी दूर है, वहाँ आने जाने की सुविधा कैसी है और कुल खर्च कितना पड़ेगा। कई बार थोड़ा सस्ता होटल शहर से बहुत दूर होता है और रोज आने जाने में इतना खर्च हो जाता है कि बचत खत्म हो जाती है। इसलिए सिर्फ कम कमरे का किराया नहीं, बल्कि फुल जो है आपकी यात्रा खर्च देखिए, आप टोटल उसका लगाइए। और दोस्तों, यात्रा का मजा स्थानीय खाना चखे बिना बिल्कुल

0: अधूरा है। लेकिन हर भोजन महंगे रेस्टोरेंट में करना भी जरूरी नहीं है। आप स्थानीय और साफ सुथरे भोजनालयों का भी चुन सकते हैं। जहाँ पर संभव हो होटल में मिलने वाली सुविधाओं के अनुसार आप नाश्ता वहीं पे कर लें, और बजट के लिए भी वो आपके उपयोगी हो सकता है। फ्रेंड्स, कम बजट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खाने या पानी की गुणवत्ता से आप समझौता करें। साफ सफाई और स्वास्थ्य को हमेशा आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। दोस्तों, यात्रा में ज़रूरत से ज़्यादा सामान ले जाना भी परेशानी और अतिरिक्त खर्च का कारण बन सकता है। इसलिए एक छोटी सी पैकिंग लिस्ट आपको पहले से बना लेनी चाहिए और उसी के अनुसार आपको सामान रखना चाहिए। ज़रूरी कपड़े, आपके व्यक्तिगत उपयोग की जो चीज़ें हैं, दवाइयाँ अगर आवश्यक हो, आपका पहचान पत्र जो है, चार्जिंग जैसी ज़रूरी चीज़ें आपको पहले से चेक कर लेनी चाहिए। और जितना व्यवस्थित सामान होगा उतनी ही यात्रा आपकी आसान रहेगी। तो सन टिप्स के बारे में हम और भी चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल रुक जाते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे थे कि कम बजट में आप यात्रा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, कम बजट में यात्रा का मतलब कम मज़ा नहीं है बल्कि बेहतर प्लानिंग है। यात्रा के पहले से आप योजना बनाइए, परिवहन और रहने के विकल्पों की तुलना कीजिए और खाने में समझदारी बरतिए। रोज़ के खर्चे पर नज़र रखिए और सबसे ज़रूरी, सुरक्षा से कभी भी समझौता मत कीजिए, क्योंकि यात्रा का असली आनंद महंगे होटल या महंगी गाड़ी में नहीं बल्कि नई जगहों को देखने और नई चीज़ें सीखने और खूबसूरत यादें बनाने में है। अब आपको ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये खूबसूरत नगमा।

तो दोस्तों अब घड़ी की टिक टिक करती हुई सुइयां इशारा कर रही है कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। हम फिर मिलेंगे कुछ नई ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए और हमारे कार्यक्रम युववाणी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ युवाओं की नहीं बल्कि युवा सोच और युवा बदलाव की है। अब अपने दोस्त डिंपल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

युववाणी ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 5:30 में हैं, समय है नन्हे मुन्ने कार्यक्रम, नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बालवाड़ी का। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम बालवाड़ी।

हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम बालवाड़ी में। आज एक बार फिर से आपके साथ है आज की होस्ट और मैं आपकी रेडियो दीदी संगीता सिकवाल। तो कैसे हैं मेरे सारे नन्हे मुन्ने दोस्त? सभी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए बच्चों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इन कुछ अमर पंक्तियों के साथ। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए। मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को अगर कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जी हाँ बच्चों, ये अमर पंक्तियां हैं एक महान कवि, एक महान राजनेता, ओजस्वी वक्ता और हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की। आज इनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें आकाशवाणी की ओर से सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बच्चों, आज के हमारे कार्यक्रम बालवाड़ी की शुरुआती चर्चा है मेरे लिए आज़ादी के क्या मायने हैं। जी हाँ, ये एक प्रश्न है जिसमें आपके मायने अलग हैं और हर व्यक्ति के अलग है, बड़ों के अलग, बुजुर्गों के अलग, वर्किंग के अलग, नॉन वर्किंग के अलग और बच्चों के अलग। अगर मेरा फोकस रहेगा इस पे चर्चा में तो वो बच्चों के बारे में रहेगा। फिर भी हम बात करते हैं दोस्तों, वैसे तो आज़ादी के मायने हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। अगर आप मुझे पूछें तो मेरे लिए आज़ादी का अर्थ है बिना किसी भय के अपने विचार रखना, अपनी पसंद का जीवन जीना और समाज में समानता और सम्मान के साथ आगे बढ़ना। बच्चों, आज़ादी केवल देश की सरहदों की स्वतंत्रता नहीं बल्कि विचारों और चयन की खुली छूट होनी चाहिए। आप खुद को खुश रखने वाला हर काम करें, बशर्त है कि इससे किसी को कोई परेशानी ना हो। स्वतंत्रता का अर्थ है आप सही और गलत पर अपने विचार बिना संकोच के रख सकें, दूसरों की राय का सम्मान करते हुए अपनी आवाज उठा सकें। जब हर व्यक्ति अपनी पसंद और योग्यता अनुसार काम और करियर चुन सकेगा, बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने का मौका मिल सकेगा,

इच्छा से जीवन के फैसले लेना, यही तो है सच मायने में आजादी। सार रूप में कहूं तो आजादी का सही मायना देश के हर नागरिक को डर, भुखमरी, बेरोजगारी, भेदभाव और मानसिक बेड़ियों से मुक्ति मिलना ही है। बच्चों के लिए आजादी का मतलब है बड़ों से थोड़ा अलग और उनके रूटीन लाइफ से जुड़ा होता है। इसके लिए स्वतंत्रता का अर्थ केवल शारीरिक स्वतंत्रता से नहीं, बल्कि अपने कौशल, हुनर और क्षमताओं को तलाशने के अवसर से है। आइए थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं कि बच्चों के लिए आजादी के मुख्य मायने क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। अगर वो जीवन में, इस समाज में सम्मान के साथ जीना चाहता है, उसे हक है जीने का, तो उसे शिक्षा अर्जित करने से कोई नहीं रोक सकता। आप किसी भी विद्यालय में जाकर अपनी आयु अनुसार एडमिशन ले सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई दुविधा है तो आपको वहां पे भी सहायता मिलेगी। तो सबसे पहला अधिकार हर बच्चे का शिक्षा का अधिकार, साथ ही अपनी बात कहने का अधिकार। जी हाँ बच्चों, अपनी भावनाओं और विचारों को माता पिता, शिक्षकों और मित्रों के सामने आप खुलकर रख सकें, ये भी तो आज़ादी ही है। मन में उठने वाली जिज्ञासाओं और प्रश्नों का बिना झिझक के आप जवाब पा सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी आज़ादी का मायना है। इसके अलावा खेल कूद और खुद को तलाशने की संभावना। जी हाँ बच्चों, पढ़ाई व करियर के दबाव से दूर अपनी पसंद के खेल खेलने के लिए आपको समान पर्याप्त समय मिलना चाहिए। अपनी रुचि के अनुसार आपको गतिविधियों में भाग लेना, यही तो है आज़ादी के मायने। गलतियां करने और उनसे सीखने की आज़ादी मिले। जी हाँ, हर व्यक्ति, हर इंसान, हर आयु, हर जगह गलतियां करता है, लेकिन फिर भी हमें गलतियों में रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है और उन गलतियों से सीख लेकर कुछ अच्छा करके दिखाना है। इसके अलावा पसंद और निर्णय, जो भी आप करियर अपना चुनते हैं उसको चुनने का आपको अवसर पर्याप्त मिलना चाहिए। सुरक्षित और भय मुक्त माहौल, चाहे घर हो, स्कूल हो या समाज, उसमें आपके लिए बेहद जरूरी है। लिंग के आधार पर भेदभाव नगण्य होना भी आजादी ही है। हालांकि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कहीं पर भी कि लड़के और लड़कियों में फर्क किया जाए, लेकिन फिर भी लिंग के आधार पर अगर कहीं ऐसा होता है तो वो बहुत ही गलत बात है। हर बच्चा, चाहे वो एक बच्चा लड़का हो चाहे एक लड़की हो, उन्हें समानता का अधिकार है और वो हर तरीके से आज़ाद है। तो बच्चों के लिए ये है आज़ादी के मायने। तो देखा बच्चों, आज की शुरुआती चर्चा में आपने, आपकी दीदी ने आपसे ढेरों बातें की, आपको बताया कि दीदी के लिए आज़ादी के क्या मायने हैं एक सामान्य नागरिक होने के नाते, साथ ही प्यारे बच्चों के लिए आज़ादी के क्या मायने हैं। तो ये थी हमारे कार्यक्रम की शुरुआती चर्चा। अब हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही प्यारा सा गीत, जिसे हमने चुना है सन ऑफ इंडिया फिल्म से, जिसे गाया है शांति माथुर और साथियों ने।

जन्म आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बालवाड़ी और आपके साथ ही आपकी रेडियो दीदी संगीता सिखवाल। बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन आपके मन पसंद कार्यक्रम में। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं ज्ञानवर्धन सेगमेंट के तहत, जिसमें हमने आज का विषय चुना है भारतीय तिरंगे का इतिहास। जी हाँ, कल हमने हमारा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त के दिन हमने हमारा स्वतंत्रता दिवस 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, जो हम सभी के लिए, पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। हमारे जो जोश और उत्साह है वो हमेशा यूं ही बना रहे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और चर्चा करते हैं हमारी आन बान शान, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में। बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारे देश की शान, स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक है। इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था, जिसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से फहराया गया था। अगर बात करें हमारे तिरंगे के विकास क्रम के बारे में, तो आइए शुरुआत से थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं। अगर बात करूं कि इसके विकास क्रम में, तो ये शुरू होता है सन 1906 से और 1947 में तो हमने आधिकारिक रूप से तिरंगा फहराया ही था। तो चलिए चर्चा करते हैं थोड़ा सा शुरुआत से। वर्ष 1906, अगर मैं इसे कहूं पहला झंडा, हमारा पहला राष्ट्रीय ध्वज, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ बच्चों, 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर

शहर में पहला ध्वज फहराया गया था। ये हरा, पीला और लाल क्षैतिज पट्टियों वाला था, जिस पर वंदे मातरम और कमल के फूल बने थे। वर्ष 1907, जी हाँ, अगली कड़ी आती है, इसे बर्लिन ध्वज के नाम से जाना जाता है। कैसे, आइए जाने। मैडम कामा और उनके साथियों द्वारा जर्मनी में फहराया गया, जिसमें सप्तऋषि तारा समूह को दर्शाया गया था। अगली कड़ी में आता है विकास के क्रम में होम रूल आंदोलन, जो वर्ष 1917 में हुआ था। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा संचालित होम रूल आंदोलन के दौरान नया झंडा आया, जिसमें 5 लाल और 4 हरी पट्टियों के साथ सप्तऋषि तारा और यूनियन जैक था। उसके बाद आता है वर्ष 1921 में गांधी जी का चरखा ध्वज। जी हाँ बच्चों, विजयवाड़ा में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान पिंगली वेंकैया ने गांधी जी को सफेद, हरे और लाल रंग का झंडा दिया, जिसमें बाद में गांधी जी ने देश के स्वावलंबन के प्रतीक के रूप में चरखा जोड़ा था। फिर आता है सन 1931, जी हाँ, ऐतिहासिक तिरंगा। कराची कांग्रेस अधिवेशन में सर्वसम्मति से एक नया झंडा स्वीकार किया गया। इसमें ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग था, और बीच में सफेद पट्टी पर चरखा अंकित था। अब बात करते हैं वर्तमान तिरंगे का स्वरूप और उसका तात्पर्य। जी हाँ बच्चों, 22 जुलाई 1947 का वो अमर दिन, जी हाँ, संविधान सभा की बैठक में चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ वाले नीले अशोक चक्र, जिसमें 24 तेलिया सहित, को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्थान दिया गया। रंगों का महत्व क्या है, चलिए इस पे भी थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं। बच्चों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर लहराता है केसरिया रंग, जो साहस, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। फिर आता है सफेद, बीच में शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक। और उसके बाद अंतिम तीसरा जो रंग लहराता है हमारे तिरंगे में, वो है हरा, जो है समृद्धि, विश्वास और उर्वरता का प्रतीक। अशोक चक्र जो है प्रगति, न्याय और निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देता है। बच्चों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में, चलिए शॉर्ट में बात कर लेते हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। बच्चों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है, अगर इंग्लिश में बात करूँ तो ट्राइकलर, क्योंकि इसमें 3 रंग हैं, तो जाहिर सी बात है 3 रंग वाला हमारा तिरंगा। इसके सबसे ऊपर की जो पट्टी है वो है केसरिया रंग, अगर इंग्लिश में इस रंग को बताऊं तो सैफ्रोन कलर, जो साहस और बलिदान का प्रतीक है। बीच की पट्टी पर सफेद रंग है, जो शांति और सच्चाई का प्रतीक है। सबसे नीचे की पट्टी पर हरा रंग है, जो हमारे देश की समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। सफेद पट्टी के बिल्कुल बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जिसे हम अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। इस चक्र में 24 तीलियां, जिन्हें स्पोक भी कहा जाता है, होती है, जो निरंतर आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देती है। बच्चों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। यह ध्वज देश की स्वतंत्रता और अखंडता का सूचक है। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आज के ज्ञानवर्धन सेगमेंट में हमारी चर्चा हमारे प्यारे बच्चों के साथ हमारे भारतीय तिरंगे के इतिहास के बारे में। अब एक बार फिर से लिए चलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत ही सुंदर सुरीली संगीत की दुनिया में, और सुनवाते हैं फिल्म फना से देश रंगीला गीत, जिसे गाया है महालक्ष्मी अय्यर ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बालवाणी। बच्चों, आज आपकी दीदी लेकर आई है आपके लिए एक बहुत ही प्यारी बाल कहानी हमेशा की तरह, जिसका टाइटल है नन्हा देशभक्त। प्यारे दोस्तों, माधव नाम का एक 7 साल का लड़का था, बहुत ही समझदार और देश को प्रेम करने वाला बच्चा। वो हमेशा टीवी पर सैनिकों की कहानियां देखा करता था और सोचता था कि वो भी बड़ा होकर देश की सेवा करेगा। एक दिन की बात है, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का अवसर था, माधव के स्कूल में भी बड़ा उत्सव मनाया गया। माधव आज बहुत खुश था, हाथ में एक छोटा सा तिरंगा झंडा लेकर स्कूल गर्व से जा रहा था। स्कूल में सबने राष्ट्रगान गाया, तिरंगे को सलामी दी, पीटी परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। उत्सव समाप्त होने के बाद जब सब बालक घर लौट रहे थे, माधव ने देखा कि कुछ बच्चों ने हाथ से छूटे हुए छोटे कागज के तिरंगे झंडे जमीन पर गिरा दिए। लोग उन पर पैर रखकर आगे बढ़ रहे थे। ये दृश्य देखकर माधव को बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी माँ से सीखा था कि तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है, इसका कभी भी अपमान नहीं होना चाहिए। माधव तुरंत आगे बढ़ा। उसने सड़क पर और नाली के पास गिरे सभी छोटे झंडे को एक एक करके उठाना शुरू कर दिया। तब उसके दोस्तों ने कहा, माधव तुम ये कचरा क्यों उठा रहे हो, चलो ना घर चलते हैं। माधव मुस्कुराते हुए बोला। उसने कहा, ये कचरा नहीं है, हमारे देश का सम्मान है। हमारा तिरंगा जमीन पे गिरे ये कभी हम सहन नहीं कर सकते। ये सुनकर उसके दोस्तों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और सभी ने मिलकर सारे झंडे उठाने शुरू कर दिए। अगले दिन विद्यालय में ये सारी खबर चर्चा का विषय बना और माधव को मंच पर बुलाकर नन्हा देशभक्त मेडल दिया गया। उसने ये साबित कर दिया कि देशभक्ति का तात्पर्य तिरंगे का हर हाल में सम्मान करना भी होता है। बॉर्डर पे जाना ही जरूरी नहीं, अपने देश के प्रतीकों का सम्मान करना भी सच्ची देशभक्ति है। तो बच्चों, देखा कितनी सुंदर कहानी थी माधव के बारे में। चलिए आज के अगले सेगमेंट प्रमुख व्यक्तित्व पे चर्चा करते हैं, जो हमने लिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। प्यारे साथियों, आपको वो अमर नारा तो याद ही होगा ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी हाँ, ये शब्द जाने पहचाने लग रहे हैं ना, कितने अरसे से हमारे जहन में यूं ही जिंदा रहेंगे ये शब्द, क्योंकि ये जो नारा दिया है वो दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों, ये बोस मात्र एक नेता नहीं थे, बल्कि अदम्य साहस, देशभक्ति और त्याग की मिसाल थे। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को नेताजी की जयंती संपूर्ण भारतवर्ष में मनाई जाती है। इस दिन को भारत सरकार द्वारा साल 2021 से पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि देश के प्रति उनके महान योगदान के कारण ही उन्हें प्यार से नेताजी कहा जाता है। उन्होंने देशवासियों में स्वतंत्र

ताकि अलख जगाने के लिए जय हिंद का नारा भी दिया था। बच्चों, नेताजी का सपना था कि भारत मजबूत और खुशहाल बने। वे ये भी चाहते थे कि भारत का हर बच्चा पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करे। वो कहा करते थे कि हर बच्चा एक नन्हा सिपाही होता है जो अपने अच्छे काम से देश की सेवा कर सकता है। तो यदि हम खुद के प्रति, हमारी मातृभूमि के प्रति और हमारे जन्मदाता और गुरुओं के प्रति सम्मान रखते हैं तो यही नेताजी का सपना पूरा होता है। साथियों, ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया था, परंतु हम यही कहना चाहेंगे कि नेताजी आज भी हर भारतीय के दिल में, हमारे मन में एक प्रेरणा स्रोत और अमर नायक के रूप में जीवित हैं और हमेशा जीवित रहेंगे। तो ये थी हमारे कार्यक्रम की आज अंतिम चर्चा। अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते एक बार फिर से बेहद खूबसूरत एक गीत, जिसे गाया है उदित नारायण, शंकर महादेवन और महालक्ष्मी अय्यर ने।

ये कार्यक्रम अभी आप सुन रही थी। हम आकाश में नागौर के चिन्हू चंद से बोल रहे हैं। श्रोताओं शाम के 6 बजे

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने आज राजस्थान के अलवर में कहा कि केंद्र सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
0: इस अवसर पर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित की। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। कालीधर रेंज से होकर बनाई गई ये सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम होगा। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए डॉ. पेम्मा सानी और जिलाधिकारी साई कांत वर्मा की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता

0: वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास कल सुबह आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में 14 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है। ये स्थिति 28 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार भूकंप में 51 लोगों की मौत हो गई और 113 लोग घायल हैं। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट पर 460 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण आज पहले और दूसरे सत्र का खेल नहीं हो सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी नागौर का चिन्ह चैनल है। शाम के 6:05 में आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं फिल्म दिल जिले का एक गीत, आवाज कुमार सानू और उदित नारायण की, संगीत अनु मलिक का और जावेद अख्तर की, शब्द रचना

लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SDD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।

फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश, फिल्म का नाम चांदनी, आवाज सुरेश वाडेकर और अनुराधा देश पांडे की, शिव हरि का संगीत है और आनंद बख्शी की शब्द रचना।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अभी यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, शाम के 6:20 में हैं। सुनते हैं कार्यक्रम माटी के ईश्वर।

कवि की कल्पना है। देखो वीर एक ऐसी चीज हुआ करे, मीरा वीरे में दीवानी ओढ़ी, उन भगवान ने याद करे और कहीं करे।

0: नमस्कार, क्या आप अपने बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सनातन संस्कृति और उत्कृष्ट शिक्षा देना चाहते हैं? तो आइए सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में, राजस्थान में संस्कृत शिक्षा को समर्पित एक प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्र। यहाँ कक्षा 6 से लेकर आचार्य स्तरीय और शिक्षा शास्त्री यानी BEd की भी श्रेष्ठ व्यवस्था है। प्रवेश प्रारंभ है, आज ही संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: मगन भयो सद युग माई ओ खम फाड़ी हिरी ना कुछ मारियो प्रत भयो खंबा।
1: माटी के सरिये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिचरण से बोल रहे हैं, एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:28 में हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।
2: किसानों को मिले हैं।
3: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरक अछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी।
4: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
5: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
4: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
6: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
7: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स, और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं,
1: ओ
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा
0: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
6: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया गया। राज्य के नगर निकायों के चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण लॉटरी कल निकाली जाएगी। और प्रदेश में बारिश के दौर में कमी, 19 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में बरसात की गतिविधियां फिर से बढ़ने के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। श्री शाह ने चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में 5,659 करोड़ रुपए के 944 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें 15 जिलों के विकास कार्य शामिल है। इस अवसर पर उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत 1,500 गांवों के लिए हर घर नल से जल योजना की शुरुआत की। श्री शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अष्ट धातु से बनी 21 फीट ऊंची प्रतिमा और मिनी अटल स्मारक का अनावरण भी किया। श्री शाह ने कहा कि अटल जी ने हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत नेशनल हाईवे बनाए। देश के आदिवासियों के लिए पहली बार जनजातीय कल्याण मंत्रालय बनाया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। राजस्थान पहले पानी की कमी के लिए जाना जाता था, लेकिन भजनलाल सरकार ने 3 बड़े जल समझौते कर प्रदेशवासियों की प्यास बुझाने का काम किया है।
9: राजस्थान को पानी की कमी के लिए जाना जाता था, भजनलाल जी ने 3 बड़े समझौते कर आधे राजस्थान की प्यास बुझाने का काम हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने किया है। लगभग एक ही योजना से 3 करोड़ लोगों के प्यास बुझाने का काम होगा, और बाकी 2 योजना से भी कुछ कॉमन भी है, मगर 2.5 करोड़ और लोगों का प्यास बुझाने का काम होगा।
8: कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी संबोधित किया। चित्तौड़गढ़ के बाद केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री अलवर पहुंचे। वहां से श्री शाह ने प्रदेश की 17 जिलों के लिए 6,453 करोड़ रुपए के 954 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें अलवर जिले में 200 करोड़ रुपए की लागत वाले सरस डेयरी के नए प्लांट का शिलान्यास और अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण शामिल है। अलवर के विजयनगर ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को

0: सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में अलवर में सरस डेयरी प्लांट पशुपालकों में विश्वास को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम है।
1: आज अलवर में सरस डेयरी के नए प्लांट का शिलान्यास पशुपालक भाइयों में विश्वास को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। यह आधुनिक प्लांट के निर्माण से दूध के प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ेगी, दुग्ध उत्पादनों को बेहतर बाजार मिलेंगे। आज विभिन्न संघों के डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट का, कैटल फील्ड प्लांट का लोकार्पण भी आपने किया है। 4 केंद्रीय सहकारी बैंकों की आपने घोषणा की है। इन बैंकों के गठन से इन जिलों में भाई बहनों को शून्य ब्याज पर फसली ऋण बीमा भी मिलेगा।
0: श्री शाह ने मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत प्रदेश की 10,548 नव नियुक्त कर्मचारियों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र प्रदान किए। वहीं प्रदेश के 66,74,000 लाभार्थी किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की छठी किस्त का DBT के माध्यम से हस्तांतरण किया गया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित श्री वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश में श्री वाजपेयी को असाधारण, दूरदर्शी और उत्कृष्ट राजनेता बताते हुए कहा कि अटल जी ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। इधर प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रमों के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी को याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में अटल गौरव स्मृति समारोह में कहा कि लोकतांत्रिक गरिमा के प्रतीक और राष्ट्र निर्माण के शिल्पकार अटल जी का जीवन आज भी राष्ट्र नीति की आधारशिला है।
1: वाजपेयी जी देश के सबसे महान नेताओं में से एक थे। उनके कुशल नेतृत्व में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण 1999 में हुआ, 98 में हुआ और 1999 कारगिल का युद्ध जीता। अटल जी के देश को एक सूत्र में परोने के लिए इस संकल्प को गति देते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया।
0: भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत आज जोधपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने जोधपुर के जिला न्यायालय परिसर में 60 कोर्ट क्षमता वाले नए 7 मंजिला भवन का उद्घाटन किया और नए हाईकोर्ट गेस्ट हाउस की आधारशिला रखी। जस्टिस सूर्यकांत ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कानून बंद किला नहीं बल्कि जीवंत और खुला मंच होना चाहिए जहां हर नागरिक की पहुंच और सुनवाई हो सके। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD के 176 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गई। वहीं मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश ने लीगल टेक्नोलॉजी एंड इट्स रोड मैप विषय पर आयोजित वाइस चांसलर्स कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन किया। इस कॉन्क्लेव में AI और आधुनिक तकनीकों के समुचित प्रयोग और विधि पाठ्यक्रमों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने पर जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य में नगरीय निकायों के चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण लॉटरी कल निकाली जाएगी। जिलों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के वार्डों का आरक्षण कलेक्टर के स्तर पर किया जाएगा। जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों सहित जिले की नगर परिषद और पालिकाओं के वार्डों की लॉटरी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं परसों ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। सरपंच और वार्ड पंचों की प्रक्रिया उपखंड स्तर पर और जिला परिषद तथा पंचायत समिति सदस्यों की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट सभागार में होगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज डीडवाना में हॉस्पिटल चौराहे पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल का जीवन संघर्षों से भरा हुआ रहा, लेकिन उन्होंने विपरीत

0: परिस्थितियों में रहकर भी अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। राज्यपाल ने युवाओं से पंडित दीनदयाल के विचारों को अपनाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया। प्रदेश में मॉनसून की बारिश के दौर में कमी आई है। हालांकि मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 13 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच पश्चिमी स्थानों पर बारिश का दौर धीमा पड़ने से गर्मी और उमस का असर बढ़ गया है। विभाग ने कल और परसों राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 19 अगस्त से एक बार फिर पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार हैं।
1: मानसून ट्रफ लाइन अपने सामान्य अवस्था से उत्तर की ओर से होकर गुजर रही है। आगामी 4-5 दिन पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, इसके अलावा कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 19 से 21 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मध्यम से दहेज तेज बारिश होने की भी संभावना है।
0: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और एआई हैकेथॉन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता देना है। साइबर कुश्ती के लिए अगले महीने की 10 तारीख तक पंजीकरण जारी रहेगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इसमें भागीदारी निःशुल्क है और 3 सदस्यीय टीमों में विद्यार्थी और शोधकर्ता भाग ले सकते हैं। विजेता टीम को साइबर केसरी 2026 की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा और उन्हें पारंपरिक गदा भेंट की जाएगी। उपविजेताओं को रुस्तम और पहलवान की उपाधि से नवाजा जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया गया। राज्य के नगर निकायों के चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण लॉटरी कल निकाली जाएगी। और प्रदेश में बारिश के दौर में कमी, 19 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में बरसात की गतिविधियां फिर से बढ़ने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से झुंझुनू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं संदीप केड़िया। चिट्ठी में सबसे पहले बात स्वतंत्रता दिवस समारोह की। झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। समारोह में राजस्थान पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, महिला पुलिस, स्काउट और गाइड के दलों ने मार्च पास्ट में भाग लिया। स्कूली विद्यार्थियों ने पीटी प्रदर्शन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और बैंड वादन से सभी का मन मोह लिया। समारोह में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों के परिवारों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान के साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजय आर्य ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का प्रदेशवासियों के नाम संदेश पढ़कर सुनाया। जिले के अन्य शहरों, कस्बों और गांवों में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर झुंझुनू के स्काउट्स मैदान में विभाजन विभीषिका संगोष्ठी और युवाओं से संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में नगरीय निकाय और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, इतिहास की सही जानकारी युवाओं को स्वतंत्रता के वास्तविक महत्व से परिचित कराती है और राष्ट्र प्रेम, समर्पण तथा त्याग की भावना को मजबूत करती है। अब बात करते हैं आस्था और परंपरा की। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लोहारगल धाम में हरियाली अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अरावली की सुरम्य वादियों में स्थित सूर्य कुंड में हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। श्रद्धालुओं ने कुंड में स्नान के बाद गोमुख की पवित्र जलधारा में पूजा अर्चना की। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का लगातार लोहारगल धाम

0: में आवागमन बना हुआ है। वहीं तीज का पर्व भी उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। पिछले दिनों स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया। सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने गर्भवती महिलाओं की जांच, एएनसी पंजीकरण और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की निगरानी में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। आरसीएचओ डॉक्टर दयानंद सिंह ने हर गर्भवती महिला का 12 सप्ताह से पहले एएनसी पंजीकरण सुनिश्चित करने और कम से कम 8 एएनसी चेकअप कराने पर जोर दिया। बच्चों की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे स्पर्श अभियान के तहत 20 वॉलंटियर्स ने 21 विद्यालयों में 44 जागरूकता सत्र आयोजित किए गए और करीब 18,000 विद्यार्थियों और शिक्षकों से संवाद किया। सुरक्षित असुरक्षित स्पर्श, व्यक्तिगत सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आत्मविश्वास और जीवन कौशल जैसे विषयों पर बच्चों को जागरूक किया गया। अभियान के प्रभारी सचिव डॉक्टर नवीन जैन ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल उनकी नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने सिंघानिया विश्वविद्यालय परिसर से जल संचय जन अभियान की शुरुआत की। जोहर स्थल पर तालाब पूजन, 300 से अधिक पौधरोपण और जल संरक्षण पर संवाद हुआ। डॉक्टर सिंह ने जल स्रोतों के पुनरुद्धार, चेक डैम निर्माण, अरावली संरक्षण और पारंपरिक जल संरचनाओं की रक्षा पर जोर दिया। उन्होंने शेखावाटी क्षेत्र के लोगों से जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। RUIDP के पांचवें चरण के तहत झुंझुनू, चिड़ावा, नवलगढ़, मंडावा और खेतड़ी में 129 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। अपशिष्ट जल प्रबंधन, ड्रेनेज, बाढ़ प्रबंधन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, विरासत संरक्षण और पर्यटन विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। परियोजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले आमजन और विभिन्न वर्गों से सुझाव भी लिए गए हैं। अंगदान जागरूकता में झुंझुनू ने प्रदेश में दूसरा और देश में तीसरा स्थान हासिल कर जिले का गौरव बढ़ाया है। 31 जुलाई तक जिले में 19,086 नागरिकों ने अंगदान का संकल्प लिया। इस उपलब्धि के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम को राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया गया। इसी के साथ झुंझुनू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर उपेश सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कयो साल 2047 ताई भारत ने पूर्ण विकसित राष्ट्र बनावण सारू नौजवान, गरीब, महिलावां और काश्तकारां ने मजबूत बनावणो जरूरी। पहली रात प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पुण्यतिथि माथे आज न्यारा न्यारा कार्यक्रमा री मार्फत राष्ट्र निर्माण में हमारा योगदान ने याद करी जिया। राज्य रा नगर निकाय रा चुनाव सारू वार्ड आरक्षण लॉटरी काले निकाली जायला। और प्रदेश में बिरखारा दौर में कमी, 19 अगस्त तू अगुणी राजस्थान में बिरखारी गतिविधियां फेरू बदन रा आसार। समाचार रह साथ है मैं शंभू सिंह और अब समाचार विगतवार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राज्य रा 12,000 करोड़ रुपयों बत्तीरा कमारी सौगात दी। श्री शाह चित्तौड़गढ़ रा निम्बाहेड़ा माए विया कार्यक्रम माए 5,659 करोड़ रुपया रा 944 विकास कमारी नींव धरी और लोकार्पण करियो। इन माए 15 जिला रा विकास रा काम भेड़ा है। ई मौके वणा जल जीवन मिशन रे तहत 1,500 गांव सारू हर घर नल से जल योजना री शुरुआत करी। श्री शाह पहली रा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अष्ट धातु बनी 21 फुट ऊंची मूर्त और मिनी अटल स्मारक रोई अनावरण करियो। श्री शाह कयो के अटल जी हर गांव ने सड़क को जोड़न रो काम करियो। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना रे तहत नेशनल हाईवे बनाया। देशरा आदिवासियों सारू पहली बार जनजातीय कल्याण मंत्रालय बनाई जियो। वणा कयो के केंद्र और राज्य सरकार री कोशिशों राजस्थान में विकास रा नुआ आयाम थापित वे रिया है। प्रदेश पानी री कमी सारू जानियो जावतो हो फेरो भजनलाल सरकार 3 मोटा जल समझौता करने प्रदेशवासियों री प्यास बुझाउण रो काम करियो है।
2: राजस्थान को पानी की कमी के लिए जाना जाता था। भजनलाल जी ने 3

0: समझौते कर आधे राजस्थान की प्यास बुझाने का काम हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने किया है। लगभग लगभग एक ही योजना से 3 करोड़ लोगों के प्यास बुझाने का काम होगा और बाकी 2 योजना से भी कुछ कॉमन भी है मगर 2.5 करोड़ और लोगों का प्यास बुझाने का काम होगा।
1: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्माई भाषण करियो। चित्तौड़गढ़ रेपा छे केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री अलवर पूगिया वठे श्री शाह प्रदेश रा 17 जिला सारू 6453 करोड़ रुपया रा 954 विकास कामा रो लोकार्पण करियो और नींव धरी। इन माय अलवर जिला माय 200 करोड़ रुपया री लागत वाला सरस डेयरी रा नुआ प्लांट री नींव अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज रो लोकार्पण भेड़ो है। अलवर रा विजयनगर ग्राउंड में विया कार्यक्रम में बोलता श्री शाह कहो कि साल 2047 ताई भारत ने पूर्ण विकसित राष्ट्र बनावण सारू नौजवान गरीब महिलावां और काश्तकारां ने मजबूत बनावण जरूरी है। वणा कहो कि केंद्र में मोदी सरकार आ तबका माथे खास ध्यान दे रही है। ई कड़ी में अलवर में सरस डेयरी प्लांट मवेशी पालका में भरोसा ने आगे बढ़ावण वालों महत्व कदम है।
0: आज अलवर में सरस डेयरी के नए प्लांट का शिलान्यास पशुपालक भाइयों में विश्वास को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। यह आधुनिक प्लांट के निर्माण से दूध के प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ेगी, दुग्ध उत्पादनों को बेहतर बाजार मिलेंगे। आज विभिन्न संघों के डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट का कैटल फील्ड प्लांट का लोकार्पण भी आपने किया है। 4 केंद्रीय सहकारी बैंकों की आपने घोषणा की है। इन बैंकों के गठन से इन जिलों में भाई बहनों को 0% ब्याज पर फसली ऋण बीमा भी मिलेगा।
1: श्री शाह मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव रे तहत प्रदेश रा 10548 नवा नियुक्त कर्मचारियों ने सरकारी नौकरी रा नियुक्ति पाना सौंपया। वठे प्रदेश रा 66,74,000 लाभार्थी काश्तकारों ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि री 6ठी किस्त ने डीबीटी री मार्फत भेजी जिया। देश आज पहली रा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी री पुण्यतिथि माथे वाने श्रद्धा सुमन अर्पण कर रिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में श्री वाजपेयी रा स्मारक सदैव अटल माथे पुष्पांजलि अर्पण करी। प्रधानमंत्री आपरा सोशल मीडिया संदेश में श्री वाजपेयी ने असाधारण दूरदर्शी और ठावा राजनेता बतावता कहो कि अटल जी आपरो जीवन देश सेवा में समर्पित कर दियो। अठी ने प्रदेश में न्यारी ने ठोणा कई कार्यक्रमों की मार्फत पहली रा प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने याद करया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपरा संदेश माई कहो कि लोकतांत्रिक गरिमा रा प्रतीक और राष्ट्र निर्माण रा शिल्पकार अटल जी रो जीवन आज ही राष्ट्र नीति री आधारशिला है।
0: वाजपेयी जी देश के सबसे महान नेताओं में से एक थे। उनके कुशल नेतृत्व में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण 1999 में हुआ, 98 में हुआ और 1999 कारगिल का युद्ध जीता। अटल जी के देश को एक सूत्र में परोने के लिए इस संकल्प को गति देते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया।
1: भारत रा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत आज जोधपुर प्रवास माथे रिया। ई दौरान वणा जोधपुरा जिला अदालत परिसर में 60 कोर्ट क्षमता वाला नुआ 7 मंजिला भवन रो उद्घाटन करियो और नुआ हाईकोर्ट गेस्ट हाउस री नींव धरी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रा दीक्षांत जलसा में हिस्सो लियो। ई मौके वणा कहो कि कानून बंद किलो नहीं है बल्कि जीवंत और खुलो मंच वेणो चाहिजे जटे हर रहवासी री पहुंच और सुनवाई वह सके। जलसा में स्नातक स्नातकोत्तर और पीएचडी रा 176 पड़ेसरा ने सनद दिरी जी वठे होशियार पड़ेसरा ने सोना रा तमगाई दिरी जिया। इनरे अलावा मुख्य न्यायाधीश लीगल टेक्नोलॉजी एंड इट्स रोडमैप मुद्दा माथे राखी जी वाइस चांसलर्स कॉन्क्लेव रोई उद्घाटन करियो। ई कॉन्क्लेव में एआई और आधुनिक तकनीका रा वाजिब उपयोग कानूनी कोर्स ने भविष्य री जरूरत मुजब बनावण माथे जोर दिरी जियो। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। राज्य रा नगरीय निकाय रा चुनाव सारू वार्ड आरक्षण लॉटरी काले निकाली जायला। जिला माय नगर निगम नगर परिषद और नगर पालिकाओं रा वार्ड आरक्षण कलेक्टर थर माथे करिया जायला। जयपुर नगर निगम रा 150 वार्ड समेत

0: जिलारी नगर परिषद और पालिकमा रा वार्डरी लॉटरी न लेर सगली तैयारियां पूरी कर लीजी है। वठे परसों ग्राम पंचायत माए सरपंच और वार्ड पंच औदारी लॉटरी निकाली जाएला। सरपंच और वार्ड पंच री प्रक्रिया उपखंड थरमात है और जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों री प्रक्रिया कलेक्ट्रेट सभागार माए वैला। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज डीडवाणा माए हॉस्पिटल चौराया माथे पंडित दीनदयाल उपाध्याय री मूर्त रो अनावरण करियो। ई मौके जलसा माए बोलता वणा कहो के पंडित दीनदयाल रो जीवन संघर्षों भरियो रियो, फिर वणा खिलाफ हालात माए रहर आपरी जिंदगी देश सारू समर्पित कर दी। राज्यपाल नौजवानों पंडित दीनदयाल उपाध्याय रा विचारा ने अपनावण री अरज करी। राज्यपाल लोकतंत्र सेनानियां ने सम्मानित करया। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान साइबर कुश्ती 2026 नामरी एक साइबर सुरक्षा और एआई हैकेथॉन री शुरुआत करी है। इनरो मकसद साइबर सुरक्षा आकलन माए मानवीय फैसला बुतारो परीक्षण और उनने मान्यता देवे है। साइबर कुश्ती सारू आवता मीनारी 10 तारीख तई पंजीकरण चालता रहेला। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बतायो के इन माए भागीदारी मुफ्त है और 3 सदस्यों की टीम माए पड़ेसर और शोधकर्ता हिस्सों ले सके है। जीतने वाली टीम ने साइबर केसरी 2026 री सनद सम्मानित करया जाएला और वाने रीत मुजब गदा भेंट करी जाएला। उप विजेताओं ने रोस्तम और पहलवान री सनद नवाजा जाएला। अरबे मौसम प्रदेश माए मानसूनी बिरखारा दौर माए कमी आई है। फिर वही मौसम महकमो आज प्रदेश रात 13 जिला में बिरखारो येलो अलर्ट काढ़ियो है। ई बीच राज्य रा आथोणी हल्का में बिरखारो दौर धीमो पड़नु गर्मी और उमस रो असर बद गयो है। महकमो काले और परसों राज्य रा घनकरा हल्का में मौसम साफ रहण री आस जताई है। फिर वही 19 अगस्त एक और फेरू अगुणी राजस्थान रा जिला में बिरखारी गतिविधियां में बढ़वार री आस है।
1: मानसून ट्रफलाइन अपने सामान्य अवस्था से उत्तर की ओर से होकर गुजर रही है। आगामी 4-5 दिन पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के भरतपुर जयपुर इसके अलावा कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 19 से 21 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मध्यम से लहरें तेज बारिश होने की भी संभावना है।
0: राज्य माए न्यारी न्यारी ठोड़ा बिरखाओं जलाशय माए पानी री आवक वेरी है। जल संसाधन महकमा मुजब प्रदेश रा छोटा मोटा 693 बंदा मायू 38 बंदा लबालब है, वठे 447 बंदा अध भरिया है। राजधानी जयपुर माए आज बूढ़ी तीजरी सवारी निकाली जा रही है। बैंड बाजा और साई लवाज मारे साथ है जनानी ड्योडियों आज सवारी रवाना हुई जो परकोटा माए न्यारा न्यारा मार्गाओं वेता निकल रही है। सवारी माए लोक कलाकार आपरी मोवनी प्रस्तुतियां दे रिया है। देशी विदेशी सैलानियारी घनी तादाद ने देखता प्रशासन यातायात और हिफाजत रा खास बंदोबस्त करिया है। ध्यान जोग है के काले हरियाली तीज रे मौके ही साही लवाजमा रे साथ है तीज मातारी सवारी निकाली जी ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित किया जाने वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए आपरा विचार बतावेला। आ हर महीना प्रसारित कराया जाने वाला ये कार्यक्रम री 137वीं कड़ी वेला। इस हारू आप ही 28 अगस्त ताई मुफ्त नंबर 1800-1178-00 माथे आप री राय भेज सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम री मार्फती आप विचार भेज सको हो। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए इस साल जून महीना माए भी यूजीसी नेट परीक्षा रा 84 विषया रा आखिरी उत्तर कुंजी काट दी है। उम्मीदवार 18 अगस्त ताई आ उत्तर ने चुनौती देवन सारू यूजीसी नेट पोर्टल माथे ऑनलाइन अर्जी दे सके है। नबे आखिर माए खास समाचार आप एक कर फेरो सुन ले रहो। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कहो साल 2047 ताई भारत ने पूर्ण विकसित राष्ट्र बनावन सारू नौजवान गरीब महिलावा और काश्तकार ने मजबूत बनावनो जरूरी। पहली रा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पुण्यतिथि माथे आज न्यारा न्यारा कार्यक्रमारी मार्फत राष्ट्र निर्माण माए वारा योगदान ने याद करी ज्या। राज्य रा नगर निकाया रा चुनाव सारू वार्ड लॉटरी काले निकाली जायला। प्रदेश माए बिरखारा दौर माए कमी 19 अगस्त अगुणी राजस्थान माए बिरखारी गतिविधियां फिर बदन रा आसार। नरेंद्र साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।

0: आकाशवाणी
1: FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं, सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

खेती बाड़ी कार्य कर सुनना सकला बयाने बयाने आपके जगदीश भाई राम बयान। देखो जब चौपाल मत बैठा तो खेत खलिहान जरूरी और मौसम के हिसाब में आपने जो पालतू पशु दो नए सगली बातचीत क्रिया करा सागे सागे स्वास्थ्य की भी और टाइम टाइम माते जकी चीज़ा परिवर्तन लावे पांच चीज़ा ने जो आप अपनाता रहे माँ तो आपने जो खेती को धंधो है या पशुपालन को जो धंधो है कि बिंग मायने आपने हिसाब बराबर लगे टके लाभ है जो मिलते रहे। यानी एक बेमौसम के मायने भी आप खेती कर सका, सर्दी के मायने जाने खरीफ वाली फसलें बे भी ले सका और गर्मी के मायने सर्दी वाले। और बी योजना को देखो नाम पोली हाउस। पोली हाउस एक प्रकार को संरक्षित ढांचो या करे संरचना हुए जो को पारदर्शी यानी जगह आर पार दिखे बी पोलिथीन प्लास्टिक शीट ढक्कर बनाई से इंग उपयोग और नियंत्रण वातावरण के मायने पौधा ने क्यान को वातावरण है बी हिसाब कितनी धूप मिलनी चाहिए कितनी बारिश मिलनी चाहिए पाले की संभावना कीट की संभावना साल भर खेती संभव। मुख्य विशेषता बात करें तो पोली हाउस जो को है पारदर्शी प्लास्टिक को एक विशेष प्रकार का ढांचो जो को कमरे के रूप में शेड के रूप में इंगे सागे सागे तापमान नमी हवा बिना अपन नियंत्रित कर सकें और ग्रीन हाउस की जो कि किफायती सरल रूप जो को आप कह सकें तो वो पोली हाउस। पोली हाउस की जो अपन लाभ की बात करें तो बेमौसमी फसल बे भी अपन ले सकें अलग अलग। इंगे अलावा सुरक्षा आंधी आवे ओला आवे तूफान आवे या धूप है कीड़ा बाउन सुरक्षा पैदावार ज़्यादा हुए और सागे सागे उत्पादन है बिंगी गुणवत्ता है जो कि भी बढ़े। और जे आप बात करा कि पोली हाउस में आप कहीं कहीं उगा सकें कहीं कहीं ले सका विशेष रूप अगर बात करा तो मुना पौधे उन्होंने जान फसला है ऑर्किड जगह ने बोलिया करे जरबेरा जगह ने बोलिया करे विदेशी फूल है लाल पीली जो कि शिमला मिर्च है स्ट्रॉबेरी है ए ई टाइप की इंगे सागे सागे जे आप बात करा कि भी जो को आप पोली हाउस लगा रही हाँ कर रही हाँ भी हूँ अपन कहीं फायदो है तो कहने को मतलब वो है कि जकी फसल अपन ले सका विशेष रूप सब्जी वाली जो की फसलें वे पोली हाउस में और आमदनी भी अच्छी गुणवत्ता अच्छी और कीड़ो लागे नहीं मौसम की सुरक्षा तापमान की सुरक्षा शिमला मिर्च ले सका खीरो ले सका टमाटर ले सका रंग बिरंगा जगह फूल है जखा वो मूल्य ज़्यादा है बे पौधा वगैरह वो भी अपन ले सका। आगे मायने सरकारों सब्सिडी भी मिले भारत सरकार और राज्य सरकार मिलर देवे पोली हाउस जो अपन निर्माण करा सामान्य श्रेणी के मायने जितनी लागत आवे बिंगो 50% सरकारों अपन ने मिले। इंगे सागे सागे जकी महिलाओं अगर ये टाइप को आरक्षित वर्ग के मायने काम करे तो माने 70% जहाँ लाख रुपया लागे तो 70,000 रुपया सरकार की तरफ सामान्य श्रेणी में कोई काम करे तो लाख रुपया लागे तो 50,000 रुपया सरकार की तरफ। और कई बार विशेष योजना मांगते हैं सब्सिडी है जो कि बढ़ रहे 95% ताई बीव जी इंगे मायने किसान भाई आपको जो को राज्य है आपने जान राजस्थान राज्य बिंग में उद्यान विभाग जगह ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट किया करे बट आवेदन करे और पूरी प्रक्रिया को पालन कर और फॉर्म वगैरह भरे तो भी हिसाब में सब्सिडी भी मिले। पोली हाउस लगाउन खातर ज़्यादा ज़मीन की भी ज़रूरत को नहीं कीमती ज़मीन की ज़्यादा ज़रूरत को नहीं है ना जितनी ज़मीन उपलब्ध हुए बिंगे मायने राज्य में जिले में सब्सिडी का जगह

0: दस्तावेज है बांगो पालन करे और पालन कर ऐसी चीज़ें हैं जो कि ले सके। तो कहने का मतलब कि सरकार की योजना में तो है लेकिन बांगो लाभ अपन जद ले सका जद अपन ध्यान रखा और ध्यान रखकर जागरूक किसान के रूप में अपन काम करा तो मिले। बातचीत और भी करा पर पहली काम की बात।
1: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: तो भाई देखो, पोली हाउस की अपन बात करी और किसान भाइयांगे मन की बात ठेठ किसान भाइया तय पूग कर और आप तय क्रिया करा पूगती तो लो सुनो। भैया देखो, किसान भैया बात करने की मन में वेना गांव गांव गया करार, यानी आज चलार नागौर आतुना निकलियार, चालता चालता एक जगह रुकिया और भाई खेत में काम कर रहा है। पहले करा अपने कार्यक्रम में स्वागत। राम राम सा।
5: राम राम सा। राम राम सा।
0: काय नाम?
5: मोहन राम गोदारा।
0: अपन जकी ढाणिया में खड़िया, किस गाँव की कांकड़ा?
5: देऊ की है, गोदारा की ढाणिया।
0: देऊगीर गोदारा की ढाणिया देऊ पूर्वी कांकड़ा। और चारा का नहीं देखा तो देखो, हाथ रो धान लगुड़ो है, रब तो मालिक मेर है। खेती बाड़ी क्रिया करो?
5: खेती बाड़ी करा सा।
0: काई बाव?
5: मोट बवा, बाजरी बवा, गवार बवा, तिल भी बवा।
0: मूंग?
5: मूंग कम बवा, हमारे थड़ी बेल्ट में थोड़ा कम हुआ है मूंग, धोरा धरती है।
0: तो जबकि अब के बरसात की बात करा तो देखो, बरसात की तो कमी है कोने,
5: बरसात बहुत ज्यादा हुई है अभी।
0: और जगह लोग अगेती खेती करी है, चाहे बाजरी है, मूंग है, मोट है, गुआर है, तिल है और जवार भी कई खेत मायने देखी मिली और पचेती बे भी अब गे हाथ रही है। तो जो कि अगेती खेती करी, यानी बरसात होती शुरुआत में कई जगह खेत में यूँ लागे कि बाजरी हिट्टा पा गया, मूंग ही फली पा गई, मोटांग ही पा गई, थार क्या गई?
5: मारा ठीक है सा, मोट पा गया, पाड़ना शुरू कर दिया और सिटिया में भी टाइम लागे 15-20 दिन और गंवार में भी टाइम लागे।
0: आल लावणी के मायने 15-20 दिन को वक्त है।
5: वक्त है सर।
0: मैं बात यूँ पूछूं, जाना आप बाजरे की खेती करी है, मूंगी भी है, मोटांगी भी है और गंवार भी है, तो बीज किस कहीं काम में लिया करो?
5: बीज देसी काम लेवा सा, हाइब्रिड नहीं लेवा और खेत में देसी खाद ही डाला, यूरिया बे उपयोग में नहीं लेवा।
0: कहने का मतलब पूरा जो को जैविक खेती की आप बात करें बीगो थे पालन करो।
5: हाँ सर।
0: बात यूँ है कि देसी बीज कितों को निपज जाए बीघे में? जान बाजरी की बात करें,
5: बाजरी 2.5-3 क्विंटल बीघे में निपज जाए सर।
0: और मूंग मोट?
5: मूंग जो है 2.5-3 क्विंटल और मोट भी 4 क्विंटल तक पहुँच जाए।
0: गंवार?
5: गंवारी 3-3.5-4 क्विंटल जमीन सारू है।
0: हाँ, जान जमीन है भी हिसाब?
5: भी हिसाब हूँ उजे भाई।
0: तो दूसरी चीज आया जान आते हैं बीज की, तो बात कर दी देसी बीज काम में लो और खाद ही देसी काम लो, धन पशु कितना रखो?
5: पशुओं में साथ एक गाय है, ब्यूड़ी है और भी लार बछड़ी है और दो बकरियां हैं,
0: तो जब जमीन की बात करें तो किता बिगाड़ दे।

0: जमीन मांगे पिताजी का नाम 45 बीघा है सर।
1: कितनी आई बंट में?
0: मारे 15 बीघा आएगी, मैं 3 भाई हैं।
1: तो 15 बीघा के मायने जान जगीते हैं खेती करो। अभी खेती के मायने एक गाय बकरियां रीति देसी खाद हज जावे एक दूसरी गेम लाओ।
0: नहीं हज जावे सर, हर साल चेंज करा, एक खेत में डाला अगले साल दूसरे खेत में।
1: बी साहब
0: बी साहब हूँ, तीसरे साल पांचों नंबर आ जाओ भी खेत में।
1: अपन सूर डाली की बात करना जानते हैं, खेती शुरू करो भी पहली फालतू कचरो कितो हो गए खेतों में?
0: कचरो तो माने देसी हेट बोलिया करे अन्ना आम भाषा में, बे ज्यादा हो करे थोड़ा बाने खोद निकाला और सीनियर थे, आजकल कम हो गया शुरू। ज्यादा कचरो पहले वाले जीतू हुए कौन
1: है? बाद में जान है आप खेती कर ले, और खेती के बाद के माने जान निनाण माता वे जगह ना निराई गुड़ाई के वहां बी टाइम कितो कचरो वे सीनिया है आकड़ा है दूजो कोई बाबरो अट गई खेता में आप देखा?
0: नहीं देसी घास ही वैसा बाबरा ने मालता हालत शुरू हुई है कौन मारी थड़ी बैठे
1: कई खेतंग मायन मेरे रस्ते के मायन देखियो जान प्यूंत की भी सुविधा है, यानी कहीं ट्यूबवेल बनाई आपके
0: है? नहीं आप पर प्यूंत कौन है सर?
1: जगह ट्यूबवेल बनाई डी पानी क्या है जमीन को?
0: पानी ठीक ठाक है, मूंगफली रियान की फसल धोए को नहीं, राइडार देसी जीरा रिस सबन ऐसी चीजा हुई है, नरमा हुई है
1: जगह प्यूंत की खेती करे। बी प्यूंत की खेती के मायने बे तो जो कि जैविक अपन खाद देसी खाद बोला आ काम में लेवे दूजी भी लेवे?
0: बे ट्यूबवेल वाला तो ज्यादातर यूरिया और डीएपी
1: बे लेवे
0: आ ज्यादा
1: तो
0: काम में।
1: कोई कहे कौन भाई जैविक तरीको अपनाना है जैविक खाद आई काम में लेनी?
0: बे तो बे किसाना की सोच थोड़ी गड़की है, क्योंकि आ खाद एक बार डाले ना 3 साल तक असर दिया करे देसी खाद।
1: और बात तो साल में 2 बार डालनी पड़े,
0: बात तो साल
1: में फसल में डालनी पड़े,
0: खड़ी फसल में 2 बार डालनी पड़ जाए, बात तो 2 दिन कोई असर रिया करे भी। मैं
1: जाने थे के ओके मैं देसी बाजरी मूंग मोट गुआरंग देसी बीज काम में लेवा, तो ओ जगह टाइम खेती पक जाए चाहे बाजरे की है मूंग की है मोट की है गुआर की है, इनमें टाड़ो भी हो गए कि भाई बीज थोड़ा के हांतरो हिटो है या अच्छो गुआर है जगह फड़ी चौकी लागुड़ी है
0: टाड़ा सा इन मायने साठ या मोट है अलग टाड़ा चौकी फड़िया लागुड़ी हो जाएगी और सीटियाँ भी लंबी हुए तकड़ो बीज हुए वे भी टाड़ा और गंवार में भी फलिया का गुच्छा लागू है बे पौधा अलग टाड़ा।
1: यूँ बात यूँ है कि जान आप चौको सीटो टाड़ना और बाजरे के मायने तो देखो बिघे के मायने पाव लेर 1.5 पाव तक तो बीजी है।
0: हाँ सर।
1: और जे आप चौको बीज टाड़ना तो थोड़ो थोड़ो टाड़ा बीते हुए काम आ जाए।
0: हाँ
1: एक बात और पूछूँ, यहाँ जे बीज टाड़ो और कोई भाई देसी बीज ही काम जानो चाहे तो कभी यहाँ टाड़ बढ़िया बीज बेची भी हो गए?
0: नहीं बेचियो बीज को नहीं है, कोई मांग लियो अड़ोसी पड़ोसी तो बना दे दियो
1: 5 किला 10 किला राख लो और चौका हिटा टाल यान को जान अपना हाइब्रिड बीज लवा थे लड़ो देसी पाची पनप जावे देसी खान पान में अच्छी हुए यान को टाल जान कुंटल खांड थे कर लो 2 कुंटल कर लो तो बाजरे को तो कई खेता में काम आ
0: जाए।
1: यान सोचो कौन
0: यहाँ तो सोचो कौन
1: है? देखो मजदूरी का साधन भी है ना, टाली टू बीज हुए तो देखो एक तो अपन जान लगभग अभी बाजरे का भाव 2500-2500 भी बीज के हिसाब में भाई देसी है कि हाइब्रिड है, टाली टू बीज हुए तो भाव बढ़िया मिल जी नहीं
0: भाव मिल जाओ पड़ोसिया ने मिल जाओ पड़ोस में अनाज भी बढ़िया हुआ तो सही है पड़ोसी की भी हेल्प हो जाए।
1: कदम यहाँ सोची क्यों कौन भी थोड़ा की ध्यान रखना भाई आप सिट्टी तोड़ा ना बी टाइम चौका सिट्टा है पाकिटा सिट्टा है भाई आप अलग कर लो तो कुंटल 2 कुंटल बीज जो आप बना सका और बिने थोड़ा व्यवस्थित रखना भी सुड़े नहीं करें पाँचों पाँचों बीज जीते थे।
0: बात तो सही है बीज वाले टाइम तो सबरी समस्या है बढ़िया बीज मिले कौन जन लोग देसी मोल लाइट की बाजरी ना
1: लेकिन लुणा ही करे बी टाइम ध्यान दे को
0: ध्यान देवे कौन
1: और कोई बात जाने थे विशेष जान गाय रखो गाय में भी अभी कोई हरी ठहरी रोग
0: नहीं सर आप तो 2 साल हो गई गाय में हाल फिलहाल कोई बीमारी नहीं आई बकरियां 2 है बे भी निरोगी है कोई बीमारी नहीं आई।
1: इनके अलावा जान बात करा है जगह ट्यूबवेल आर करे वो जमीन को पानी मेल की है अटे
0: वो तो ज्यादा मेल तो कोनी ठीक ठाक है नॉर्मल फसल हो जावे मैं ज्यादा देसी जीरा ज्यादा एवरेज नहीं देवे
1: गणो देवो कोनी
0: गणो एवरेज देवे कोनी
1: कहने मतलब पचन करे लेकिन जिती पचन करे भी तो मिले को
0: भी तो मिले कोने
1: भी तो मिले
0: 5 लाख की 6 लाख की ट्यूबवेल बैठे मारा पड़ोस में मैं देख ली बाकी 15-15 लाख तक बैठे जन किसान पड़ता खावे
1: नहीं पड़ता खे कोनी
0: पड़ता कौन खावे सब मार
1: पड़ो लाइट को भी खर्चो है पाइप पंप को
0: लाइट को बोई को बीज को दवाई को
1: खाद को
0: खर्चा बहुत है
1: खर्चा ज्यादा है उपज कम है
0: उपज कम है
1: कई बे पड़पच करे है।

0: लड़का आया, दोनों स्कूल जावे, सरकारी स्कूल में पढ़े दोनों लड़का।
1: अब आप बच्चे की बात करा भाई, वो जो कोई इलाको है थोड़ा सो दौरा धरती को इलाका माई सगला बच्चा ने स्कूल भेजे को भेजे?
0: हाँ, पहले तो कौन भेजता था, अब सब बच्चिया ने पढ़ा हुआ है, मतलब सब माई तेज जगह लड़कियां ने पढ़ा हुआ है और पढ़ाना चाहे कि लड़की कम से कम 10वीं 12वीं पढ़ ले तो आप शिक्षित हो जाओ।
1: तो चलो अच्छी बात मोहन जी, अभी जब पानी की पीऊँ की तरह तो नेहरा हो गए?
0: नेहरा पानी नहीं है सर।
1: आओ को ना लाइना तो डाली नहीं
0: लाइन आया, खाली पीऊन पानी आम जन पीऊन वास्ते है,
1: मतलब
0: सिंचाई के लिए नहीं।
1: वो पूरा हो गया?
0: वो अभी शुरू नहीं हुआ है, क्या दीपावली तक शुरू कर देंगे।
1: एक बात और जाने, इतनी बरसात हुई मन तालाब कम दिखे?
0: तालाब देव में है ही को नहीं, एक नाडी जगह में 6 महीना पानी रहता हो पहली। अब हर साल भी नरेगा चाल जाओ दिन बाद जबकि ऊपर पापड़ी जमुड़ी है, हर साल कुचर लेवे
1: ना होश जाओ
0: तो पानी
1: जल्दी होश
0: जाओ, होश जाओ एक महीने कौन साल लेवे।
1: बंदा ही करोड़ी कौन कहीं
0: बंदा ही कौन करोड़ी
1: बंदा ही हुए तो तोड़ो तो रोक सके।
0: टांका बनाए सब मीठू बरसात वालों पानी टांका, 8 टैंकर का 10 टैंकर का
1: भी सरकार अनुदान देवे बोलियो को लियो कोई
0: नहीं मा तो कौन लियो सा ऐसे आड़ा मिले है, बाकी
1: मिले तो सब नहीं है, लाख रुपये लेना बिंग माने चलो जमीन कटानी पड़े सार्वजनिक टाइप बनानी पड़े
0: जमीन। पहली बात मान लो कटाना चाहे कौन
1: है,
0: रस्तो लागण जरूरी है,
1: रस्तो वे
0: बाबी है कौन कटाण होना जरूरी है, इतनी प्रक्रिया आम जन करे कौन
1: भी खातर भी लाभ ला
0: रहे। वो भी सोचे कि आप जमीन कटा टांको बनवा कोई भी पानी पी सके,
1: बदलो
2: बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
5: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
6: तो देखो मोहन राम जी जगह देवगरा बाऊ बातचीत करीर करी आप तय पूगती और आपने उड़ी के कोई लोक गीत और भजन गी तो अनिल नागोरी रो गाइडो और लोक भजन करा आप तय पूगता सुनो।

0: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर है 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: तपाईँ देखो भजन अनिल नागर गाइडो करियो आप तै पुग्दो और चर्चा चर्चा यूं के जेकि आप फसल बोर राखी है, बाकी जगह बढ़वार है, पैदावार है, बीसारू कई पोषक तत्व की जरूरत हुए और कुल यान का 17 प्रकार का पोषक तत्व है। बिंग अभी अलग अलग रूप है, कई हवा पानी मिल जाए, कई प्राथमिक रूप हूँ, कई द्वितीयक रूप हूँ, और सूक्ष्म जगह पोषक तत्व है बे और अलग टाइप का वे। बुनियादी जगह पोषक तत्व है जगह हवा और पानी पौधा ने मिले, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ए सीधा पानी रवा पौधा आपको लेर मुख्य ढांचो है जो बना। प्राथमिक जगह पोषक तत्व है जगह मुख्य खाद के रूप में मिले, बीमे नाइट्रोजन है जो को पत्ता और तना है बांगी वृद्धि खातर काम में आवे, फास्फोरस जो को है बीहू जड़ांगो विकास हुए, फूल बने, फल बने, पोटेशियम पौधा में जगह बीमारी लागे भी उन लड़न की जगह ताकत है वो देवे। द्वितीयक जगह पोषक तत्व है जान कैल्शियम पौधा की जगह कोशिका और कोशिका की जगह दीवार है बन मजबूत करे, मैग्नीशियम जो को क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण धूप के मायने सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश में जगह पत्ता आपको भोजन बनावे बी सारू काम आवे। सल्फर और गंधक तेल वाली जगह फसल है विशेष रूप बांगे मायने प्रोटीन को जो को निर्माण करे, इन्हें बात जो को नाइट्रोजन आप बात करी इनके बाद में सूक्ष्म जे पोषक तत्व की आप बात करा, बाकी कम मात्रा में जरूरत पड़े बांगो भी ध्यान रखना चाहिए आप ना, जहाँ जिंक की भी जरूरत पड़े, आयरन की पड़े, मैंगनीज की पड़े, कॉपर की, बोरोन की, मेलिब्डेनियम की, क्लोरीन की और निकल की, ए सूक्ष्म है जगह एंजाइम क्रिया वे फल की जगह गुणवत्ता है बाने निर्धारित करे, आ चीजों का ध्यान रखना और इनके सागे आपने जो खेती बाड़ी तेवड़ी वक्त पूरा तो आपके जगदीश भाई निरव सिंह करा राम राम।

खेती बाड़ी, ये कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 हैं। आज सुनते हैं फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का आगाज हमने किया फिल्म कर्मा के इस गीत के साथ। कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाज़ है। संगीत है आपके लक्ष्मीकांत पेरेलाल का और शब्द रचना है आनंद बख्शी।

आइए सुनते हैं फिल्म जुनून का ये गीत अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की आवाज में। गीतकार है समी और संगीतकार है नदीम शर्मा।

चिरमी चैनल के संग आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं आज की फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में। शब्दकार हैं समीर और संगीतकार हैं नरदीम शर्मा।

लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चरण से बोल रहे हैं, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं

0: काका सही केटी के वे पर भाई ने स्पेलिंग आवे कहीं मैं पूछू कहीं
1: एजू पहले बोल एलो
0: हेलो भाई जी राम राम
2: राम राम सर राम राम सर
0: केट की स्पेलिंग बताओ
2: सी ए टी
0: वाह सा वाह और प्रोग्राम केड़ो लगे
2: बहुत बढ़िया लगे
0: ताक में पानी है कहीं धान केड़ो के कहीं कहीं बौड़ो खेता में
2: बाजरी मोट गवार
0: बाजरी माते ऊपर कर निकल गई वाह सा वाह आज कहीं हुनोला
2: मिलन सज गई
3: हाँ काका राम राम
1: ए राम राम जाई राम राम जाई अब्रोन्यो भिजो खोके निर्गाओ भिजियो
3: काका मारो नाम तो है लक्ष्मण राम जाखड़
1: आओ
3: और गांव है मारो बेरासर
1: अच्छा ओ हो बेरासर में कोई करो
3: और काका बार तो मैं जेतारण ब्याहूर में रहूं टाबरिया पढ़ाऊं मास्टर हूं
1: आओ हो मार जब निमिष्कार
3: नमस्कार काका नमस्कार
1: आयो वाशवा देखो राम जी धानी की तो झोको और फूट रो कोम दीवे बीड़ाओ टाबरिया ने मिनिक बनाओ
3: हाँ काका कोशिश तो घनी करा
1: आई कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है आप जो मार्शा पिटाऊं तारो और बेदोबंद जेतारण के नहीं ब्यावर के नहीं शक्ला किया नहीं हो
3: सब मौज मस्ती में काका प्रसाद घनी है सब खेतम काम करे है फसल चौकी है
1: अरे वाशवा धाने बोगाम के शोक लग गये हो
3: अरे काका पूछो ही मत ना आप जोरदार लगे
1: अरे वाशवा मारी बोती आउड़ी जोड़ो इसको हम जो बड़े में कमजोर बनती है मार्शा में
3: अच्छा बात कराओ नहीं पोती हूँ
1: लूनी भाईयो अरे राम राम राम आये मत करो आ मार साहब तुमको कुछ गेहूना जालते हैं बैठ बोलो हेलो
0: हेलो
3: हाँ लोनी भाई राम राम
0: राम राम सर राम राम मार साहब नमस्कार
3: मौज करो
0: मार साहब मैं कितो गए
3: मैं तो लोनी भाई घणो ही है बार
0: आ घणो ही जनी है बताओ जी हाँ के करे के सच्चाई री जीत हुए तो सत्य पर आधारित एक दो दुआ हुनाई दो
3: सत्य पर आधारित है
0: हाँ
3: एक तो देखो सात बराबर तप नहीं रे झूठ बराबर पाप जाके हृदय सांच है ताके हृदय प्रभु आप
0: काका थाने याद है घूमना
1: ए भाई तू ही उड़ा दे मार शाम ने परेशान मत कर दो
0: काका मां सा परेशान हुए थोड़े हर दिन टाबरा बेले ही रहे
1: तू उड़ा दे भाई
0: ए हुनो काका
1: पस
0: मन काका जानती तो कचोरी दीरानी पड़ेला
1: आई दीराऊ जने मिर्ची पीड़ो गुलाई दे तू दे दे बोल
0: सत माती छोड़ो रे नरा सत छोड़िया पत जाय सतरी बांधी लक्ष्मी फेर मिले ली आए
3: काका तारो लोनी भाई तो होशियार है वो
1: आई ये बड़े में होशियार नहीं आ दो आज घड़ी बोले पी रहा हूँ भाई ने पूछ पोका मैं कहीं पूछा
0: आज कहीं हुनोला मार साहब
3: लीलन सजगी
0: काका आयो
1: आ

0: वीडियो।
1: ओम प्रकाश बनू पारेवड़े में।
0: आओ होम जी पारेवड़े में कोई करो।
1: ए काका कहता काम काम मुंबले बाहर है जी निनाल करे काका।
0: अरे वही शेवा गाँव का नी मैं पानी किडो कियो।
1: तो करे काका बार।
0: अरे वही शेवा मुंबले उजा जी मारे पोता पोती जोड़ी की गाली जो।
1: आओ आओ काका जरूर गाला।
0: अरे और भी जो गाँव में बीवार में सब गया नहीं हो।
1: ठीक है काका।
0: ए कल झंडो टापरा स्कूल गया कहीं?
1: हाँ जा रहे हैं काका।
0: ए कहीं कहीं ईमान भाई जो खाके नहीं पी जाओ।
1: ए लड्डू और बनते हैं काका।
0: अरे वाह जो की बात है मारी पोती भी गई पी जाओ पूछो मदीना आ तो 3-4 दिन पहला तो झंडो उदम कर कर घर माई ने आंगनो तोड़ नाखी। ए ना जी के ए भाई जियो
2: कैको काका।
0: ए भाई पारेवड़ा से तुमसे बात करना चाहते है तुम कहीं करना चाहता हो?
2: हाँ आऊं नी काका।
0: ए भाई को बोलो हेलो।
2: भाई जी राम राम सा।
1: राम राम सा राम राम सा।
2: अब और कहीं काम धंधा हुए था के?
1: हाँ बाद मोबड़ा खतरो पड़ा भाई रणी भाई।
2: और टाबर सेना ही है?
1: हाँ
2: टाबरन घणो फोन तो कौन दे देखने?
1: अब टाबरन फोन को दे
2: कही कही टाबर तो फोन बिना रोटी कौन खावे इतना हिला दिया माइता। एक आड़ी बता
1: पूछो।
2: ए ऊंट जेड़ो बैसे हिनिया जीव फुद के ए बिंगे ना पूछ वे ना के सुए वो किसो जानवर होता है?
1: आए बोलनी
2: काका थाने ठाए कहियो।
0: ए हमको ठाए अबार में के माइने जो मेंढ का उजलता उसको कहते
2: जी वो मेंढ की हुए डेडरियो डेडरियो देखो तो हाथ पानी ढूले हिलड़े में बावन चाहिए खेती में घड़ाई वेला आज कहीं हुनो ला
1: सोड़े खातो ले गाड़ी ताजी मंगिया बीज है
2: काका। काका
0: आवे क्या
2: पच कहीं यो बीज मांगे पच कहीं यो
0: आज मैं नहीं बिठाऊं जब तुम गाना हुन लो हम गाना चलाऊं ताही
2: चलाई तो काका हुन लो गाने में तो।

0: कागोजा राम राम जी।
1: ए राम राम श्याई, राम राम श्याई, अब रोन्याओ भिजो को के निर्गाओ भिजो।
0: कथा हाँ नेम में चुरता हूँ बदवाशी।
1: ए बदवाशी कौन बोलो भाला, हम ही हो तो पहचान लो मने। अबे बिराओ आई करो अब घागले मने।
0: अच्छा बाबूलाल परियार बोलो हुकुम।
1: आओ हो बाबूलाल जी, हम ही हो जिन पहचान ला बिराओ बुढ़ा बा आवाज उठा कौन पड़ी हो।
0: अब दोनों रिटायरमेंट ही। हाँ हुकुम।
1: आई सही ये बीरा। और भी जो काम में परिवार में सब कैसा है?
0: मौत है हुकुम, खेत में आ थोड़ो काम करा खेत्र माने।
1: अरे वाह सेवा, मैं पानी कैसी होगी?
0: बरसात आली तो ये हुई तो ही, पर ज्यादा दमदार को नहीं जुगो। ठीक कोई बरसात रो गानी हुई कराओ गने आप तो जुगो इंदर राजा प्रसन्न हुए।
1: ए जरूर कराओ सर, पर पहला का कोई गाड़ी फेंके उसका जवाब बिनो।
0: नहीं कागो साहब देखो मैं बताऊ आपने, पहले हूँ गालू ये गाड़ी।
1: ए हो कम करो शा।
0: ए लंबो ही लंबो है लावड़ो, कोई लुई है न कोई चामड़ो।
1: आओ लंबो ही लंबो लामड़ो लुई है न चामड़ो।
0: हाँ हाँ हाँ
1: हा। कहीं होता है तो जेवड़ा होता है नहीं।
0: नहीं नहीं कावसा ले जेवड़ा नहीं होता है।
1: ए लूंगा
2: कई को काका।
1: ए तुम्हारे काका हार गए, तुम काका की तरफ रहती हो भाई की तरफ जाऊती हो?
2: काका हूँ देखा कोशिश करूँ एक भाई जल पालन जो बस नहीं आए भाई जी केंद्र की।
1: ए जो भाई को बोलो हेलो
2: हेलो।
0: राम राम ठाप, राम राम ठाप। काका उलूद गया आज? अबे यहाँ पर नालू चावे।
2: हाँ
0: पर रेल लाला सही ला।
2: हाँ रेल वाला सही ला हुए। सही है काका, देखी मारो अनाज की तो नेड़ो नेड़ो पुग गया हो।
1: हमको जीता जा भाई, हमको हराने चाहूंगा था।
2: अरे काका भाजी तो थारे बेली है, थारी याद गनी आवे से ना तई करे।
1: ऐसे ही के उनकी मारी बेच जा, पण काका हार जाता है जब हमको टेंशन में आ जाता है।
2: अरे काका काका हार जे हम ला जीते जन काको तो घना राजी वे ना।
0: नहीं काको रा नहीं जीतना तई जा, पर काका है के।
2: और आज प्रोग्राम में कई होनो ला
0: बरसात रो गीत होना आदू।

0: प्रणाम गुरु भगवत।
1: जीव दारो रोम जी थोड़ी लंबी उम्र करी अंधन का भिंडार भरी ओ ब्रो न्याओ भिजो को के नीर गांव भिजो।
0: अरे दाता उंटा लड़ू बोलू मेघराज।
1: आओ हो मैं जी उंटा लड़ में कोई करो
0: काका लायो ना भोरा टूबेल तो है
1: आज टूबेल मत खाई गई करियो को के ने भिजो
0: काका लायो ना भोरा मु अपने निंदान करियो है 3000 2000 घणा साल है काका।
1: अरे वाह शेवा मुबड़िया उजा जेने को के रे कजियो भर भे दीजे डाब या खावी लवो।
0: आओ आओ काका शियाले से दर्द बगो शियाले में खाब भोग लिया।
1: हाँ सही ये भी ए भाईयो।
0: हाँ काका
1: ए गाम मीर बीवार मी सब क्या नहीं हो
0: काका एकदम

0: जोरदार है।
1: ए जोका को एक सवाल करी उसका जवाब करना पड़ेगा।
0: हाँ बताओ काका, आज फिर बता दो, नहीं बतानो पड़ी।
1: ए दो अक्षर का मेरा नाम, काके के माथे को ढकना मेरा काम क्या होता है?
2: काका,
1: भाई जो कहते हमको नहीं आऊते, तुमको आऊता है गई?
2: हाँ काका, मने तो आवे।
1: ए आवे जी, भाई को बोलो हेलो।
2: हेलो
0: भाई, राम राम सा।
2: राम राम सा, राम राम सा भाई जी। हो दिनो दापो राखो गई?
0: हाँ दिनो दापो है, गा दूध है, एक भैंस दूध है।
2: सही है सा, दिनो दापो हुए जने देखो काम जो को खेती वालो है और ए बोई होर हुए एरा पकड़ी बाइक नहीं था जा तो पूछे घर दिनो दापो कहीं। दिनो दापो मतलब घर दिनो वे जन हो की दापुड़ा रहे। काके तो नाडी पूछी नहीं?
0: हाँ पूछी बाजून भाई, यही गोनी
2: के दो अक्षरांगो है नाम एडो जो काके माथो ढकी रखे।
0: हाँ
2: वो तो साफ होवेगा, कड़ो साफ हो
0: साफ होवेगी।
2: हाँ
0: भाई
2: आज कहीं हूण ला
0: मारो मारो
1: ए भाई कहेंगे भाई।
2: भाई जी के बो हूण मारो एड प्यासो
1: ए जो जो तुम्हारी भी क्या
2: ओ लो।

0: राम राम काको जी।
1: ए राम राम जाई, राम राम जाई, अब्रोन्याओ बीजो को के निर्गाओ बीजो।
0: चेतलाओ बोलूं काको जी, तुलसीराम नहीं के।
1: आओ हो तुलसीराम जी, खेतलाओ में कोई करो।
0: कम तो जाऊं काको जी।
1: आओ वो क्या बात जी, ए गांव का नी मैं पानी करोगे।
0: मैं पानी गणो काको जी, अबारालो बीचे एक दो बार हुगो ताजी बरसात।
1: अरे वाशवा राम जी, राज जी एकी खेत में कहीं कहीं भाई खाके नहीं बीजो।
0: गवार बाजरी है काको जी खेत में तो।
1: ए फलियारो हाँ कर लियो कहीं यो।
0: हाँ गणो करिया काको जी, एक दो हाँ करिया फुगो ना अब गए।
1: अरे वाशवा और बीजो काम मीन फिर मी सब किया नहीं हो।
0: सब राजी खुशी है काका जी।
1: ए सब ने को करे रोमा शमा कीजो।
0: जरूर।
1: ए काको एक गाड़ी फेंके उसका जुबाब तो करना ही पड़ेगा।
0: अब देखो सा आए जन बताओ काको जी।
1: ए मैं आवाज न मोरू नाचे को नाचे।
0: हाँ
1: तो हूँ काको कहता है।
0: हाँ
1: सिर पर कलंगी पर मैं नहीं चंदा गर्जे बादल नाचे बंदा क्या होता है।
0: काको जी थाने बताने बड़ी मन्नत को नाम है।
1: एलुंगे
2: काको काका।
1: ए भाई तो कहता तुमको बताना पड़ेगा, तुमको आता है गई।
2: अवे काका मैंने बताई दो अबर।
1: ए तो भाई यू बोलो। हेलो
2: हेलो।
0: हाँ राम राम लुंड भाई।
2: राम राम सा, राम राम सा भाई जी यो।
0: हाँ
2: अरे अपन ठा किया पड़े के अब मैं आउनाड़ो है, काई बोले जन ठा पड़े।
0: तो मोर बोले जनी ठा पड़े में।
2: तब काका लाडी को अर्थी मोर ही होता है।
0: हाँ ना।
2: हाँ
0: कौन था अपना नाम लेना तो।
2: हाँ ले लो।
0: अनिल परवीन सरिता।
2: एक उन पोता पोती है कहीं?
0: नहीं नहीं बच्चे है।
2: तबरी है तंका।
0: हाँ एक भाई का बच्चा है।
2: हाँ
0: दिक्षु वन।
2: आज आज अगला कहीं होने ला।
0: आज कोई सावन को गीत होना है जो तकड़ा।
1: ए भाई कहीं जीवी
2: भाई जी के सावन को गीत होना ही तो।
1: ए ओ जा मारी बेजा।

0: Hey, hey, my dowry, oh, do bhayangi, bhayangi, shibki, pishinko, pogama.
1: Hello, Gorband.
0: Hey, pogama, koi bhai, beta, gite, bhajane, hona chahta hai, tum kahin kehta hai?
1: Kaka, itwar ke din 12 baje le prar, 1 baje tak Nagore Akashvani phone karna hai, number hai, kaka?
0: Haan, ni bhai, batao.
1: Mindi, eko, pancho, ato, duo, duo, choko, mindi, eko, choko, ato.
0: Aye, wah, mari, beta, ji, untiri, eh, bhai.
1: Kahin ko, kaka?
0: Aye, kahin ko, kaka, kahin ko, kaka, wo bhai ne pando baniye, kon baniye, jigara, phone nahi jaye, sume ki ko minni le sikya.
1: Are, banao do, kaka.
0: Aye, tum pancho, kaka, hum panchega.
1: Aye, main pancho, kaka, khatao karo to.
0: Aye, kahiyo, khatao, pancho.
1: Eh, kosle, jakhda, baad saru, Ghanshyam bhai hai, tau saru, Gopal Ram ji kichde, bahut sare hu, Ramu Ram ji Surdas hai, rodu. और ओम प्रकाश सुमेरिया है गुड़ा भगवान दास हूँ
0: मैंने के उन्होंने अगले द्वार का फोन गिड़गिड़ी जो
2: इस कार्यक्रम में काका की भूमिका में थी सुभाष कंडारी और लुमड़ी की भूमिका में थी भीकी देवी चौधरी
0: ओ भाइयो
1: कहीं को काका
0: अब बताओ कि आज के प्रोग्राम में तकनीकी हयो किसका है
1: प्रतीक वर्मा
0: आज के प्रोग्राम के फस्टूत गीता
1: अशोक कुमार गोयल
0: अब हंदीश लगो मारी बेटी
1: ए स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो हेलो गोरबन होते ही रहो
0: तो आप रे को के नेर होगे
1: ए लून की ने दिरो सीख और करते हैं
0: रोम रोम श्याई

अभी आप हेलो गुरबंद कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमीचल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी देर में होंगे समाचार संध्या, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी।

0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
0: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृहमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity,

0: entrepreneurship and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will shape the economies and the society's future.
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
2: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉ. प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जांच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सके। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
3: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया

0: एशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकरों और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जांच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
2: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। रात्रि के 9 बजे हैं, आए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम सुनेंगे रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ की आवाज में कुछ चुनिंदा गजल्स।

रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर के गए इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाश में नागौर के चिरमिचल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। रात्रि के 9:15 में आए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

0: श्रोता में गीत आपने सुना फिल्म आर्टिकल 15 से, आवाज़ें यासिर देसाई और आकांक्षा शर्मा की थी। गीत के बोल रश्मि विराग के और संगीत पीयूष शंकर का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म लूडो से। आवाज अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल संदीप श्रीवास्तव के और संगीत प्रीतम का।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं, हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं, तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहत नामक कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहत नामा।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म शिद्दत से, आवाजें सचिन टंडन, परंपरा टंडन और सचिन जिगर की थी। गीत के बोल कौसर मुनीर के और संगीत सचिन जिगर का।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों गा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

आज एक ऐसी नायिका की दास्तां लेकर आई है आपकी ये रेडियो सखी, जिसके चेहरे में न जाने क्या है कि हम सब अनायास ही आकृष्ट हो जाते हैं। वे सचमुच बंगला सौंदर्य की स्वामिनी हैं। उनकी आवाज और संवादों की अदायगी में मीठा मीठा और नमकीन नमकीन बंगला स्वाद घुला है। आइए सलाम करें सादा सरल सहज और सुंदर अभिनेत्री राखी की प्रतिभा को।

बहुत बरस पहले की बात है, बांग्ला अभिनेत्री संध्या रॉय राणाघाट यानी पश्चिम बंगाल में अपनी किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। माछेर झोल का स्वाद इस अभिनेत्री को ले आया अपने एक परिचित परिवार के घर, और ये घर था अभिनेत्री राखी का, जिन्हें संध्या राव को देखकर अभिनय की लौ लग गई।

15 वर्ष की उम्र में अभिनेत्री राखी का ब्याह हो गया अजय विश्वास से, जो कि एक फिल्म निर्माता और पत्रकार थे। सन 1968 में राखी अपने पति के पास मुंबई आ गईं। दरअसल एक दिन उनके पति ने अपने ही निर्देशन में बनने वाली फिल्म में राखी को भूमिका देने से इनकार कर दिया। दोनों के बीच यहीं से दूरियां बढ़ने लगी। उन दिनों राखी ने मुंबई में मॉडलिंग और डबिंग जैसे काम किए। थोड़े समय संघर्ष के बाद फिल्म जीवन मृत्यु से राखी की जिंदगी झिलमिल सितारों का आंगन बन गई।

0: जीवन मृत्यु के बाद राखी के पास फिल्मों का अंबार लग गया। उन्होंने बहुत सोच समझकर फिल्में चुनी। उसी दौर में राखी ने सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा में एक छोटी सी लेकिन यादगार भूमिका निभाई।
1: जब से

बाद राखी की कुछ बहुत ही सफल फिल्में आईं, जिनमें से एक थी फिल्म ब्लैकमेल, जिसमें नायक थे धर्मेंद्र, जो राखी की पहली फिल्म जीवन मृत्यु में भी नायक थे। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने राखी से राजेंद्र कृष्ण के इस गीत के जरिए जो कुछ कहा, जमाना आज उस बात को दोबारा तिबारा बल्कि हजार हजार बार कहते हुए भी नहीं थकता।

राखी स्वयं अपनी फिल्म शर्मिली को एक यादगार फिल्म मानती हैं, जिसमें उनकी दोहरी भूमिका थी। आज भी छोटे पर्दे पर इस फिल्म को देखकर लड़के आहें भरते हैं और लड़कियां कहती हैं, हाय कितनी प्यारी लग रही है ना।

अभिनेत्री राखी ने कुछ ऐसी फिल्में भी की जो व्यावसायिक तो नहीं थी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण थी, जैसे फिल्म परमा, फिल्म वित्त निगम की फिल्म 27 डाउन। इसके अलावा उन्होंने एक असमिया फिल्म भी की थी। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ राखी ने लगभग 2 दर्जन फिल्में की। खास बात ये कि इनमें वे कहीं अमिताभ की नायिका हैं तो कहीं माँ। फिल्म काला पत्थर और फिल्म कस्मे वादे।

अमिताभ बच्चन के अलावा अन्य नायकों के साथ भी राखी की बेमिसाल जोड़ी बनी।

तो बात चल रही है राखी की अलग अलग नायकों के साथ अभिनीत फिल्मों की। यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी में राखी की अहम भूमिका थी। इस फिल्म में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन एक साथ थे।

1973 में राखी ने लेखक, निर्देशक और गीतकार गुलजार से ब्याह रचा लिया। आज उनकी बेटी बोस्की यानी मेघना खुद फिल्म निर्देशिका बन चुकी हैं। उनकी पहली फिल्म फिलहाल काफी चर्चित रही। अपने फिल्मी करियर के बाद के दिनों में राखी ने चरित्र भूमिका निभानी शुरू की। आज के जमाने के कई नायकों की माँ की भूमिकाएं राखी ने निभाई हैं।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।
2: अभी विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण सुन रहे थे। एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिचल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं। हमारे प्रसारण की यह सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में आपसे 8:51 पर पुनः भेंट होगी। तब तक दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि। जय हिंद।